0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें।
2: Yes!

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: सुप्रभात श्रोताओं, घड़ी मिला लीजिए। इस समय सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

आपको हमारा नमस्कार। एफसीसी में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। प्रवीण जगनाथ ने कहा कि वे शांत हैं। उन्होंने पूछताछ के विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनके वकील राव गुलबुल ने पूछताछ की प्रक्रिया पर संतोष जताया और कहा कि जांच निष्पक्ष और संतोषजनक तरीके से हुई। एमएमजी तेल ठेका मामले में पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोविंद के साथ भी पूछताछ की गई, जो 7 घंटे तक चली। एफसीसी में अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। एसटीसी के 30 बिलियन रुपए के अनुबंध पर सवाल किया गया। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने जांच में सहयोग का भरोसा जताया। मनीष गोविंद का दावा है कि उनके साथ उत्पीड़न जैसा व्यवहार हो रहा है। आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 को लागू करने की प्रक्रिया का अहम चरण शुरू हो रहा है। 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जाएगा। इनमें फाइनेंस बिल शामिल हैं और आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर

0: मिसलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा की जाएगी। और विदेश में उत्तरी इराक में कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं और आसमान में युद्धक विमान उड़ते दिखे गए हैं। ये ड्रोन हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाके सुने गए हैं। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। उत्तर पूर्व की ओर से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ेगा। आज सुबह उत्तर पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी। दोपहर बाद को दक्षिण पश्चिम और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात के दौरान मौसम अच्छा रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में पश्चिम और दक्षिण के समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। और दिन के दौरान पश्चिम और दक्षिण के समुद्र में सुधार आने लगेगा। सूर्योदय 6:41 पर और शाम 5:51 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
3: L'habitude qui jamais pousse en zé, Mouti Time avec Formland.
4: Ah ben oui, madame Sheila, où toujours bien smart.
3: Et comme au son du travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Formland.
4: Mmh, où fais-moi faire?
3: Astérix Formland Hot Chocolate, la vie encore plus tamam. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
4: Astérix Formland, nous gagnons encore beaucoup plus.
3: Formland, ça même nous. Smart choice.
5: इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:04 होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नजर डालते चलें। ये विज्ञप्ति है सोल्फेरिनो नंबर 5 के आसपास के इलाके, जिनमें है CWA, IPL, पंपिंग स्टेशन, एक्स पोल्ट्री वुडन के आसपास के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 29 जुलाई को सुबह 8:30 से लेकर शाम 4:00 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 होने जा रहे हैं। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
5: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वेव 800 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा आज का ये प्रसारण जारी हो रहा है। आज की तारीख 28 जुलाई 2026 का वर्ष, मंगलवार का दिन, और हर मंगलवार की तरह आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी है रत्ना। हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11:00 तक हम आपकी सेवा में रहेंगे। आशा करते हैं आज का हर क्षण आप सभी के लिए सकारात्मकता से भरपूर रहे, सभी के जीवन मंगलमय बना रहे। इसी के साथ अभी थोड़ी ही देर में मानस मोती कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर वीनू अरुण। सदाबहार गीतों के साथ कार्यक्रम को हम आगे जारी रखेंगे और ठीक 6:30 पुनः जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ। समाचारों के उपरांत सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। तो आइए आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं आज के इस सुविचार के साथ। श्रोताओं, मान लिया तो हार गए, और अगर ठान

0: लिया तो जीवन में पार गए। आइए इसी के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर वीनू अरुण का मानस मोती कार्यक्रम में।
1: आइए सुनिए मानस मोती रामायण सेंटर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम।

मानस मोती कार्यक्रम के सभी श्रोता भाई बहनों को विनु अरुण का सादर अभिवादन। श्रोताओं, आज कुछ ऐसी चौपाइयाँ मैं एक बार फिर से चुनकर लाई हूँ जिनमें जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी शिक्षा दी गई है। आइए जरा इन चौपाइयों पर हम विचार करें। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा, शस्त्री मर्मी प्रभुसठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। चार टुकड़ों में और दो चौपाइयों में तुलसीदास जी कितनी गहरी बात कह रहे हैं, आइए इस पर विचार करें। चौपाइयों का अर्थ क्या है कि मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री मर्मी समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोइया इन नौ व्यक्तियों से विरोध करने में कभी भी कल्याण नहीं होता। ये चौपाइयाँ रामचरितमानस में तब आती हैं जब मारीच रावण के सामने स्थिति का आकलन करता है। मारीच अनुभव से समझ चुका था कि कुछ व्यक्तियों से विरोध करना व्यर्थ और हानिकारक होता है, इसलिए वो उन नौ व्यक्तियों के नाम गिनवाता है। पहला कहता है शस्त्री। शस्त्री मैंने जिसके हाथ में कोई हथियार है, जो हथियार वाला हो, या योद्धा जो युद्ध करने वाला है, जिसे हम सोल्डियर कहते हैं। तो जिसके पास शस्त्र है और जो युद्ध कला जानता है, उससे अनावश्यक विरोध करना बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए हम उससे विरोध करते हैं और उसके हाथ में हथियार है, तो वो क्या करेगा? क्रोध में हथियार से ही मारेगा। उसके हाथ में पिस्तौल है, तुरंत गोली चला देगा। इसलिए ऐसे लोगों से सदा सावधान रहना चाहिए। उनसे तर्क करने के बजाय स्थिति को शांत करना ही बुद्धिमानी माना जाएगा। जैसे रामायण का उदाहरण दे सकते हैं कि जब परशुराम जी क्रोधित हुए तो सब राजा भयभीत हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि परशुराम जी के पास अपार शस्त्र शक्ति थी। दूसरा उदाहरण, दूसरा नाम उसने गिनवाया मर्मी। मर्मी मतलब जो हमारे भेद जानता है, हमारी कोई बात है, हमारा कोई रहस्य है और दूसरा व्यक्ति उसे जानता है, तो उसे मर्मी कहेंगे, यानी भेद जानने वाला। तो जो मर्मी है वो हमारे रहस्य, हमारी कमजोरी या हमारी आंतरिक स्थिति को यदि जानता है तो उससे भी हमेशा सावधान रहना चाहिए। कार्यालय में कोई सहकर्मी यदि हमारे काम की कमजोरियां जानता है तो उससे शत्रुता करने से हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो भेद जानने वाला है उससे भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यदि उसे क्रोध आ गया तो वो आपके रहस्य सबके ऊपर प्रकट कर देगा। तीसरा कहा प्रभु, यानी जो समर्थ स्वामी है, जो सत्ता या अधिकार में हो। किसी संस्था में यदि कोई व्यक्ति प्रमुख पद पर है तो उससे अनावश्यक टकराव हमारे काम को बिगाड़ सकता है। इतिहास में कई मंत्रियों ने राजा से टकराकर अपना जीवन खो दिया। रामायण का उदाहरण है कि विभीषण ने रावण को समझाया, लेकिन जब रावण ने क्रोध में उन्हें अपमानित किया तो विभीषण ने लंका छोड़ दी और परिणाम हुआ कि रावण की शक्ति कमज़ोर हो गई। चौथा उदाहरण दिया सठ। सठ मैंने मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति से तर्क करना अपना ही दिमाग खराब करना है, इसलिए मूर्ख व्यक्ति से तर्क मत करो बल्कि शांत हो जाओ। यदि कोई व्यक्ति बिना समझे केवल बहस करता रहे तो उससे विवाद बढ़ाने से केवल हमारा समय और ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए कहा भी गया

है कि मूर्ख से विवाद करना अपने आप को ही मूर्ख सिद्ध करना है। पांचवा जो गिनाया गया, धनी, यानी जो व्यक्ति बहुत वैभव संपन्न है, बहुत धनी है, उससे भी सावधान रहो, उससे ज़्यादा तर्क वितर्क मत करो। तो धनवान व्यक्ति के पास बहुत प्रभाव होता है, उसके पास बहुत संसाधन होते हैं, धन दौलत उसके पास बहुत होती है, वो अपने धन से कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए जो धनी व्यक्ति है उससे भी ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, चुपचाप रहो, क्योंकि वो अपने धन के अहंकार से, धन के प्रभाव से कोई भी नुकसान दूसरे का पहुंचा सकता है। तो उदाहरण है कि जैसे व्यापार में किसी अत्यंत प्रभावशाली धनवान व्यक्ति से कोई अनावश्यक शत्रुता ले ली जाए तो वह कठिनाई का कारण बन सकती है। छठा गिनाया गया वैद्य को, यानी डॉक्टर को। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर हमारा जीवन रक्षक होता है, शास्त्रों में कहा गया और विशेष रूप से तुलसीदास जी रामचरितमानस के अरण्य कांड में मारीच के मुख से कहला रहे हैं कि वैद्य से भी मुंह नहीं लगना चाहिए। यदि रोगी डॉक्टर से शत्रुता करे तो संकट के समय उसका उपचार कठिन हो सकता है। इसीलिए प्राचीन काल में कहा जाता था कि वैद्य से मधुर संबंध रखना चाहिए। सातवां गिनाया गया बंदी, बंदी मैंने भाट, भाट मतलब जो लोग किसी राजा की विरुदावली लिख करके उसका यशोगान करते थे, इतिहास लिखने वाले को बंदी कहते हैं। बंदी या भाट वह होता था जो राजाओं के यश का और इतिहास का वर्णन करता था। तो यदि इतिहास लिखने वाला व्यक्ति पक्षपाती हो जाए तो वह किसी की भी छवि को खराब कर सकता है, इसलिए उससे सावधान रहना चाहिए। और आठवां नाम गिनाया कवि का। कवि शब्दों का शक्तिशाली उपयोग करता है, और कवि हमारे यहाँ तो एक से एक कवि हुए हैं जिन्होंने राजाओं की विरुदावली गाई है, राजाओं का यशोगान किया है और राजाओं की कीर्ति का इतना सुंदर वर्णन किया है कि उन्हें अमर बना दिया है। इसलिए जो कवि होता है वो किसी की छवि को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कवि का मतलब केवल कवि नहीं, लेखक, कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, जो अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करते हैं। तो एक कवि व्यंग या कविता के माध्यम से समाज में किसी व्यक्ति की छवि बना भी सकता है और नष्ट भी कर सकता है। और इतिहास में कई कवियों की रचनाओं ने राजाओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलाई है, इसलिए कवि से भी सावधान रहना चाहिए। और नौवां उन्होंने गिनाया भानस गुने, यानी कुशल रसोइया। रसोइया यानी जो खाना बनाता है। तो जो राजा लोग होते थे उनके यहाँ तो रसोइया खाना बनाते थे, और बहुत लोगों के घरों में भी रसोइया हैं जो आकर के खाना बनाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कुक कहते हैं। तो जिसे हम पैसा दे करके कुकिंग करवाते हैं, खाना बनवाते हैं, तो उसे हम रसोइया कहते हैं। और भानस गुनी, उन्होंने एक शब्द जोड़ा है गुनी, मतलब साधारण रसोइया नहीं, जो बहुत ही गुणी, बड़ा कुशल, हर एक मसाले में क्या क्या छुपा हुआ है, उसका क्या गुण है, क्या उसमें दोष है, हर बात जो जानता है, ऐसा रसोइया। तो रसोइया भोजन बनाता है और भोजन हमारे जीवन का आधार है। यदि कोई रसोइया क्रोधित या असंतुष्ट हो जाए तो वह भोजन की गुणवत्ता को बिगाड़ सकता है। राजाओं के दरबार में रसोइयों को बहुत विश्वास पात्र माना जाता था, इसलिए तुलसीदास जी यहाँ नौ लोगों के नाम गिनवा करके मारीच के माध्यम से वो नाम गिनवा रहे हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं कि इन नौ व्यक्तियों से बेकार में विरोध नहीं लेना चाहिए। ये चौपाई ये नहीं कहती कि इन लोगों से डरना चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि जहाँ शक्ति है वहाँ सावधानी बरतें, जहाँ रहस्य है वहाँ विवेक रखें, जहाँ मूर्खता है वहाँ विवाद ना करें, जहाँ सेवा है वहाँ सम्मान रखें। और मारीच का ये विचार वास्तव में जीवन की नीति है कि समाज में कुछ व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय विशेष सावधानी और विनम्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुद्धि

0: बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थिति और व्यक्ति दोनों को पहचान कर व्यवहार करता है। और श्रोताओं, आज इन्हीं चौपाइयों के साथ मानस मोती कार्यक्रम को विराम देने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस मोती।

6:20 हो चुके हैं श्रोताओं। जीवन अनंत संभावनाओं का नाम है, हमें बस सही दिशा में सार्थक प्रयास करते रहना बहुत ही आवश्यक है। और भाभी की चूड़ियां फिल्म से लिया हुआ ये गीत, लता जी की बहुत ही प्यारी सी मधुर सी आवाज।

सबका जीवन उजागर हो, सबके जीवन में वो ज्योति बस झलकती रहे। और आज के इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही मनभावन गीतों के साथ सुबह को और भी सुरीली बनाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास है। पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज के इस सफर में। वही ज्योत जलाने से अंधकार दूर होता है, पर किसी के जीवन की ज्योत बनकर उनके जीवन का अंधकार दूर करने का प्रयास हमें सदैव उजागर बनाता है। आइए इसी के साथ संत ज्ञानेश्वर का ये गीत सुनते हैं, मुकेश साहब की आवाज में। 1964 के दौर की ये मूवी, इसी गीत से आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

ऐसा ज्ञान केवल गुरु ही दे सकता है कि हमें जीवन में क्या करना है, किस दिशा को लेना है। और कल 29 जुलाई को मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा। विश्व के सभी गुरुओं को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और गुरु सदा हमें यही सिखाते हैं कि हम सदा दूसरों को उठाकर ही स्वयं उठ सकते हैं।

ना कि दूसरों को गिराकर। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों का सहयोग करें, दूसरों को साथ दें, नियत बिल्कुल साफ रखें। आपके आड़े आने वाली हर वो अड़चन, रुकावट गुरु के आशीष से, गुरु के आशीर्वाद से अपने आप दूर होती चली जाएगी। तो श्रोताओं, आज का यह अंतिम गीत इस प्रहर का। बिल्कुल समाचारों के बाद पुनः आपकी सेवा में हम उपस्थित रहेंगे। तो इस गीत को छोड़े जाते हैं अभी के लिए, ज्ञान दान सबसे बड़ा। तो बस समाचारों के बाद इस कार्यक्रम को और भी मधुर बनाएंगे। तब तक के लिए हमारा साथ अवश्य दीजिएगा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सभी को हमारा नमस्कार। सुबह के ठीक 6:30 हैं। पेश है आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। एफसीसी में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। प्रवीण जगनाथ ने कहा कि वे शांत हैं। उन्होंने पूछताछ के विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनके वकील राव गुलबुल ने पूछताछ की प्रक्रिया पर संतोष जताया और कहा कि जाँच निष्पक्ष और संतोषजनक तरीके से हुई। एमएमजी तेल ठेका मामले में पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोविंद से 7 घंटे तक पूछताछ की गई। एफसीसी में अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। एसटीसी के 30 बिलियन रुपए के अनुबंध पर सवाल किया गया। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने जांच में सहयोग का भरोसा जताया। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ उत्पीड़न जैसा व्यवहार हो रहा है।

0: आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 को लागू करने की प्रक्रिया का अहम चरण शुरू हो रहा है। दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जाएगा, इनमें फाइनेंस बिल शामिल हैं और आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा होगी। और विदेश में उत्तरी इराक में कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाके सुने गए। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने एंडो वार्निंग पूछताछ की। ये पूछताछ साल 2023-2024 के लिए मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को लगभग 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम आपूर्ति अनुबंध दिए जाने की जांच के सिलसिले में की गई। आज टर्की करीब 2 बजे बाहर निकलने के बाद एमएसएम के नेता प्रवीण जगनाथ ने कहा कि वे पूरी तरह शांत और आश्वस्त हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पूछताछ के विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की और केवल इतना कहा कि जांच अभी जारी है। उनको सुनते हैं। पूछताछ समाप्त होने के बाद वकील रऊफ गुलबुल ने कहा कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके मुवक्किल से किस तरह पूछताछ की गई। उन्होंने जांच की पूरी प्रक्रिया की भी सराहना की। उनको सुनते हैं।
1: L'exercice me satisfait. Me faire face avec un enquêteur, je fin pose à Monsieur Jagnat beaucoup de questions, me fin donne réponse, me satisfait avec le déroulement de l'enquête. Mais à ce stade, parce que l'enquête n'a pas encore fini, il n'est pas prudent pour Monsieur Jagnat un commentaire. À la fin, quand on finit, là, on va décider que vous y allez à la presse. Mais il y a une enquête qui continue.
0: कल पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोबिन ने गैजुई स्थित फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के दफ्तर में करीब 7 घंटे बिताए। अंडर वार्निंग पूछताछ के तहत मौजूदा एमएसएम के महासचिव से स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा साल 2023-2024 के लिए सिंगापुर की कंपनी मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का ठेका दिए जाने के मामले में पूछताछ की गई। इस ठेके की कीमत लगभग 30 बिलियन रुपये आंकी गई है। रात के करीब 8 बजे गैजुई थ्रियांगल से बाहर निकलने के बाद मनीष गोबिन ने कहा कि उन्होंने जांच अधिकारियों को अटॉर्नी जनरल के कार्यालय और एसटीसी के बीच हुए कानूनी मत और पत्राचार के बारे में पूरी जानकारी दी। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें ये भी महसूस होता है कि उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। उनको सुनते हैं।
2: Au final, il y a une convocation qui dit à moi, il y a quand même requested to attend. C'est signé par M. Alior. Donc, je suis collaboré, je suis venu cet après-midi à la FCC. Je suis répondre à nombreuses questions de ban enquêteurs. Ce qui m'a capable de dire, je suis final dans beaucoup de détails concernant legal advice qui t'y donné, échange qui finit non, avec nos bureaux à l'époque comme outil attorney general. L'enquête bien sûr pour continuer, mes avocats et moi, nous à la disposition, subis à nous, faire nous connaître et nous pouvons venir. Ça veut dire depuis avril 2025, nous avons donné un statement, mais qui fait attendre là tout à coup en quatrième vitesse pour convoquer leader MSM, secrétaire général MSM et ministre Gan. Ça qui nous dénonçait, l'EPP peut trouver qui peut servir un appareil d'État pour faire une persécution, pour faire une vendetta.
0: दूसरी ओर मनीष गोबिन ने कहा कि उन्हें अब तक ये समझ नहीं आया कि आखिर उन पर किस बात का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को ये ठेका दिए जाने की प्रक्रिया में उनकी किसी भी समय कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने ये भी दोहराया कि उन्हें स्टेट लॉ ऑफिस के अधिकारियों का पूरा भरोसा है।
2: Moi personnellement, je n'ai pas aucun involvement, je n'ai aucune participation dans le bidding process, dans le award.
3: Le bureau, c'est où ça?
2: Non, mon bureau, c'est pas moi qui signe advice. Et n'a pas une personne responsable qui fait ali. Je n'ai déjà eu à aucun moment ni participé dans bidding, dans award, dans

0: quoi que ce soit en tant que la décision qui tu fais par le public body concerné, c'est-à-dire la STC. Mon père n'a aucun doute sur l'intégrité de nos fichiers du State Law Office.
1: 2026-2027 के बजट को लागू करने का चरण आज से शुरू हो रहा है। दिन के 11:30 बजे संसद के सदस्य राष्ट्रीय सभा में एकत्र होंगे और फाइनेंस बिल के साथ साथ दो महत्वपूर्ण कानूनों की समीक्षा करेंगे। ज्यादा जानकारी टीना बुन्ना के साथ।
2: दरअसल फाइनेंस बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इसमें नई स्टेट एज पेंशन व्यवस्था का प्रस्ताव है, जिसके तहत पेंशन की संदर्भ आयु यानी रेफरेंस एज धीरे धीरे 61 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाएगी। हालांकि 60 वर्ष की उम्र से ही पेंशन का दावा किया जा सकेगा, लेकिन संदर्भ आयु से पहले हर महीने के लिए पेंशन राशि में 0.5% की कटौती होगी। इस विधेयक में आमदनी पर टैक्स की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। टैक्स योग्य आय के पहले 5,00,000 रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसके बाद 10%, 20% और 35% की दरें लागू होंगी। साथ ही जनवरी 2027 से सामान्य बीमा प्रीमियम पर 5% टैक्स भी लगाया जाएगा। फाइनेंस बिल में VAT सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, ऑनलाइन गेमिंग, संपत्ति कर और सामाजिक सहायता से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी की जांच और निगरानी की शक्तियां बढ़ाई जाएंगी और सरकारी कर्ज तथा सार्वजनिक वित्त की निगरानी और मजबूत की जाएगी।
1: राष्ट्रीय सभा में आज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी विचार किया जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बिल है जिसे 2026-2027 के बजट में घोषित कई कदमों को लागू करने के लिए तैयार किया गया है। इस बिल में मौजूदा 58 कानूनों में बदलाव लाने या उन्हें रद्द करने का प्रस्ताव है। इनमें से कुछ बदलाव मॉरिशस के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे, खासकर मजदूरों के अधिकारों, पब्लिक हॉलीडेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बैंकिंग गोपनीयता से जुड़े मामलों में। अन्य प्रावधान देश के कामकाज और सार्वजनिक कॉन्ट्रैक्ट्स देने के तरीके से संबंधित हैं। ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसके कई प्रावधानों पर आज संसद में होने वाली बहस में खास तौर पर चर्चा होने की उम्मीद है।
2: सबसे अहम प्रस्तावों में वर्कर्स राइट्स एक्ट में संशोधन शामिल है। इसके तहत जिन महिला कर्मचारियों को गंभीर मासिक मेंस्ट्रुअल संबंधी तकलीफों के कारण काम करना संभव नहीं होगा, उन्हें हर महीने एक दिन का मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगा। वहीं मातृत्व अवकाश को भी यानी मैटरनिटी लीव को भी बढ़ाकर पूरे वेतन के साथ 26 सप्ताह किया जाएगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर आधे वेतन के साथ अतिरिक्त 26 सप्ताह की छुट्टी भी ली जा सकेगी। आम लोगों को सीधे प्रभावित करने वाला एक और बदलाव पब्लिक हॉलीडेज एक्ट में किया जाएगा। अगर कोई सार्वजनिक अवकाश रविवार को पड़ता है तो उसके अगले दिन यानी सोमवार को भी सार्वजनिक अवकाश माना जाएगा। इससे ऐसे मामलों में लोगों को सोमवार को छुट्टी का लाभ मिल सकेगा। बैंकिंग एक्ट में भी संशोधन प्रस्तावित है। इसके तहत फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एक्ट के तहत जारी आदेश या नोटिस मिलने पर बैंक अपने ग्राहकों से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध करा सकेंगे। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कुछ प्रावधानों का दायरा बढ़ाकर सभी वित्तीय अपराधों तक किया जाएगा ताकि जांच और प्रभावी हो सके। क्लिनिकल ट्रायल्स एक्ट में भी बदलाव का प्रस्ताव है। इसके तहत पब्लिक क्लिनिकल ट्रायल यूनिट सरकारी अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रायल का समन्वय करेगी। ये इकाई बीमारियों का रजिस्टर तैयार करेगी और ऐसे मरीजों की पहचान करेगी जो अधिकृत क्लिनिकल ट्रायल में भाग ले सकते हैं। हालांकि मरीज की स्पष्ट सहमति, गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अंत में पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के तहत कुछ विशेष सेवाओं के लिए सरकारी संस्थाएं विदेश में रहने वाले किसी मॉरिशन विशेषज्ञ की सेवाएं सामान्य टेंडर प्रक्रिया के बिना सीधे ले सकेंगी।
1: इन 5 कदमों के अलावा ये विधेयक कई क्षेत्रों को प्रभावित करता है। रोजगार, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, आप्रवासन, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण, कृषि और कचरों का संचालन। ये बिल बजट के कदमों को कानूनी

0: बल प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, लेकिन साथ ही ये श्रमिकों के अधिकारों, डेटा संरक्षण, पारदर्शिता और सार्वजनिक संस्थानों के अधिकारों से संबंधित बहसों को भी बढ़ावा देने की उम्मीद है। राष्ट्रसभा में आज प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान 23 सवालों के जवाब देंगे। चर्चा के मुख्य विषयों में पब्लिक फाइनेंस, जेल की सुरक्षा और खरीद शक्ति शामिल होंगी। सांसद खासतौर पर BAI ग्रुप की संपत्ति बिक्री के लेन देन और फंड के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। साथ ही गैर मंत्री सांसदों द्वारा सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी चर्चा की जाएगी। महंगाई, बढ़ती कीमतें, डॉलर और रुपए के बीच अंतर, FCC जांच और ऑडिट रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल हैं। समुद्री सुरक्षा, एयर मॉरिशस और एयरपोर्ट होल्डिंग्स का भविष्य और सार्वजनिक कर्ज भी उन विषयों में शामिल होंगे जिन पर बहस होगी। इस सोमवार को पोर्ट लुइस में हुई आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड एडवाइजरी कमेटी की 17वीं बैठक में बफर जोन में मौजूद कई संपत्ति मालिकों और स्थानीय निवासियों ने इमारत से जुड़े नियमों को लेकर चिंता जताई। पुरानी पोर्ट लुइस में अधूरे परे निर्माण स्थलों, तराशे हुए पत्थरों की चोरी और जर्जर फुटपाथ उनकी मुख्य शिकायतें थीं। संस्था के निदेशक वेद प्रकाश बंधन के अनुसार यूनेस्को की गाइडलाइंस का पालन करने का मतलब प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को रोकना नहीं है। वे विरासत से जुड़ी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में किए गए चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इमारत के नवीनीकरण का उदाहरण देते हैं। उन्होंने सेंट्रल पोर्ट लुइस की कई ऐतिहासिक इमारतों के संचालन में तालमेल बिठाने के लिए एक नए 5 वर्षीय मास्टर प्लान तैयार करने की घोषणा की, जिसके बाद यूनेस्को को सौंपा जाएगा। ये दस्तावेज भविष्य के आप्रवासी घाट कल्चरल हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। पुलिस हिरासत में इकबाल तूफानी की मौत के 10 साल से ज़्यादा समय बाद भी ये मामला सबूत इकट्ठा करने और हिरासत में लिए गए लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी 3 पुलिस अधिकारियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। IPCC के नए अध्यक्ष सतीश फुगू के अनुसार तब से प्रणाली में कई बदलाव किए गए हैं। हालांकि हिरासत में लिए गए लोगों और कानून लागू करने वाले अधिकारियों दोनों की सुरक्षा के लिए और सुधारों की जरूरत है। ज्यादा जानकारी करुणा लालू के साथ।
1: Il a affecté, c'était ne pas reconnaître parce qu'il y a quand même la coupe et Dieu ça.
2: तक 10 सालों की अनिश्चितता, प्रतीक्षा और इकबाल तूफानी के परिवार के लिए तकलीफ। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद 2015 में वो चल बसा था। 3 पुलिस अफसरों पर उत्पीड़न की कार्रवाई चलाई गई थी और 2020 में उन्हें रिहा कर दिया गया था। 5 साल बाद अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने DPP की अपील रद्द करते हुए उनकी रिहाई बरकरार रखी। इकबाल तूफानी की विधवा के लिए ये फैसला स्वीकारना कठिन था, जो अभी भी अपने शौहर के गुजरने की परिस्थिति पर जवाब पाने के इंतजार में। ये मामला 2018 में इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन की स्थापना से पहले का है। इस कमीशन का गठन पुलिस के खिलाफ शिकायतों और पुलिस हिरासत में हुई मौत की शिकायतों पर जांच के लिए किया गया है। इसके नए अध्यक्ष सतीश फुगू के लिए तूफानी के मामले से सीख लेनी चाहिए। इसे जुडिशियल प्रक्रिया कहा जाता है, जिसे 10 साल लगे हैं। ये बहुत लंबा समय है। ये प्रणाली की समस्या है, इसका तत्काल कोई हल नहीं। ये केवल इकबाल तूफानी के मामले से संबंधित नहीं, ये एक आम समस्या है जिस पर चिंतन करना चाहिए। कई सवाल करनी चाहिए, मेडिकल सबूत भी थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सोचता हूँ शुरुआत के लिए पुलिस के स्तर पर पाई जाने वाली समस्या का हल निकालना चाहिए।
3: Sans pour jugement, mon pensée n'a beaucoup de questions nous a posées. Et encore une fois, c'est au niveau de l'enquête. Un cas, pour moi, quand Moguet, par exemple, les données et ben évidence qui tiennent, tiennent medical evidence et tout ça.
2: तब से कई कदम कैदियों की रक्षा

0: मजबूत करने के लिए लाए गए। हिरासत केंद्रों में निगरानी कैमरे भी उठाए गए। सतीश फुगू ने कहा, 2015 में बहुत आवाजें उठाई गई। आईपीसीसी की स्थापना से पूर्व पुलिस और प्रणाली के स्तर पर बहुत बदलाव लाए गए हैं, जैसा कि निगरानी कैमरे डिटेंशन सेंटर में लाए गए हैं, जिससे कैदी के साथ साथ अफसर की भी रक्षा हो सके। आईपीसीसी के नए अध्यक्ष का मकसद है परिवारों को लंबे समय तक बिना कोई जवाब के रखने से बचना और सभी संबद्ध लोगों के लिए उचित जांच को भी सुनिश्चित करना।
1: और विदेशी खबरों में, पश्चिम एशिया में लगभग 5 महीनों से जारी भीषण संघर्ष अभी भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच इराक और उसके आसपास के इलाकों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अचानक काफ़ी बढ़ गया है। उत्तरी इराक में कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं और आसमान में युद्धक विमान उड़ते देखे गए हैं। ये ड्रोन हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाके सुने गए। मौसम संबंधी जानकारियां, हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। उत्तर पूर्व से आने वाले बादलों का असर मौसम पर पड़ेगा। आज सुबह उत्तर पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। दोपहर बाद को दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान मौसम अच्छा रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में पश्चिम तथा दक्षिण के समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। दिन के दौरान पश्चिम और दक्षिण के समुद्र में सुधार आने लगेगा। आज सुबह 6:41 पर सूरज निकला है और शाम 5:51 पर सूरज ढल जाएगा। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एफसीसी में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि वे शांत हैं। उन्होंने पूछताछ के विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनके वकील रऊफ गुलबुल ने पूछताछ की प्रक्रिया पर संतोष जताया और कहा कि जांच निष्पक्ष और संतोषजनक तरीके से हुई। एमएमजी टेल ठेका मामले में पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोबिन से 7 घंटे तक पूछताछ की गई। एफसीसी में अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। एसटीसी के 30 बिलियन रुपए के अनुबंध पर सवाल किया गया। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने जांच में सहयोग का भरोसा जताया। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ उत्पीड़न जैसा व्यवहार हो रहा है। आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 को लागू करने की प्रक्रिया का अहम चरण शुरू हो रहा है। 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जाएगा। इनमें फाइनेंस बिल शामिल हैं। आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा होगी। और उत्तरी इराक में कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाके सुने गए हैं। के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें काडिया का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे। एरिगाडू लेन मिडलैंड्स में 45 साल के 45-year-old के श्री उत्तम बखोरी, जो शैलेश से ज़्यादा जाने जाते थे और टैक्सी ड्राइवर थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर एरिगाडू लेन मिडलैंड से उठाकर माकेशानी रूजवेल्ट की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। नंबर 22 गोहा इसाक स्ट्रीट पोर्टविस में 31 साल के 31-year-old के जनाब मोहम्मद जमील बैरागी

जो जमील से ज्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके वालिद इम्तियाज बैरागी के घर नंबर 22 गोगाई साक स्ट्रीट पोटरी से उठाकर खिश्तिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। विगासोमी रोड कॉटेज में 74 साल की 74-year-old की श्री बिसुनदेव प्रियतम जो लोलो से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सफर बाद के 3 बजे उनके बेटे सनी प्रियतम के घर विगासोमी रोड कॉटेज से उठाकर कॉटेज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। बेगे स्ट्रीट हॉलीवुड वाकवा में 37 साल के 37-year-old की श्री राजीव सौजिया जो राजीव से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी माँ धनवंती सौजिया के घर बेगे स्ट्रीट हॉलीवुड वाकवा से उठाकर थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। मुसलमान सुहावन कारोलिन बेलेरिविया सेश में 80 साल के 80-year-old के श्री नारायण जीतन जो केवर से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले काशी पोर्टविस रहते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर मुसलमान सुहावन कारोलिन बेलेरिविया सेश से उठाकर पिचिबा कारोलिन बेलेर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड क्रेवकर में 83 साल के 83-year-old की श्री चंदर कालीचरण जो लाला से ज़्यादा जाने जाते थे और जो मोका अस्पताल के डॉक्टर हिमराज कालीचरण के पिता थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे यजराज कालीचरण के घर रॉयल रोड क्रेवकर से उठाकर क्रेवकर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। नंबर 75 शुमेला सूस काथोबोन में 81 साल के 81-year-old के श्री लुमन सिंह उबिलक जो भूप से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे उबिलक उत्तम सिंह के घर नंबर 75 शुमेला सूस काथोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरेंस त्रिबुशे में 90 साल के 90-year-old के श्री हरि प्रसाद चमन जो प्रसाद से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी मेधा चमन के घर लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरेंस त्रिबुशे से उठाकर पीटों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। इंटरनेशनल स्ट्रीट रिविया जुरांपा में 78 साल के 78-year-old के श्री जीवन पिरू जो सत्यदेव से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके घर इंटरनेशनल स्ट्रीट रिविया जुरांपा से उठाकर बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। नंबर 29 कनाल बाथर्स्ट सेंट क्वा में 64 साल की 64-year-old की श्रीमती देवती जयगोपाल पैदाश नाम शिवनारायण और जो अंबिका से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति दीपक जयगोपाल के घर नंबर 29 कनाल बाथर्स्ट सेंट क्वा से उठाकर सिपाही भूले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। पिजित काबान कोडमास्क पावी में 69 साल के 69-year-old के श्री कोमल दत्त मंगर जो लालदेव से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर पिजित काबान कोडमास्क पावी से उठाकर मेजिन कोडमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। जोसेफ फ्रांसवा डोबेन स्ट्रीट वैली डे प्रेत्र में 76 साल के 76-year-old के श्री दयाराम गोचरन जो ज्ञानदत्त से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सपहर बाद के 3 बजे उनकी पत्नी कलावती गोरचन के घर जोसेफ फ्रांसवा डोबेन स्ट्रीट वैली डे प्रेत्र से उठाकर बॉ मौशन का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। इंग्लैंड में 87 साल की 87 year

रोल की श्रीमती तारामती हीरू, पैदाइश नाम अम्बाजी और जो मनका से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे वुकर एवेन्यू हसलफीड हर्टफोर्डशायर।

0: बैंकॉक में 46 साल के 46-year-old के श्री कविराज तुलसी, जो विक्रम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनकी माँ सुकवंती तुलसी के घर तुलसी लेन न्यूनपॉक से उठाकर माकेशानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: सभी सुनने वालों का दिन का प्यारा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जारी हैं। मेडल टेबल में ऑस्ट्रेलिया आगे है 26 गोल्ड मेडल 26 गोल्ड मेडल टोटल 59। इंग्लैंड के पास है 8 गोल्ड मेडल टोटल 32। कनाडा 7, नाइजीरिया 6, स्कॉटलैंड 5। टीम इंडिया के पास 2 गोल्ड मेडल है टोटल 10। आज 27 गोल्ड मेडल जीते जाएंगे। एथलेटिक्स में 6 फाइनल हैं, इनमें मेंस एंड वुमेन्स 100 मीटर्स के फाइनल भी हैं। मॉरिशस से राशेल क्लॉपफेनस्टाइन 800 मीटर के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुई हैं। 110 मीटर हर्डल में जेरेमी लागारोडर्स चोट लगने के कारण रेस पूरा नहीं कर पाया। बॉक्सिंग में मेवेक्लेयर क्वार्टरफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया है। चेल्सी अब ब्रेंटफोर्ड से जॉर्डन हैंडरसन और ब्राइटन से डैनी वेलबेक को साइन करना चाहता है। द ब्लूज को एक्सपीरियंस अनुभवी पेशेवर खिलाड़ी चाहिए। हैंडरसन पिछले सीजन आयाक्स से ब्रेंटफोर्ड में आया, इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम में था, जबकि वेलबेक 201 मैचों में 51 गोल स्कोर कर चुका है। प्रीमियर लीग में इन दोनों का अनुभव काम आएगा। इंग्लैंड का डिफेंडर जॉन स्टोन्स मैनचेस्टर सिटी से जा रहा है, अभी वो फ्री एजेंट है। इन दिनों इंटर मिलान से बातें हो रही हैं। 6 प्रीमियर लीग टाइटल, चैंपियंस लीग, 2 FA कप, 5 लीग कप, 3 कम्युनिटी शील्ड, क्लब वर्ल्ड कप, UEFA सुपर कप जीतकर वो जा रहा है। लिवरपूल में सेंटर बैक की समस्या, जो गोमेज की इंजरी से लिवरपूल परेशान है। जेरेमी जाके और गियोवानी लियोनी अभी तक फुल फिट नहीं है। अंदोनी इराओला इस समस्या से वाकिफ हैं। वान डाइक के पैर भी जवान नहीं है, कोनाते चला गया। नए खिलाड़ियों की सख्त जरूरत है। कल न्यूयॉर्क में लिवरपूल का दूसरा फ्रेंडली मैच होगा रेक्साम के खिलाफ। रेक्साम वैसे फ्रेंडली मैचों में बहुत अच्छा खेल रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था और लीड्स यूनाइटेड को भी हराया। वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के कप्तान रोड्री के लिए रियल मैड्रिड सिटी से बात करने के बारे में सोच रहा है। रोड्री भी हवा बदलना चाहता है, पर मैनचेस्टर सिटी को विश्वास है कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। इधर लीड्स यूनाइटेड 40 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर मैनचेस्टर सिटी के गोलकीपर जेम्स ट्रॉफोर्ड को साइन करने के करीब हैं। क्लब फ्रेंडलीज में कल गलातासराय की हार हुई, वेनेजिया ने उसे 3-0 से हराया। आज UEFA चैंपियंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के मैच खेले जाएंगे। रिटर्न लेग कुप्स का मुकाबला सबा से, सबा भी 1-0 से आगे हैं। रेड इम्स वर्सेस जालबी, 3-0 से हम जालबी आगे। डिनामो ज़ाग्रेब का मुकाबला टून से होगा, 1-1 है अभी स्कोर। सेल्ये इग्नासिया 3-3 स्कोर हैं। हार्ट्स स्टूम खास 4-0 से आगे हैं। शामरॉक आर्मेनिया 2-0 से आर्मेनिया आगे। कॉन्फ्रेंस लीग के मैच भी आज हैं और क्लब फ्रेंडलीज में रियल मैड्रिड का मुकाबला लेगानेस से होगा, डर्बी वर्सेस वेलेंसिया। और आली खेलेगा फुलहाम के खिलाफ, एस्टन विला रियल सोसिएदाद, स्टोक एवर्टन और संडे को सुपर कप यानी सिडनी में सुपर कप चेल्सी वर्सेस वंडरर्स। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। भूलिएगा नहीं, MBC Sports 11 पर कॉमनवेल्थ गेम्स दिखाए जा रहे हैं और आज कुछ महत्वपूर्ण रेस हैं, जैसे क्वार्टर फाइनल जिनमें हमारे मुक्केबाज होंगे और एथलेटिक्स में 100 मीटर का फाइनल, मेंस एंड वुमेन्स 100 मीटर फाइनल। ये कहते हैं ना कि रेस में महाराजा कौन होता है, महारानी कौन होती है, 100 मीटर स्प्रिंट कौन जीतेगा, ये आज पता चलेगा। भूलिएगा नहीं, देखिएगा जरूर MBC 11 पर। नमस्कार आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
0: रेडियो मॉरिशस।
2: सुबह के ठीक 7:02 हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियाँ। ये विज्ञप्ति है सुरीनाम गांव के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर गियोंबेल, सुरीनाम, मौसलमो, तानाकुदी, मौसलमो, लेमून और NHDC गियोंबेल के निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 29 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और साथ ही साथ पोंपोनेट, गियोंबेल के गांव के आसपास के इलाके जिनमें है मौसलमो, उमनिकेन, सैं फेलिक्स के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 30 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
3: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर

0: सुबह का नजराना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। हमारा सुप्रीम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम रहेंगे आपकी सेवा में और जहां कहीं से भी साथ दे रहे हैं आशा करते हैं दिल से साथ निभाएंगे ज़रूर। और आज का ये दिन बिल्कुल मंगलवार है तो मंगलमय तरीके से बीते हम तो यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से। और आज के सफ़र को बेशक पुराने गीतों के साथ सजाएंगे। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत हम करते हैं चिंतन के साथ और चिंतन को प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी जमन। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: मूल्य सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: इच्छा से दुख आता है, इच्छा से भय आता है, जो इच्छाओं से मुक्त है वह न दुख जानता है न भय।

सुबह का नजराना कार्यक्रम और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं झलकियों के साथ और झलकियों में आपको बताते चले आज दिन भर में कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं क्या खास आपके लिए। और बेशक सुबह का नजराना कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं रत्ना के साथ, साथ ही साथ 8 बजे हम जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों के साथ और भोजपुरी समाचारों के बाद बिल्कुल आपकी मुलाकात करवाएंगे एक लाजवाब अभिनेता के साथ जो कल अपना जन्मदिन मनाएंगे। बॉलीवुड उन्हें खलनायक के नाम से जानता है पर हम तो मुन्ना भाई ही कहेंगे। और बिल्कुल 8:15 बजे आपकी मुलाकात करवाएंगे मुन्ना भाई के साथ। 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम में किरण जानकी का साथ रहेगा और बिल्कुल भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए हम बढ़ेंगे आगे 9 बजे के समाचारों के साथ जुड़ेंगे और 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। और आज का दिन बिल्कुल आज की चर्चा कार्यक्रम में सुमिता आपका साथ देंगी और आज के इस कार्यक्रम में बात की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्ती पर। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो होंगी श्रीमती नीलम और मिस साईवानी शंभू, तो ज़रूर आप इनका साथ दीजिएगा। और इसका सीधा प्रसारण बेशक रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पाएंगे, साथ ही साथ एमबीसी के तीसरे चैनल पर आप इसे देख पाएंगे और एमबीसी ऑनलाइन पर भी अब इसे आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को पुनः रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा 2:00 से 4:00 के बीच रेडियो मनोरंजन पर। जी हाँ, 9:00 से 10:00 तक का ये कार्यक्रम रहेगा। 10:00 के समाचारों के बाद मैं पुनः आप उपस्थित रहूंगी आपका साथ देने के लिए भक्ति धारा कार्यक्रम में, जहां पर भजनों के साथ आपके तनाव को दूर करेंगे और ईश्वर की भक्ति में लीन होंगे। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत वेद सुधा का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश जी की प्रस्तुति में। और हमारा और आपका साथ 11 बजे तक का रहेगा। 11 बजे के समाचारों के बाद आप विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे, जिसकी पहल की जाएगी शम्मे फरोजा कार्यक्रम के साथ जो होगा उर्दू भाषा में और इसे पेश करेंगी सैयदा सुबाई। 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, 12 बजे तेलुगु भाषा का कार्यक्रम लेकर आएंगी वर्षा। 12:30 बजे सीताबाई दरमिया की प्रस्तुति में रहेगा मराठी गीतों का कार्यक्रम। 1 बजे कलाईवानी वीरन द्वारा कार्यक्रम रहेगा तमिल भाषा में। 1:45 बजे आप सुन पाएंगे अमिता को गुजराती गीतों के कार्यक्रम में। 2 बजे मैंडरीन का कार्यक्रम लेकर आएंगे डेविड। 2:30 बजे दैनिक कार्यक्रम आपकी पसंद और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी रोशनी, जो चलेगा शाम के 4 बजे तक। 4 बजे पुनः आप आनंद उठा पाएंगे तमिल भाषा के कार्यक्रमों का कलाईवानी वीरन द्वारा। शाम

5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच भूले बिसरे गीत, जिसे प्रस्तुत करेंगी उषा कौर। रात शाम के 6 बजे देश विदेश की खबरें समाचार बुलेटिन में, 6:30 बजे एक बार फिर कारवां आगे बढ़ेगा विविध भाषाओं के कार्यक्रम का, जिसकी शुरुआत होगी मैंडरीन के कार्यक्रम के साथ समाचारों के बाद, यानी 6:30 बजे के करीब, जिसे प्रस्तुत करेंगी हॉन्ग हॉन्ग। 7 बजे युवराज सेन लेकर आएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे कृतिका की प्रस्तुति में होगा कार्यक्रम तेलुगु भाषा में। 7:50 पर मराठी कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण रहेगी शिरीष रामा की। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम, जिसे प्रस्तुत किया जाएगा देवीना की ओर से। 8:40 पर महफिले शब उर्दू भाषा का ये कार्यक्रम, जिसे पेश किया जाएगा निसार अख्तर द्वारा। रात के 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे के बीच भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसे प्रस्तुत करेंगे प्रताप सिंह। और रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच पुराने गीतों का सफर नीतुषा की प्रस्तुति में सुनहरे पल कार्यक्रम में। और रात के 12 बजे से कल सुबह 6 बजे के अंतर्गत आप सुन पाएंगे विविध भाषाओं के गीतों को, जिसे सजाया जाएगा, और ये प्लेलिस्ट सजाई जाएगी हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा। और वैसे आज के दिन, बिल्कुल मंगलवार के दिन, हमारी और आपकी पुनः भेंट होगी दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। सीधा प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम जो होगा उड़ान की कहानी, और आज की उड़ान की कहानी हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर फाइजा हीरा, जो बिल्कुल डॉक्टर के क्षेत्र से हैं और साथ ही साथ महिलाओं के स्वास्थ्य की चैलेंजिंग बातें होंगी आज के इस कार्यक्रम में। तो जरूर हमारा साथ दीजिएगा दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच उड़ान की कहानी में। और एक बार फिर आइए रुख मोड़ लेते हैं पुराने गीतों की ओर। सुबह का नजराना कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हुए हैं, तो बिल्कुल आपके लिए लाजवाब गानों का ये सफर रहेगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने गाना चलाया सुबह का तारा, तलत महमूद और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में। भाई बुरा वक्त कहते हैं 2 प्रकार का होता है, एक जो हमें रोना सिखाता है और दूसरा जो हमें लड़ना सिखाता है। अब क्या सीखना है ये हम पर निर्भर करता है ना। तो चलिए मज़ेदार गीतों का ये सफ़र आगे लेकर चलते हैं इस अगले गीत के साथ। फिल्म है आह और आवाज़ है लता जी की।

0: भाई धन हो या मन, अगर गलत जगह पर लग जाए तो नुकसान तो हमें झेलना ही पड़ता है। इसीलिए धन और मन सही जगह पर सही दिशा में लगाइए, तब जाकर जीवन में फायदा होगा। और ऐसी ही मनचाही बातों के साथ, मनचाही गीतों का ये सफर हम सजा रहे हैं, कुछ लाजवाब पुराने गीतों के साथ और कुछ अनसुने गानों का ये सफर जारी रखते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको 50s के ज़माने की ओर, और लाजवाब ये गाना हम लेकर आए हैं। ये जो गीत हम बजाने जा रहे हैं अभी थोड़ी ही देर में, सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से लिया हुआ गीत है, 1958 के दौर के ज़माने का ये गाना। और इस फिल्म में नजर आए थे भरत भूषण साहब, साथ नजर आई थी निरूपा रॉय, और इस फिल्म का संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी द्वारा किया गया था, और बोल जो थे इस गाने के इंदीवर और हसरत जयपुरी के मिले जुले सहयोग से सजाए गए थे। तो चलिए लता जी और मोहम्मद रफी की आवाज में रखा हुआ 1958 के दौर का ये गाना सुनते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से लिया हुआ।
1: सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस।

दोस्तों, जो मिल रहा है शायद वही जरूरी है, और जो छूट रहा है शायद उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए तो छूटता जा रहा है। भाई, ऊपर वाला जो करता है उसकी जो सेटिंग होती है उस पर सवाल उठाना या उस बातों से नाराज हो जाना, ये कहीं ना कहीं हमें दुखी करता है। और चलिए इसी के साथ, जब कभी कोई ऐसा मंजर आ जाए, ऊपर वाले की मर्जी समझकर हमें बस आगे बढ़ना है। 7:23 सुबह का नजराना कार्यक्रम हम सुन रहे हैं, साथ मिलकर लाजवाब पुराने गीतों का ये सफर है। और चलिए, अगला गीत जो है फिल्म दाग से लिया हुआ गाना, तलत महमूद की आवाज़ में रखा हुआ, और इस फिल्म में शायद आपको याद होगा दिलीप कुमार और निम्मी नज़र आई थी, और 1952 के दौर का ये गीत रहा, संगीत था शंकर जयकिशन साहब का।

बिल्कुल 7:30 बज चुके हैं और समय धीरे धीरे करते हुए अपनी गति को लिए हुए आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ भाई हर नई सुबह अपनी कहानी फिर से लिखने का एक नया मौका देती है। इसलिए जो कुछ छूट गया है, जो कुछ नहीं हो पाया है, उसे दोबारा से पकड़िए, दोबारा से आप उसे कोशिश कीजिए करने की और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और इसी ऊर्जे के साथ हम नई सुबह में कदम रख चुके हैं। तो चलिए, ठंडी हवाएं चल रही है, नौजवान का ये गाना हमारे चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखे, बस यही आशा करते हुए इस गीत को साथ मिलकर सुनते हैं लता जी की प्यारी सी आवाज में। और बेशक थोड़ी ही देर में लेकर आते हैं आज की छोटी सी बात।

7:41 और इसी के साथ आपके फेवरेट सेगमेंट में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। और आज के इस फेवरेट सेगमेंट में हम लाए हैं एक और ऐसी लाजवाब सी बात जो हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा बारीकी से रिलेट करती है। चलिए, ये कहानी है डर के अभाव की। डर का जब भाव बढ़ता है तो क्या हो जाता है, इसी पर आज की ये कहानी को आधारित रखते हैं। और बिल्कुल, ये कहानी है एक चूहे की। एक चूहा था, उसे बिल्ली से बड़ा डर लगता था। हालांकि ये स्वाभाविक है कि चूहे को बिल्ली से ही डर लगता है, पर इस चूहे को कुछ ज्यादा ही डर लगता था। अपने सुरक्षित बिल में वो सोते हुए सपने में भी उसे बिल्ली ही नजर आती थी। हालांकि आहट से उसे बिल्ली के आने का बस अंदेशा होता था। सीधी सी बात है ये कि बिल्ली से वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और 2400 घंटे बस घुट घुट कर जीता था। ऐसे ही एक दिन एक बड़े

जादूगर से उसकी मुलाकात हो गई। फिर तो चूहे के भाग ही जैसे खुल गए हों। जादूगर को उस पर बहुत दया आ गई, तो उसने उसे चूहे से बिल्ली बना दिया। अब बिल्ली बनते ही बिल्ली बना तो चूहा उस समय तो बड़ा खुश हुआ कि भाई आज से मुझे कोई डर नहीं, पर कुछ दिनों के बाद उसे फिर डर लगने लगा। वो फिर जादूगर के पास पहुंच गया और अब शिकायत ये हुई कि अब उसे कुत्ते से डर लगता है। तो बस जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उसे कुत्ता बना दिया। कुछ दिन तो ठीक चलता रहा, फिर कुत्ते के रूप में भी उसे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। अब उसे शेर चीतों से भी डर लगने लगा। सपने में शेर चीते आते थे, उसे लगता था कि अब तो मेरी और हालत टाइट हो गई और इसीलिए पुनः उससे तो बड़ा डर लगना शुरू हो गया। अब इस दफा जादूगर ने सोचा कि पूरा इलाज कर दिया जाए। सो उसने कुत्ते का रूप जो चूहे ने पाया था उसे बस सीधा शेर बना दिया। जादूगर ने सोचा कि शेर जंगल का राजा है, सबसे शक्तिशाली प्राणी है और इसीलिए उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, शेर बनकर भी चूहा कांपता ही रहा। अब उसे किसी और जंगली जीव से डरने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी बेचारा शिकारियों से डरता रहता। उसे लगता कि कोई शिकारी जंगल में आएगा और उसका शिकार करके जाएगा। आखिर वो एक बार फिर जादूगर के पास गया, लेकिन इस बार जादूगर ने उसे शिकारी नहीं बनाया। पता है क्या किया जादूगर ने? उसे फिर से चूहा बना दिया। जादूगर ने कहा, चूंकि तेरा दिल ही चूहे जैसा है इसीलिए तू हमेशा डरेगा। चाहे तेरे ऊपर कोई भी शरीर हो, लेकिन जो तेरा मन है वो हमेशा डर की जकड़ में है, इसीलिए तू हमेशा डरपोक ही बना रहेगा। दोस्तों, हमारे जिंदगी में भी प्रमुख बात यही है कि डर और आत्मविश्वास, ये दोनों भाव इंसान के दिमाग के पटल पर उपस्थित रहते हैं और सकारात्मक भाव आत्मविश्वास का घोतक है और नकारात्मक भाव जो है वो डर की उत्पत्ति करता है। यानी देखा जाए तो अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ है तो वो हमेशा आपको एनर्जी से भरपूर रखेगा, स्फूर्ति से भरपूर रखेगा, और आप में अगर आत्मविश्वास है तो वो प्रॉब्लम्स में भी हमेशा सल्यूशन ढूंढेगा। लेकिन आपके मन में ही अगर डर है तो प्रॉब्लम कहीं होगी नहीं, आपको हर सल्यूशन में भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आएगा। जिसके मन में आत्मविश्वास है वो सब कुछ ठीक करने का भाव रखता है, और जिसके मन में डर का भाव है वो प्रॉब्लम्स होने के, कोई प्रॉब्लम्स ना भी हो तभी वो प्रॉब्लम्स खड़ी करने के हमेशा फिराक में रहेगा। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी बात बिल्कुल हमारे जीवन से भी रिलेट करती है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन में डर को बसाए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले ही हम बस डर जाते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, आपको आपके भीतर क्या चाहिए, डर या फिर आत्मविश्वास?

लिए। यहाँ पर बहुत सारे प्यारे मैसेजेस, बहुत सारे फोन कॉल्स, और किसी ने अभी भी एक मैसेज भेजा कि आत्मविश्वास ही डर को मिटा सकता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी सफर में हम भी गीतों के माध्यम से आपके अंदर आत्मविश्वास जगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये गीतों को सुनकर सुबह अगर अच्छी हो, सुरीली हो, टकाटक हो, तो दिन बढ़िया बीतना ही है। और इसी विश्वास के साथ हम जुड़े हैं आज के सफर में, सुहाना सफर, भाई सुबह का नजराना का सफर।

0: की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
1: हर सुबह का नजराना कार्यक्रम मंगलवार का दिन है, लाजवाब गीतों के साथ। लाजवाब हमारे श्रोता जो हमेशा फोन कॉल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बहुत ही प्यार से आप अपने मैसेजेस भेजते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब आप ही के दिमाग में कोई गाना बज रहा हो और वो जब अचानक से रेडियो पर आपको सुनाई दे, जो हो सकता है आपके स्कूल या कॉलेज के दिनों का हो, बचपन का हो, या फिर आपके पापा मम्मी का कोई फेवरेट गाना जो वे गुनगुनाया करते थे। भाई दिल से दिल का रिश्ता कनेक्ट हो जाता है और हमारी कोशिश भी यही है कि कुछ ऐसे ही गानों को हम अपने आज के लिस्ट में शामिल करें। और चलिए 7:52 आपके नामों को जोड़ने का समय हो चला है। यहाँ पर हमेशा की तरह घोंघुप से श्यामा रघुनंदन जी बहुत ही प्यार से जुड़ी हुई हैं। उनके प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी नम्रता, केशव और युधीश साथ हैं और उनकी सखियों को हम कभी नहीं भूलते। विश्वानी दुखी जो है कौंडेमा से और वीना रामफल जो हैं त्यागूर से हमेशा साथ देती हैं। फ्लोगियाल से माधुरी जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। नवलफॉन्स से गायत्री जी, बेटे अजय के साथ। मामी है कल्याणी मोहन मेबर्ग से। भाभी शकुंतला जो है मो ताइलोंग से और आपकी प्यारी सखी गीताबाई जो हमेशा साथ देती हैं अपने सभी परिवार के साथ। काट्रोबोन से माला जी, आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप भी अपने परिवार के साथ, अपने पति सूर्यदेव के साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ मोडालबिया से जुड़ी हुई हैं अनीता लाल जी, साथ है ईतू परिवार, लालजी परिवार गोगा और नागेश्वर परिवार साथ जुड़ा हुआ है। वाकवा से शोभा जी भी जुड़ चुकी हैं, बेटियां अनुषा और शर्वीना, साथ है अवनीश और अर्नवी और जुड़े हैं आपकी प्यारी बहनें प्रेमिला जयमंगल और वीना जी मोचेदा से और आपकी प्यारी सखी राधा बाल गोबिंद। ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से शीला जी अपने पति सार्जन के साथ जुड़ी हुई हैं बहुत ही प्यार से। उदय जी भी साथ दे रहे हैं इस वक्त गिवेजुपस से और आपकी प्यारी पत्नी संगीता। आज आपके प्यारे बेटे आवेश का जन्मदिन है जो 38 ईयर्स के हो चुके हैं, 38 वर्ष के। उनकी प्यारी पत्नी है शिखा और बेटा रियान। और साथ ही साथ उदय जी आपकी प्यारी भगिनी विनुषा का भी जन्मदिन है जो उन बिल्कुल 39 ईयर्स की हो चुकी है और बांगी परिवार से हैं। रोजबेल से आप साथ दे रही हैं। चलिए आपको बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। गौबुआ से शिवरानी जी भी जुड़ चुकी हैं और आपके सभी सुनाही परिवार के साथ। आपके बेटे हैं सुधीर शर्मा सुनाही जो काट्रोबोन से साथ दे रहे हैं, प्यारी बहू रोशनी। और पोते हैं शिरीष, शिखा और शिवान, साथ है राज और आरती जो गौबुआ से साथ दे रहे हैं। और यश, अंजलि, कबीर, आपकी प्यारी बेटी है शर्मिला सीचन और नातीन है उर्वशी रघुबा जो है काट्रोबोन से। और यूके से कृष्णा कुमारी गौरीशंकर आपकी प्यारी बहन। और आपने बहुत प्यार से इंसिस्ट किया है कि मैं आज के इस कार्यक्रम में अपना नाम भी जोड़ूं, आपकी प्यारी बेटी रत्ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में आप लोग जब प्यार से हमारे साथ नाता जोड़ते हैं, ये हमारे लिए किसी बड़े से सौभाग्य से कोई कम बात नहीं। यहाँ पर मानती जी भी बहुत ही प्यार से साथ दे रही हैं। एनुअल फॉन्स से आपकी प्यारी बहन अनंती और आरती हमेशा जुड़ी रहती हैं, तो बस साथ देते रहिएगा। वाकवा से जुड़ी हुई हैं शीला जी, बेहद पसंद करती हैं पुराने गीतों को। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेमिला सी गुलाम कौंतिमा से साथ दे रही हैं, साथ दे रही हैं आपकी प्यारी बहनें रागिनी और साधना जो है बेचू परिवार से, रिश्मा फ्लाक से और अनसुया राम केलावन जो हैं थ्रियोले से। और आप पंडित सुदेश बिजादा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, कल उनका जन्मदिन है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन, तो चलिए पंडित सुदेश बिजादा को उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपकी ओर से और आप उनकी प्यारी पत्नी मीरा और उनके तीन बच्चों की ओर से। चलिए यहां पर डेजीना भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पोम्फेया फिनिक्स से और जन्मदिन मना रहे हैं अभिषेक। सभी सी संका परिवार की ओर से उनको ढेर सारी बधाइयां। इंदिरा लॉटन आप भी हमारा साथ दे रही हैं और लंदन के आपके सभी परिवार के नाम करना चाहेंगे अगला गीत। विजय बंधन जी भी हमारे साथ हैं क्लाविट से, प्यारी पत्नी रेखा, बहने हैं चंदनी, बिंदु, कुमारी और आपके सभी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योपिप से गीता जी जुड़ चुकी हैं, गौबुआ से है लीलो जी और आपकी सखी गीता जी भी साथ

दे रही हैं, मोताइलोंग से इंदिरा चिंताराम भी साथ दे रही हैं, ओम और तुषार के साथ हाईलैंड से कुंज बिहारी परिवार, मोहन सिंह परिवार और प्यारी उषा जी भी साथ दे रही हैं, बॉम्बू से लक्ष्मी जी, उनके प्यारे बेटे अक्षय के लिए हम कहेंगे गेट वेल सून, बस जल्दी ठीक हो जाए, आपकी प्यारी बेटी आशनी भी साथ जुड़ी हुई हैं, काट कोको से कमला जी भी जुड़ चुकी हैं, रामन और सीपॉल परिवार के साथ,

मीराबाई दमिया मोडारबिया से दमिया और पादिया परिवार के साथ और पुंफिया से गीता जी आप जुड़ चुकी हैं आपके प्यारे पति रोहित साथ है आदित्य आरव तनिष और आपकी प्यारी नातिन जानवी तीन बेटे तीन बहुएं किरण बारोट और नम्रता बारोट साथ दे रहे हैं लिस पेगोंस त्रिबुशे से आपके प्यारे बेटे मयूर बेटी है नियति दामाद है सर्वेश और आपके दो नाती साथ हैं और नानी जी भी प्लान मायों से बड़ी खुश है तलत महमूद के गीतों को सुनकर तो चलिए ये गाना दिल से हम आपके नाम करते हैं और अभी थोड़ी ही देर में समाचारों के साथ जुड़ेंगे समाचारों के बाद मिलवाते हैं आपको खलनायक के साथ बिल्कुल मुन्ना भाई के साथ करवाएंगे आपकी मुलाकात क्योंकि कल उनका जन्मदिन है तो जरूर साथ दीजिएगा और इसी के साथ मोहम्मद रफी का ये गीत

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सबके के नमस्ते, फजर के 8 बजल बा। भोजपुरी में समाचार सुना जा। एफसीसी में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटा ले जस्ती समय से पूछताछ करल गल। प्रवीण जगनाथ बोलन की ऊ शांत हवन, ऊ पूछताछ के विषय पर टिप्पणी करे से इनकार कर दिलन। उनकर वकील अगाउफ गुलबुल पूछताछ के प्रक्रिया पर संतोष जतैलन आर बोलन की जांच निष्पक्ष आर संतोषजनक तरीका से होल। MMG तेल ठेका मामला में पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोविंद के संगे 7 घंटा ले पूछताछ करल गल। FCC में अंडर वार्निंग पूछताछ करल गल। STC के 30 बिलियन रुपया से के अनुबंध पर सवाल करल गल। पूर्व अटॉर्नी जनरल जांच में सहयोग के भरोसा जतैलन। मनीष गोविंद दावा करलन कि उनकर संगे उत्पीड़न जैसा व्यवहार हुआ था। आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 के लागू करे के प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण शुरू होता। दुगो महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार करल जाए। एकर में फाइनेंस बिल शामिल बा और आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलिनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा करल जाए। ये गो बहुत बड़ा विधेयक है जिकर उद्देश्य बजट 2026-2027 में घोषित करल गल कदम के लागू करल जाए। साथ ही आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम के संगे 23 को सवाल पूछल जाए। आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के 17वां कंसल्टेटिव कमेटी के बैठक काल पोर्टलिस नगर पालिका में आयोजित करल गल। बैठक में मुख्य रूप से आप्रवासी घाट के भिरी स्थित बफर जोन आर हुआ करे सकल चाई होला आर नहीं करे सकल चाई होला विकास काम पर चर्चा होल। इस सब विकास परियोजना के यूनेस्को बगल से विश्व धरोहर स्थल के बफर जोन खातिर निर्धारित दिशा निर्देश के पालन करे के परी। और दूसर देश के खबर में उत्तरी इराक में ढेर जगह पर ड्रोन से हमला करल गल बा। इस सब हमला ईरान के बगल से करल गल बा। एयरबिल में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के भीरी धमाका सुनाई देवल गल। एक संगे भोजपुरी में समाचार पूरा हो गल। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद और सबको के नमस्ते।
2: Your news on NBC Play.

MBCRadio.tv. MBCRadio.tv. मरने की खबर सुना जा रॉयल रोड होस्पिटल में 92 बरिस के 92 ऑ के मिसेस बीबी सफूरा बेलात पैदाश नाम कुडा बक्स अर्जुन सफूरा से जस्ती जानल जात्रालन इंतकाल कर गल हवन। जनासा आज फजर के 10 बजे उनकर दामाद साकू पामिसा के घर रॉयल रोड होस्पिटल से उठा के यूनियन पार्क के कब्रस्तान ले जाल जाए। फ्यूनरल टूडे एट 10 AM। तुलसी लेन यूनियन पार्क में 46 बरिस के 46 ऑ के श्री कविराज तुलसी जिन विक्रम से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 1:15 उनकर माँ सुकवंती तुलसी के घर तुलसी लेन यूनियन पार्क से उठा के मागेशानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। इंग्लैंड में 87 बरिस के 87 की श्रीमती तारामती हीरू पैदाइश नाम अम्बाजी अर्जुन मनका से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। उनकर अंतिम संस्कार आज दिन के 1:30 न्यू ताजगेट श्मशान भूमि में करल जाए। जोसेफ फ्रांसवा डुबे स्ट्रीट वाले दे प्रेत्र में 76 बरिस के 76 ऑ के श्री दयाराम गुरचैन जोन ज्ञानदत्त से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज सांझ के 3 बजे उनकर पत्नी कलावती गोरचैन के घर जोसेफ फ्रांसवा डुबेन स्ट्रीट वाले दिपत से उठा के बामौशों के कब्रस्तान ले जाल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। पिचित काबान कौंडमास पावे में 69 बरिस के 69 के श्री कोमल दत्त मंगर जोन लालदेव से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 12:30 उनकर घर पिचित काबान कौंडमास्क पावे से उठा के मिजिन कौंडमास्क के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 9:30 PM। नंबर 29 कनाल बाथर्स्ट सेंट क्रॉ में 64 बरिस के 64 के श्रीमती देवती जय गोपुल पैदाश नाम शिव नारायण अर्जुन अंबिका से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकर पति दीपक जय गोपुल के घर निमेहो वैतनफ कनाल बाथर्स्ट सेंत क्रॉ से उठा के सिपाही भूले के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। इंटरनेशनल स्ट्रीट रिविया चौरपा में 78 बरिस के 78 के श्री जीवन पीरू जिन सत्यदेव से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 10 बजे उनकर घर इंटरनेशनल स्ट्रीट रिविया चौरपा से उठा के बेलमो गुडलैंड के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे में 90 बरिस के 90 के श्री हरि प्रसाद चमन श्री हरि प्रसाद चमन जिन प्रसाद से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 2:30 उनकर पत्नी मेधा चमन के घर लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरेंस ट्रिब्यूशे से उठा के पीतों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। नंबर 75 शिमेल आसूस काथोबोन में 81 बरिस के 81 के श्री लुमन सिंह ओबिलक जोन भूप से जस्ती जानल जाथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 12:30 उनकर बेटा ओबिलक उत्तम सिंह के घर नंबर 75 शिमेल आसूस काथोबोन से उठा के गांधी पालमा के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 9:30 PM। रॉयल रोड क्रेवकर में 83 बरिस के 83 के श्री चंदर कालीचरण जुन लाला से जस्ती जानल जाथरलन अर्जुन मुखा अस्पताल के डॉक्टर हेमराज कालीचरण के पिता रलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा यजराज कालीचरण के घर रॉयल रोड क्रेवकर से उठा के क्रेवकर के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। मुसलमान सुहावन कारोलिन बेले रिविया सेश में 80 बरिस के 80 के श्री नारायण जीतन जुन केवर से जस्ती जानल जाथरलन अर्जुन पहले काशी पोर्ट लुइस रहथरलन गुजर गल हवन। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकर घर मुसलमान सुहावन कारोलिन बेले रिविया सेश से उठा के पिचिबुआ कारोलिन बेले के श्मशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM।

0: बिगी स्ट्रीट हॉलीवुड वाकवा में 37 बरिस के 37 ओं के श्री राजीव सौजिया जो राजीव से जस्ती जानल जाथरलन गुजरगल हवन अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकर माँ धनवंती सौजिया के घर बिगे स्ट्रीट हॉलीवुड वाकवा से उठा के थोमा मेल के श्मशान भूमि ले जाल जाए क्रमेश्वर टूडे एट 1 PM विरासोमी रोड कॉटेज में 74 बरिस के स्वसनका तोजों के श्री बिसुनदेव प्रियतम जुनलोलो से जस्ती जानल जाथरलन गुजरगल हवन अर्थी आज सांझ के 3 बजे उनकर बेटा सनी प्रियतम के घर विरासोमी रोड कॉटेज से उठा के कॉटेज के श्मशान भूमि ले जाल जाए क्रमेश्वर टूडे एट 3 PM नंबर 22 गोरा इसाक स्ट्रीट पोर्ट लुइस में 31 बरिस के 31 ओं के जनाब मोहम्मद जमील बैरागी जन जमील से जस्ते जानल जाथरलन इंतकाल करकल हवन जनासा आज दिन के 11 बजे उनकर वालिद इम्तियाज बैरागी के घर नंबर 22 गोरा इसाक स्ट्रीट पोर्ट लुइस से उठा के रिश्ते के कब्रस्तान ले जाल जाए फ्यूनरल टूडे एट 11 AM एरिगाडू लेन मिडलैंड में 45 बरिस के 45 ओं के श्री उत्तम बुखुरी जिन शैलेश से जस्ती जानल जाथरलन आर टैक्सी ड्राइवर रलन गुजरगल हवन अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकर घर एरिगाडू लेन मिडलैंड से उठा के मागिशानी रोजबेल के श्मशान भूमि ले जाल जाए क्रिमिशन टूडे एट नून जितना जाना शोक में बाऊ लोग के संगे हमने के हमदर्दी बा
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह का नजराना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का पुनः हम स्वागत करते हैं हमारे सेकंड आवर में, जहां पर हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने बिल्कुल बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बहुत ही अहम इमेज जमाई है और कल यानी 29 जुलाई को वे मनाएंगे अपना जन्मदिन। आपको ये भी बता दें 67 वर्ष के हो जाएंगे संजू बाबा। 29 जुलाई 1959 को उनका जन्म हुआ। एक भारतीय अभिनेता, एक फिल्म निर्माता जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जाना गया और थोड़े बहुत राजनीति से भी वे जुड़े। वैसे संजू बाबा को कौन नहीं जानता। राजनीतिज्ञ सुनील दत्त और अभिनेत्री नरगिस के सुपुत्र, और उन्होंने 1981 में फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनय किया और उन्होंने साथ ही साथ फिल्मों में प्रेमी, हास्य जैसे अभिनय को भी बहुत ही बखूबी निभाया। अपराधी, ठग और पुलिस अधिकारी का अभिनय भी उन्होंने किया और अपने फैंस के दिलों में जगह बना ली। वैसे ये तो आप जानते ही होंगे कि संजू बाबा ने रॉकी फिल्म के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की।
0: कलाकार के साथ
1: चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ।

0: बिल्कुल रॉकी फिल्म से की उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत। वैसे उनके निजी जीवन की बात करें, व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें, तो उनका जन्म जैसे हमने बताया 29 जुलाई 1959 को बॉलीवुड सितारों के घर हुआ। बिल्कुल सुनील दत्त और नरगिस के यहाँ उनका जन्म हुआ और उनकी दो प्यारी बहनें प्रिया दत्त और नम्रता दत्त, उनकी शिक्षा जो थी वो कसौली के पास लॉरेंस स्कूल सनावर में हुई और उनकी माँ का मई महीने में यानी 1981 में उनकी पदार्पण फिल्म प्रथम प्रदर्शन से 3 दिन पहले ही उनका निधन हो गया, जो कि उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था और उन्हें फिल्मों में उनके विभिन्न अभिनयों सहित उनके विवादित कार्यों, साथ ही साथ मादक पदार्थों के सेवन आदि के लिए उनको जाना गया और उन्हें 1982 में अवैध मादक पदार्थ रखने के आरोप में 5 महीने का कारावास भी हुआ था। हालांकि उनकी जो फिल्मी सफर रही वो बहुत ही कह सकते हैं कि ट्रेजेडी से भरपूर थी, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को हम जज बहुत करते हैं, पर कहते हैं ना कि उनके जीवन पर क्या बीती थी ये तो आपने बिल्कुल संजू फिल्म में थोड़ा बहुत आपने देखा ही होगा कि किस तरह से संजय दत्त के जीवन में एक के बाद एक करते हुए प्रॉब्लम्स आते गए जिनको वे संभाल नहीं पाए। और बेशक उस समय वे थे एक यंगस्टर्स और रवानी, खून की रवानी, और कहते हैं ना कि जोश और जुनून में कई बार लोग कर देते हैं ऐसा कुछ काम। और चलिए आज की मुलाकात जो है बिल्कुल संजू बाबा से आपकी करवा रहे हैं हम।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: और बिल्कुल उन्होंने बहुत समय बिहाइंड द बार्स निकाला, यानी कारावास में उनको काफ़ी समय तक रहना पड़ा और हवालात से निकलने के बाद भी उन्होंने 2 वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यतीत किए और उनका अमेरिका में अधिकतर समय टेक्सास रिहाब क्लिनिक में रहा है। उसके बाद उन्होंने पुनः भारत आकर अपने करियर की फिर से शुरुआत की और जैसे संजय दत्त ने 1987 में ऋचा शर्मा के साथ उन्होंने विवाह किया था, लेकिन यहाँ पर भी तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ऋचा शर्मा को भी ब्रेन ट्यूमर हो गया और जिसके कारण 1996 में उनकी भी मृत्यु हो गई और इस दंपति के घर 1988 में एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम त्रिशला है और वो संजय दत्त की पत्नी की मृत्यु और उनकी

हिरासत के बाद अपने नाना नानी के साथ वे रहने लगी। संजय दत्त का दूसरा विवाह जो था वो रिया पिल्लई के साथ हुआ 1998 में, और 2005 में उनका भी तलाक हो गया। संजय दत्त ने 2 वर्ष डेटिंग करने के बाद 2008 में गोवा में एक निजी दावत में मान्यता के साथ विवाह किया। 21 अक्टूबर 2010 को उनके यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए और वे उनके पिता बने, और जिनमें लड़के का नाम शहरान और लड़की का नाम इकरा रखा। भाई फिल्मी जीवन की बात भी बहुत ही लाजवाब। उन्होंने सबसे पहले 1972 में रेशमा और शेरा फिल्म में बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपने पिता द्वारा निर्मित फिल्म में काम किया था, और इस फिल्म में वे एक कव्वाली गायक के रूप में दिखाई दिए थे। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे, बट साथ ही साथ 1981 में उनकी फिल्म रॉकी के साथ उन्होंने पदार्पण किया बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और वो भी साथ ही साथ 1982 की सर्वाधिक कमाई जाने वाली फिल्म रही विधाता। इस फिल्म के भी वे सितारे बने। चलिए अभी थोड़ी ही देर में विधाता का भी ये मशहूर सा गाना आपको सुनाएंगे। 1985 में उनकी फिल्म आई जां की बाजी। इसके अलावा संजय दत्त ने कई सारी सफल फिल्मों में काम किया, जैसे मैं आवारा हूं 1983 में, जीवा 1986 में, मेरा हक 1986 में, साथ ही साथ फिल्म आई ईमानदार और इनाम 10,000 1987 में, जीते हैं शान से 1987 में, मर्दों वाली बात 1988 में, इलाका 1989 में, हम भी इंसान हैं 1989 में, कानून अपना अपना 1989 में, ताकतवर 1989 में, और साथ ही साथ कई सारी ऐसी फिल्मों के साथ 1986 में आई थी फिल्म नाम, और उन्होंने समालोचकों से भी प्रशंसा प्राप्त की और विकी कपूर के रूप में अपनी संवेदनशील अग्रणी भूमिका के लिए प्रशंसा अर्जित की। इतना ही नहीं, उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म कब्जा जो 1988 में आई थी, और जेपी दत्ता की फिल्म हथियार में भी उन्होंने काम किया और उन्हें बहुत सारी क्रिटिक्स मिली। वास्तव फिल्म का भी अभिनय लोगों को बेहद पसंद आया और उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फिल्म वास्तव के लिए। उनकी सबसे सफल फिल्म रही मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई 2006 में मॉरिशस पर उत्तरार्ध में जो प्रदर्शित हुई थी, और इस फिल्म के लिए उन्हें मुन्ना भाई के अभिनय के लिए बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। चलिए विधाता फिल्म की जब बात छेड़ी ही है तो ये गाना आपके नाम करते हैं।

जी हाँ, जैसे फिल्म विधाता में वे नजर आए थे, वैसे ही फिल्म जीवा के लिए भी उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी। और जीवा का ये मशहूर सा गाना जो गुलजार साहब द्वारा लिखित और आर डी बर्मन साहब का संगीत निर्देशन इसमें हुआ था, आज भी ये गाना कितना सुहाना लगता है।

गाने सुनकर बेशक यादें ताज़ा हो जाती है। और आज बिल्कुल हम इस प्रोग्राम को डेडिकेट कर रहे हैं संजू बाबा के नाम, क्योंकि कल भी मनाएंगे अपना जन्मदिन और 66 इयर्स के हो चुके हैं संजू बाबा, और बहुत ही लाजवाब अपनी भूमिकाओं में वे नजर आए। और साथ ही साथ जब 90s के दशक की हम बात करें तो 90s में उनकी फिल्म आई थी तेजा, साथ आई थी खतरनाक जहरीले थानेदार, 1991 में खून का कर्ज, 92 में आई थी यलगार, 93 में गुमराह, 93 में ही साहिबा, जिसमें उन्होंने बिल्कुल थोड़ी बहुत नेगेटिव भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ आतिश फिल्म में भी वे क्या लाजवाब लगते थे, 1994 फिल्म साल की ये मूवी। साथ ही साथ 91 की जब हम बात करें तो उस साल की सबसे बेहतरीन मूवीज़ में थी।

में से थी सड़क, जिसमें वे नजर आए थे पूजा भट्ट के साथ। और क्या लाजवाब स्टोरी थी, क्या लाजवाब केमिस्ट्री थी। 1991 में ट्राइंगल मूवी, लव ट्राइंगल मूवी साजन। 1993 में वे बने खलनायक विद द मूवी खलनायक। और खलनायक की जो भूमिका रही, कहीं ना कहीं उनके नाम के साथ ये जुड़ गया खलनायक। पर सच कहें तो उन्होंने साजन और खलनायक के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त किया। और बिल्कुल जो फिल्म थी नाम और सड़क, ये फिल्म के द्वारा ही संजय दत्त को बहुत ज्यादा प्रशंसा मिली। और साजन फिल्म जो थी बॉलीवुड इंडस्ट्री की 1991 में सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी रही। और उसी साल सड़क फिल्म भी पांचवें नंबर पर रही। हालांकि खलनायक जो थी वो सेकंड हाईएस्ट मूवी रही 1993 की। बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा प्रशंसादायक फिल्म रही गुमराह। वैसे उसके बाद कह सकते हैं कि उनकी जो फिल्मी करियर का जो दौर रहा वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में उनका नाम फंसा हुआ था। पर कहते हैं ना, इस दौरान भी उनकी कई सारी ऐसी मूवीज़ आई, जैसे 1997 में फिल्म आई दौड़, और 1998 में काजोल के साथ उनकी पेयरिंग की गई थी फिल्म दुश्मन में। और वास्तव जैसी मूवी को हम कैसे भूल सकते हैं। मिशन कश्मीर में भी वे नजर आए थे, 2000 की ये मूवी रही। और साथ ही साथ 2001 में वे दोबारा से कॉमेडी रोल में नजर आए थे गोविंदा के सामने, साथ जोड़ी नंबर वन। फिर आई फिल्म पिता जो थी 2002 में, कांटे में भी वो एक मल्टी स्टारर मूवी रही, और इसके लिए भी उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिला, अवार्ड मिला। 2003 में अवार्ड विनिंग फिल्म मुन्ना भाई MBBS, और खतरनाक कह सकते हैं कि खतरनाक नाम खलनायक के बाद उनका नाम चेंज हुआ इनटू मुन्ना भाई। और मुन्ना भाई की जो उनकी कॉमिक टाइमिंग थी वो लोगों ने बेहद पसंद की। और मैं समझती हूँ कि मुन्ना भाई का जो रोल था वो और कोई बेहतरीन तरीके से कर ही नहीं पाता, ये रोल उन्हीं को सूट करता है। चलिए, गाने तो बहुत सारे हैं, पर आपको कुछ ना कुछ ऐसे मजेदार गीतों की बस कुछ मुखड़े सुनाते चलें।

भाई रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच में कई बार कहते हैं ना कि कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिससे लोग पागलपन का नाम दे देते हैं। और खलनायक के जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ भाई, उनकी लाइफ के साथ भी अप्स एंड डाउन्स कुछ इस कदर आए कि उनकी पूरी इमेज हिला के रख दी। पर फिर भी कहते हैं ना कि वो शिद्दत, वो जज्बा उन्होंने दिखाया उस दुनिया से बाहर निकलने का और एक बार फिर लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने का।

0: भाई जिंदगी का वास्तव जैसा भी हो, पर कहते हैं ना कई बार हमको मौका मिलता है अपने आप से मिलने का, और कुछ थपेड़े जिंदगी में आपको बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं। और संजू बाबा के जिंदगी का भी यही किस्सा रहा। अगर वो अपने फैंस के दिलों में जगह बना पाए हैं तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ही डाउन टू अर्थ नेचर। और चलिए इसी के साथ लगे रहो मुन्ना भाई, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि सच में देखा जाए तो इस खलनायक ने ये रास्ता तय किया और वास्तव में वे बन चुके हैं एक सच दिल से मुन्ना भाई। तो बस दिल से हम भी कहेंगे लगे रहो मुन्ना भाई। और आज की ये छोटी सी मुलाकात थी मुन्ना भाई के साथ।
1: बोले तो कैसी होगी हाय, ऐसी या वैसी, अरे कैसी होगी हाय।

0: जैसे मांगता है वैसी होगी। हाय।
1: तो ये थे हमारे मुन्ना भाई, और बिल्कुल मुन्ना भाई में हम यही कह सकते हैं कि संजू बाबा का जो रियल कह सकते हैं कि जो नेचर है वही डिपिक्ट किया गया। तो आज के इस प्रोग्राम को बस यही समाप्त करने का समय हो चला है। बिल्कुल सुबह का नजराना कार्यक्रम का ये सफ़र था, एक छोटी सी मुलाकात जहां पर आपकी मुलाकात हमने करवाई आज के संजू बाबा के साथ। और
2: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
1: बिल्कुल आज के सफर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे और इस आखिरी सेगमेंट तक हम आ पहुंचे हैं हमारी धरोहर में, जहां पर किरण जानकी हमारे साथ जुड़ेंगी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां, बहुत ही लाजवाब जानकारियों के साथ। और बिल्कुल भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए हम थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे 9 बजे के समाचारों के साथ। तो आइए स्वागत करते हैं किरण जानकी का।
3: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
4: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमनी चीनी पागोडा पर बात करब जा। चीनी पागोडा जोन की मॉरिशस में एगो खास सुंदरता, एगो खास निखार आनेला। लेसालिन के क्वांटी पागोडा मॉरिशस में एगो राष्ट्रीय धरोहर है, और यहाँ पर बहुत गतिविधि चलेला। 28 जनवरी 1842 के क्वांटी के स्थापना हो रहा, और चीनी इमिग्रेशन में ई पागोडा एगो बहुत बड़ा भूमिका निभैले बा। वो सकल बा चीनी कौम के तीनों समुदाय के एकत्र करे। चीनी इमिग्रेशन चीन के अलग अलग हिस्सा से चलत रहल, जहाँ विभिन्न संस्कृति के पालन करे होला और जिए के तरीका के लोग आवत रहलन।

0: होता। इमरहल हक्का, नामसुन और फुकियन, ये तीनों चीनी समुदाय में मतभेद रहल। अमाय चोइसोन ई पागोडा के स्थापना करलन और तीनों समुदाय के ऊ एकत्र करलन और हर बरिस बड़ा समारोह होवेला क्वांटी के जन्मदिन पर। क्वांटी न्याय और धर्म के देवता हवन, समृद्धि, खुशहाली और वफादारी के भगवान मानल जालन। क्वांटी के पूजा जब चिन्हवा करेला और हर बरिस पंचांग के हुआ पर निकाला जाला ई दिन ओगोस्कोप देखे खातिर। पंचांग पर बहुत ध्यान देवल जाला चीनी समुदाय में, हमनीय के तरह जोन हिंदू समुदाय से जुड़ल है जा। कितने विद्यार्थी, कितने व्यापारी, खास तौर पर जब अपन बिजनेस शुरू करे लन जा तो क्वांटी के ओर बढ़े लन सा और आशीर्वाद खातिर उ लोग हुआ पर जालन जा। और क्वांटी सिद्ध एस्ट आजियाचिक में भी हांगकॉन्ग, ताइवान, हर जगह क्वांटी मशहूर हवन। लागेनियो में क्वांटी के एगो बड़ा पागोडा बा हुआ के सैंपिया इलाका में और हुआ समुदाय लोग क्वांटी पागोडा पर बहुत जोर देवेलन सा। आमा चोइसोन एकर निर्माण कर ले रलन और वो एमे चोइसोन के गवर्नर रॉबर्ट फॉकवा के इजाज़त लेलन मॉरिशस में चिन्हवा लोग के आने के। ई खातिर कप्तान शब्द इस्तेमाल करल जाला, उनकरा कप्तान बोलल जात रहल। दुर्भाग्यवश उ चीन के ओर सफर में जान गंवा बैठलन, फिर कबो ऊ नहीं सकलन मॉरिशस आवे। क्वांटी पागोडा में चलेला फेत मिन, जब सब समुदाय हुआ मिलेला त उ लोग में ई जो नूडल्स बा मिन बा उ बांटल जाला। पूरा पोटलुई खातिर प्रार्थना करल जाला, पूरा पोटलुई से, चाइना टाउन से सब कोई निकल के अयन जा क्वांटी पागोडा जब शुरू शुरू में एकर स्थापना हो रहा था। और वो बखत ट्रांसपोर्ट नहीं रहल और जो चीनी समुदाय लोग हवन सा उलोग चल के अयन सा लगाओ विक्टोरिया बगल चल के और फिर बड़ा जो भीड़ बा भीड़ बना के उ लोग अयन जा इफित मिन में। और जैसे पूजा प्रार्थना हो जाए त रात के ई जो मिन बा छोटा छोटा पैकेट बना के सब कोई में बांटल जाए। ई माना जाला कि मिन समृद्धि के प्रतीक है। क्वांटी धरला उ लोग के आशीर्वाद देवेला। बहुत बड़ा समारोह है ई क्वांटी पागोडा के दिन जब ई परब चले रहा था। और पोटलुई के साथ साथ जितना बुची के सिन्वा हवन सा शहर में उ लोग खातिर ई फितमिन बहुत खास है। क्वांटी बोले लन जा एगो जज रलन और उ न्याय के देवता मानल जालन। ई खातिर उनकरा बहुत सराहल जाला, उनकर पूजा पाठ बहुत श्रद्धा के साथ करल जाला। शहर में आज भी ई क्वांटी पागोडा बहुत ही खूबसूरती के साथ खड़ा बा। सकबाई कर दौरा करे कोदों के बगल में ई पावल जाला। और एकरे संगे हम आपसे आज्ञा चाहब। धन्यवाद, नमस्ते।
1: तो चला इसी के साथ एगो भोजपुरी गीत मुकेश शेदी की आवाज में रखल और इसी गीत के साथ आज के कार्यक्रम हाइजा पर समाप्त हो जाए। अभी थोड़ी ही देर में 9 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे सुमिता सरकार को आज की चर्चा कार्यक्रम में, जिसका सीधा प्रसारण न केवल रेडियो मॉरिशस पर साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर आप इसे देख पाएंगे। तो इसी के साथ अभी तक के लिए यहाँ तक का सफ़र हमारा बहुत ही मज़ेदार रहा होगा, बस यही आशा के साथ आपका साथ हम फिर देंगे 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में। तब तक के लिए बस हमारा साथ देते रहिएगा।

0: 19 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मंगलवार 28 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचारों को लेकर गीता जी आ चुकी है। गीता जी, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार सुमी, सभी को हमारा नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की गई। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अंडर वार्निंग पूछताछ की। ये पूछताछ साल 2023-2024 के लिए मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को लगभग 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम आपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की जांच के सिलसिले में की गई। आज तड़के करीब 2 बजे बाहर निकलने के बाद MSM के नेता प्रवीण जगनाथ ने कहा कि वे पूरी तरह शांत और आश्वस्त हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पूछताछ के विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की और केवल इतना कहा कि जांच अभी जारी है। पूछताछ समाप्त होने के बाद वकील राव गुलबुल ने कहा कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके मुवक्किल के साथ किस तरह पूछताछ की गई। उन्होंने जांच की पूरी प्रक्रिया की भी सराहना की। 60 घंटे तक चली पूछताछ कल पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोबिंद ने रिजवी स्थित फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के दफ्तर में करीब 7 घंटे बिताए। अंडर वार्निंग पूछताछ के तहत मौजूदा MSM के महासचिव से स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा साल 2023-2024 के लिए सिंगापुर की कंपनी मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का ठेका दिए जाने के मामले में पूछताछ की गई। इस ठेके की कीमत लगभग 30 बिलियन रुपये की आंकी गई है। रात करीब 8 बजे रिजवी त्रियांगले से बाहर निकलने के बाद मनीष गोबिंद ने कहा कि उन्होंने जांच अधिकारियों को अटॉर्नी जनरल के कार्यालय और STC के बीच हुए कानूनी मत और पत्राचार के बारे में पूरी जानकारी दी। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। और दूसरी ओर मनीष गोबिंद ने कहा कि उन्हें अब तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर उन पर किस बात का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को ये ठेका दिए जाने की प्रक्रिया में उनकी किसी भी समय कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने ये भी दोहराया कि उन्हें स्टेट लॉ ऑफिस के अधिकारियों पर पूरा भरोसा है। आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 को लागू करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण शुरू हो रहा है। 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जाएगा, इनमें फाइनेंस बिल शामिल।

0: शामिल हैं। आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा की जाएगी। ये एक व्यापक विधेयक है जिसका उद्देश्य बजट 2026-2027 में घोषित कई कदमों को लागू करना है। साथ ही आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम 23 सवालों के जवाब देंगे। और विदेश में उत्तरी इराक में कई जगहों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। ये हमले ईरान के तरफ से हुए हैं। एयरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाके हुए हैं। इसके साथ है संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: मंगलवार 28 जुलाई हमारे सभी श्रोता और दर्शकों का स्वागत हम करते हैं आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। हमेशा की तरह आज भी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें आज की चर्चा ये जो प्रोग्राम है इस समय आप इसे लाइव सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण जो है हो रहा है MBC के चैनल 3 पर और साथ ही इसे आप इस समय देख पा रहे हैं MBC प्ले ऐप पर। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आपको ये भी याद दिला दें कि इसी प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्ट जो है इसे आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही सुपहर के 4 बजे MBC चैनल 3 पर। तो आइए आज की चर्चा इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन से काफ़ी मिलता जुलता है, काफ़ी अहमियत रखता है। हर वर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। और दोस्ती के बिना एक व्यक्ति अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। हम छोटे होते हैं तभी भी हमारे दोस्त होते हैं और जीवन की राह में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं दोस्ती का ये जो महत्व है हमारे जीवन में और भी गहरा हो जाता है। जीवन के हर पड़ाव पर हमें कोई ना कोई नया दोस्त ज़रूर मिलता है जो आता है हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए, बहुत कुछ देने के लिए। और साथ ही जैसे जैसे नए दोस्त हमारे जीवन में जुड़ते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे पुराने दोस्तों को भूल जाए। तो चलिए आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच साइकोलॉजिस्ट साईवानी शंकर शंभू जी जुड़ी हुई है जो आज के इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर जो है रोशनी डालेगी। नमस्कार साईवानी जी।
2: नमस्कार सुमी जी, आपका बहुत धन्यवाद।
1: और चलिए हमारे साथ कुछ दोस्त भी जुड़ने वाले थे लेकिन किसी कारणवश अन्य मेहमान नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपको भी हम कहेंगे कि जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से। 4028085 होगा नंबर हमारा, आप अपने दोस्ती के बारे में बात कर सकते हैं, अपने खास दोस्तों के बारे में बात कर सकते हैं। तो साईवानी जी, सबसे पहले जब हम दोस्ती की बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल रूप से दोस्त का महत्व क्या होता है, इस शब्द का महत्व क्या होता
2: बिल्कुल
1: है?
2: बिल्कुल, फ्रेंड्स, मित्र, दोस्त, ये एक व्यक्ति हो सकता है, ये एक वस्तु भी हो सकती है और ये परमात्मा भी हो सकता है। तो आज के इस टॉपिक पर जब हम बात करने वाले हैं ये सभी के जीवन से जुड़ा रहता है, दोस्ती, फ्रेंडशिप। क्योंकि आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हमारे पास सोशल मीडिया पर हज़ारों या लाखों दोस्त है, कॉन्टैक्ट है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अंदर से अकेलापन

0: महसूस करते हैं उसके बावजूद. सो वर्चुअली हमारे मित्र है लेकिन फिजिकली नहीं है. तो इस बात को समझने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम शुरुआत करेंगे कि दो शब्द का इस्तेमाल हम रोज़ करते हैं लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये एक प्रश्न जैसा है. साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से सच्ची दोस्ती इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं या कितने व्यक्ति आपके पोस्ट को कमेंट करे, लाइक करे, क्योंकि आज का ज़माना तो यही है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, बात नहीं करते, ट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, बात शायद बहुत कम होता है. लेकिन असली दोस्ती का मतलब एक इमोशनल सेफ्टी और ऑथेंटिसिटी जो बहुत सच्चा हो, गहरा हो और संबंध डिस्क्राइब नहीं कर सकते.
1: जी, हम तो मानते हैं कि दोस्त वो होता है, आजकल जहाँ पर आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात की, जहाँ पर आप कुछ कहते हैं तो लोग उस पर कमेंट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं. लेकिन असली दोस्त तो वो है जहाँ पर आपको कुछ कहना ना पड़े और सामने वाला आपके मन की बात, आपके दिल की बात बिना कहे ही समझ जाए.
0: बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल. अभी ये दोस्त एक वस्तु ने जगह लिया, ये अपना फोन. कोई व्यक्ति भी बिना फोन के घर से निकलेगा ही नहीं. हमारा फोन कहाँ है? इट इंक्लूड्स मी एज वेल, आप भी जी, क्योंकि ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है जो हमको बहुत सहायता देता है, फैसिलिटी. फिर भी इससे जुड़ने से, इससे इसका लगाव, ये एक फाइन लाइन हमें रखना चाहिए. क्योंकि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे जो मनाने वाले हैं परसों 30 तारीख को, इट एंग्लोब्स एवरीथिंग. प्रकृति, हमारी जो वाहन व्हीकल, हमारे लोग, परिवार के सदस्य, मित्र, कलीग्स, बच्चे, सारे. तो ऐसा ऐसी सच्ची दोस्ती आपको एक ऐसा सेफ हब, ये एक टेक्निकल टर्म है, मतलब सुरक्षित जगह वो देती है जहाँ आप अपने आप का मुखौटा उतार कर बिना किसी डर के, बिना कोई जजमेंट, बिना कोई भय के, जैसा है आप वैसा रह सकते हैं. यू आर ओपन टू योर सेल्फ एंड टू द पर्सन.
1: क्योंकि दोस्ती अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जहाँ पर दो दोस्तों के बीच कोई पर्दा नहीं होता है, कोई बात छुपी हुई नहीं होती है, कोई एहसास जो है छुपा हुआ नहीं होता है. पहले तो ये कहा जाता था कि एक बच्चे के जो है पहले दोस्त उसके माता पिता होते हैं, है ना. समय के साथ हम माता पिता को एक सम्मान की नज़र से देखते हैं, मन में थोड़ा सा डर भी होता है, दो बातें कहने के पहले 10 बार सोचते हैं बोले या ना बोले. और वक्त के साथ हम देखते हैं जैसे लड़कियां बड़ी होती है जो है पिता के और ज़्यादा करीब हो जाती है, लड़के बड़े होते हैं तो माँ के ज़्यादा करीब हो जाते हैं. जब हम टीन्स में पहुँचते हैं तो माता पिता अपने माता पिता के रोल के साथ साथ एक दोस्ती का भी रोल निभाते हैं, ताकि बच्चा जब अब घर से ज़्यादा बाहर जा रहा है तो हमें पता चले कि उसकी एक्टिविटीज़ किस तरह की है, कैसे लोगों के साथ वो उठ बैठ रहा है. तो ये जो स्विच है, अभी हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप आ गया है. जैसे आपने कहा है कि वस्तु ने हमारी जो है बहुत सारे रिश्तों की जगह ले ली है. तो पहले के समय में और अभी के समय की हम बात करें तो ये दोस्ती माता पिता के और बच्चों के बीच किस तरह से बदली है?
0: हाँ, वैसे तो जब एक मित्र, एक दोस्त, ये पेरेंट उसका ये भूमिका निभाता है, तब एक प्रतिबिंब जैसा होना चाहिए, अ मिरर. अ मिरर किस तरह कि आपकी सफलता का ये जश्न तो मनाता है लेकिन जब भटकने वाले व्यक्ति उनको वापस ले आए, ये सच्चा दोस्त है. और उसका ये भूमिका पेरेंट्स, माता पिता के अलावा और कोई ठीक तरह से नहीं निभा पाएगा. दे आर द बेस्ट पर्सन, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सब अच्छी चीज़ें ही मांगेंगे, सोचते हैं. तो इसलिए ये प्यार, अपने आप को सही रास्ते पर दिखाना, ये प्यार ही है. चाहे वो डांटे भी, चाहे वो गुस्सा करे, क्रोध करे, लेकिन ये एक प्यार है कि आप कहीं आगे ना चलकर खुद को चोट ना पहुंचे.
1: बिल्कुल, मतलब कि आप किसी गलत राह में ना चले जाए, बहक ना जाए, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे जो है इतनी सारी चीज़ों से रूबरू होते हैं.

0: है, जिसे हमारा जो बचपन था वो काफी अलग था, है ना। और अभी के बच्चे और यंगस्टर्स की बात करें, जो जीवन शैली वो जी रहे, काफी फर्क है उसमें। वो इतनी सारी चीजों से जो है फेस टू फेस हो रहे, इतनी सारी चीजों के बारे में जान रहे और जल्दी बहक भी जा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ ऐसा हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है अपने माता पिता और अपने रिश्तों के ऊपर कम भरोसा करते हैं, और जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसे या जो बाहर दिख रहा है उस पर वो ज्यादा विश्वास कर रहा है।
1: हाँ जी, है ना? बिल्कुल, ये इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट जिस तरह से उस गति से चल रहा है कि न जाने किस क्षण बच्चे उसके शिकार पड़ जाते हैं। और ये नहीं कह सकते कि बैड इन्फ्लुएंस हमेशा से है, अच्छा भी इन्फ्लुएंस है, दोनों है, लेकिन चुनने में यदि बच्चे हैं ज्यादातर उस अलग राह पर जाते हैं,
0: क्योंकि बुराई एक ऐसी चीज है जो इतनी अच्छी दिखती है कि बच्चे जाने अनजाने में उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। चलिए अब आते हैं, हम हमेशा जैसे कि हम दोस्ती की बात करते हैं तो बचपन के दोस्त हमेशा हमें याद रह जाते हैं, है ना। बहुत से लोग अभी भी कहते होंगे कि बचपन के वो दिन क्या दिन थे, जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे, लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो सोचते हैं कि वो समय ज्यादा अच्छा था। और आज भी जब हम हमारे जो है जितने भी लोग हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जब हम उनसे बातें करते तो अपने बचपन की सहेलियों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे श्रोता है, दर्शक है जो साथ देते हैं कि हमारी बचपन में सहेली थी लेकिन अब शादी हो गई तो हम दूर हो गए हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। कुछ ये भी है, ये भी कहते हैं कि इंटरनेट के जरिए अब हम उनसे कनेक्ट भी हो पा रहे हैं।
1: कितने वर्षों बाद,
0: तो मोबाइल जो है, टेक्नोलॉजी जो है, उसने नुकसान तो नहीं किया है पूरी तरह से, उसकी जो है अच्छा बुरा दोनों है। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि बचपन की इस दोस्ती पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें।
1: बिल्कुल, तो बचपन में एक इनोसेंस है, एक ऐसा नाइवता जिसे बोलते हैं, कि बहुत ही प्योर शुद्ध मित्रता, वेरी ओपन, मतलब हमसे कट्टी भी है और क्षण बाद हम वापस दोस्त बन गए,
0: मतलब कि निस्वार्थ,
1: यस निस्वार्थ, सेल्फलेस, बिल्कुल। और ऐसा वेरी क्यूट फ्रेंडशिप आगे जाके बहुत कम मिलने को दिखता है, क्योंकि आगे आगे जब हम बड़े हो जाते हैं इन्फ्लुएंस, हमारा ईगो भी बीच में आता है, लेकिन पहले जब बचपन में ये ईगो तो है ही नहीं,
0: हमें पता ही नहीं था ये क्या है। ईगो की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, हमें पता ही नहीं था। आजकल बच्चे पता नहीं वो कौन से डिवाइस से खेलते हैं ये स्ट्रेस बूस्ट जैसे कि कम करता है।
1: बिल्कुल, तो पहले के जमाने में ये मित्रता बचपन वाला है, अभी इन द 21st century ये बचपन का की मित्रता इज ऑल्सो ऑन अ डिवाइस। छोटे छोटे बच्चे, इट्स गुड, वो अपना ये सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये फिजिकल कॉन्टैक्ट, लुका छुपी खेलना, दौड़ना, पकड़ना, ये सब ये छूट गया, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि खेल अभी, अरे हम कनेक्ट करेंगे PS4, PS5 कुछ ऐसा है तो उस पर खेलते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि पेरेंट्स उस पर ध्यान दें कि बच्चों एक गेम खेलते हैं, सारे बच्चे नो डिवाइस, आप बाहर जाकर खेलें, सोचिए क्या खेल सकते हैं, तो बच्चे भी अपनी मित्रता को और मजबूत करते हुए वापस उस प्यूरिटी, उस शुद्धता पर जा सकते हैं।
0: बिल्कुल, पहले तो मुझे याद है कि जब हम बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे तो डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी कि कब घर लौटोगे।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अब बिल्कुल उल्टा हो गया कि माता पिता, हाँ, कि बच्चे जो है कमरे से ही नहीं निकलते हैं। बिल्कुल, अफसोस की बात है, सोसाइटी जो है एक अलग ही रुख पर जा रही है। हाँ, कुछ पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में डालते हैं, जैसे कि किसी क्लब में ज्वाइन कर लिया, बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग हो गया, लेकिन वो तो आप एक्टिविटी
1: करते हैं,
0: खेलना और एक्टिविटी करना अलग चीजें
1: हैं,
0: वहां पर भी आप मिल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जब आप खेल रहे हैं, जमीन से जुड़ रहे हैं, चीजों को महसूस कर रहे हैं, उसके जरिए जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता है वो एक अलग होता है।
1: बिल्कुल, एक बार और जोड़ना चाहेंगे कि अभी ये मित्रता एक डिफ्रेंसिएशन भी आ गया, कि ये हमारे स्विमिंग क्लास, जैसे आपने कहा स्विमिंग क्लास का मित्र है, मतलब जब हम बाहर जाएंगे स्विमिंग क्लास में ये हम मित्र है, बाहर में हम मित्र नहीं है, यू नो, मतलब छोटे बच्चे दे ऑलरेडी सेपरेट, माइंडसेट ऐसा हो गया, या मतलब अलग माइंडसेट, अलग पता नहीं सोच कि ये हमारा मित्र नहीं हो सकता, यू नो, ये भी आ सकता है, क्योंकि हमने इस तरह के बच्चे से

0: काम किया उसके साथ, मतलब आई आस्ट, और कहीं कहीं कहीं ना कहीं उन्होंने कहा हाँ, कई मित्र हमारे बहुत घनिष्ठ मित्रता है, लेकिन कई लोग हम क्लासमेट्स हैं, क्लासमेट्स, और वो बस 5 साल का एक बच्चा है. सो यू नो दे आर डेवलपिंग वेरी फास्ट, लेकिन बहुत कम उम्र से ही उनका ये डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, जो शायद उतना ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान तो इंसान है, चाहे वो किस परिवार से आया है, किस पता नहीं किस कठिनाई से गुजर रहा है, तो उसका मित्रता शायद उसको और शांति खुशियाँ दे, है ना.
1: और पहले के दोस्ती की बात करें, बचपन के दोस्त की बात करें, तो वो ऐसे दोस्त होते थे जो स्कूल भी साथ जाते थे, जो ट्यूशन भी साथ जाते थे, जो खेलते भी साथ में थे, और अगर किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का हिस्सा बन रहे तो वो भी साथ में, साथ क्योंकि माता पिता कहते थे वो जा रहे थे तुम्हें भी जाना,
0: तुम्हें
1: है,
0: भी जाना है, ना? है. यस, घर भी आते थे, सोते भी थे साथ में. तो ये एक अलग, मतलब फ्रेंडशिप हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स.
1: चलिए 4028085 है नंबर हमारा, आप सब भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं. अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती दिवस पर हम बात कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता हैं जो रेडियो के माध्यम से जुड़ते हैं, खासकर जो कहते हैं कि उन्हें जो है काफ़ी दोस्त ऐसे मिले हैं जो रेडियो को सुनते सुनते जो है एक दूसरे को उन्होंने जाना है. तो ऐसे लोग अगर इस समय हमारे साथ जुड़े हैं तो हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम से आप जुड़े और अपने अनुभवों को हमारे साथ ज़रूर बांटें. अभी के लिए गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं.
2: Hey!

0: आज की चर्चा।
1: चलिए आज की चर्चा ये प्रोग्राम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती दिवस पर बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो अभी साईवानी जी और हम बात कर रहे थे कि शायद दोस्त सिर्फ वही नहीं होते हैं जिनको हम बचपन से जानते हैं, जिनके पास हम सालों से खरीदारी कर रहे हैं, शायद बाजार में कुछ बेचने वाला कोई व्यक्ति हो गया ना, या तो फिर जो हमारा कोई ड्राइवर हो गया, या जिसके साथ हम आते जाते हैं, या अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो बहुत से जो ड्राइवर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, काफी सालों से हम उनको देख रहे तो देखकर मुस्कुराते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। अगर हम अस्पताल में जा रहे हैं, बीमार पड़ गए, तो कुछ कॉमन फेसेस जो हमें हर बार नजर आते हैं, तो उनसे भी एक रिश्ता जुड़ ही जाता है ना।
2: बिल्कुल,
1: यानी कि दोस्ती जो है सिर्फ उन तक सीमित नहीं है जिनको हम बचपन ही से जान रहे हैं, या फिर जिनको हम दोस्त के रूप में देखते हैं, है ना।
2: वेरी ट्रू। हाँ जी बिल्कुल। हमारा हेयर स्टाइलिस्ट, हमारा पेट, वो भी दोस्त है।
1: अभी के समय में तो आपने एक सही बहुत ही ये बात उठाई कि अभी के समय में देखा जाए तो हमारे पालतू जानवर हमारे दोस्त बनते जा रहे हैं
2: बहुत ज्यादा।
1: खासकर विदेशों में हम देखते हैं जो बड़े बुजुर्ग अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे कामकाज के चलते, अपने करियर के चलते उनसे दूर हो गए, तो वैसे व्यक्ति के साथ उनके पेट है जो उनके साथ रहते हैं, है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरह की मित्रता हमारे ओवरऑल वेलबींग पर अच्छा असर डालता है
1: जी। अभी के समय में जहाँ पर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहने की बात करते हैं, मुझे याद है कि जब भी हम किसी गहरी समस्या में होते हैं, कोई परेशानी में होते हैं, जिसे हम अपने माता पिता के साथ या अपने परिवार के सदस्य के साथ इन बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे वक्त पहला व्यक्ति जो हमारे मन में आता है वो होता है हमारा कोई खास दोस्त। तो आपसे हम जानना चाहेंगे साईवानी जी कि दोस्ती सिर्फ हमें खुशी का एहसास नहीं दिलाती है, कहते हैं कि ये हमारे जो है हमारे अपने आप को स्वस्थ, मतलब कि हेल्दी रखने के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होती है।
2: वेरी ट्रू। हाँ बिल्कुल। नॉट ओनली मतलब हैप्पीनेस, खुशियाँ, बल्कि हमारा डाइट भी और हमारा एक्सरसाइज उससे भी ज्यादा।
1: वो कैसे?
2: लंबे समय तक यदि अकेलापन महसूस करने से कोर्टिसोल, जो एक हमारा

0: स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारा नर्वस सिस्टम पर ये एक दबाव डालता है और हमारा इम्यून सिस्टम को दुर्बल करता है। इसके उलट मतलब अगर आपके पास एक या दो भी ऐसे दोस्त हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन के विपरीत एक शील्ड की तरह काम करता है। तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ता नहीं, कोर्टिसोल का ही। तो जब आप सुनते हैं और समझ जाते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, स्ट्रेस लेवल कम होते हैं और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मेंटल शक्ति ये बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्ती कोई लग्जरी नहीं, मतलब महंगा नहीं है, लेकिन पढ़ सकता है यदि अच्छे दोस्त ना मिले, तो ये हमारी बायोलॉजिकल एक आवश्यकता है, इट्स अ नीड। तो फिर लोगों के लिए एक अच्छा दोस्त निभाने के लिए ये समझना चाहिए कि कैसे हम अपने दोस्त को चुने, क्योंकि यदि गलत दोस्ती हम करेंगे तो अलग दिशा पर पड़ जाते हैं, द नेगेटिव इम्पैक्ट, जहाँ पर दोस्त कहेंगे ये ट्राई करो अच्छा है, तो आप अपनी बुद्धि का इग्नोर करते हुए उस राह पर जाएंगे तो अलग परिणाम में आपको सहना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सही दोस्त जीवन में मिलना अपने आप में एक ब्लेसिंग भी होता है। चलिए अभी के लिए कुछ श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं आप 4028085 पर हमारा साथ दे सकते हैं और दोस्ती को लेकर अपने अनुभव हमारे साथ बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्कार। चलिए 4028085 है नंबर हमारा। दोस्तों की अगर हम बात करें तो समय के साथ, चलिए एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, उनसे मिलते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते सुमित जी, मैं कॉलेज से आशा जाने बोल रही हूँ।
1: नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ और आज के अतिथि को भी सादर नमन है।
0: नमस्कार।
2: और दोस्ती के विषय पर आप जो भी बातें बोल रही हैं, सच में वो बहुत बहुत अच्छे अच्छे विचार आपसे सुनने को मिल रहे हैं।
1: धन्यवाद।
2: और एक दो शब्द मैं भी इस दोस्ती के रिश्ते को बनाते हुए एक दो शब्द मैं भी जोड़ना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल जी
2: जी। तो मैं ये कहूँगी सुमित जी कि सागर के गहराई से गहरी होती है दोस्ती, पर्वत के ऊंचाई से ऊंची है दोस्ती। कल हम नहीं रहेंगे पर संसार में एक पहचान बनकर रह जाती है ये हमारी दोस्ती। ये जो दोस्ती होती है वो उसका जो संबंध है वो दिल से जुड़ा होता है, भावनाओं से जुड़ी होती है। और एक सच्चा दोस्त मिलना इस संसार में, यानी कि जो आपके गम आपके सुख दुख में जो आपका साथ दे, क्योंकि आज के दौर में कहते तो है हम दोस्त हैं, सभी दोस्ती दोस्त बनाते हैं, पर जो सच्चे दोस्ती की पहचान तब होती है जब कोई दोस्त आपके कंधे पर अपना हाथ तब रखता है जब कोई आपको संभालने वाला कोई ना हो। अगर ऐसा दोस्त इस संसार में मिल जाए ना तो आप बहुत लकी होती है। और दोस्ती की जो रिश्ता है उसे सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, उसे निभाने के लिए उसमें वफादारी सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप दोस्त कह रहे हैं किसी को और उसी के सीक्रेट किसी और से शेयर कर रहे हैं तो ये तो बेमानी होगी। तो दोस्ती में अगर आप अपने दोस्ती को सच्चा पक्का मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसकी जो जोर होती है वो है विश्वास। इस विश्वास को बनाते हुए इस दोस्ती को हम रखेंगे तो हमारा जीवन भी सुधर सकता है। और आखिरी बात ये कहूँगी सुमित जी, एक बच्चे के लिए उस बच्चों के लिए तो उनके हजारों दोस्त होते हैं पर उनके जो सच्चा दोस्त उनका उनके लिए होता है वो उनके माता होती है। माता से बढ़कर कोई सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता, जिससे वो अपने सारे सीक्रेट जो अपने मन में दर्द रखने की वजह अपने माता पिता से शेयर करेंगे तो उनके लिए भी बहुत उनके जीवन उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो यही कहूँगी सुमित जी, दोस्ती का रिश्ता एक सच्चा रिश्ता है, बस इसे निभाने की अच्छी तरह से परखने की जरूरत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी आपके इन विचारों के लिए। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ है, उनसे मिलते हैं। हेलो
3: सुमित जी और सहवानी जी, मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
1: नमस्कार
3: जी, मैं प्रभा हूँ बेलरोज से।

0: धन्यवाद प्रभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए आज के इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे।
1: काम से आई है तो मैं रेडियो को ऑन किया और बात कर रही हूँ। ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले, ये जो हमारे रेडियो है ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है।
2: क्या बात है।
1: ये मे बी 60 या मोर इयर्स के मेरे साथ है, मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। और ये रेडियो ने हम मुझसे बहुत दोस्त मिलाया। जब मैं बात करती हूँ रेडियो पर तो दोस्तों सुनते हैं, जो कॉलेज के ज़माने में मैं मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं मैं भी मैं भूल गई, वो बोलते हैं इस कॉलेज में थे आपके साथ, ओ माय गॉड। तो ये, और एक बार मैं समंदर में थी, नहा रही थी, एक महिला ने मुझे अप्रोच किया, बोला आप मुझे जानते हैं, मैंने देखा, फिर बोला मैं भी यस, तो बोले हम कॉलेज में थी 14 इयर्स 15 इयर्स में इस कॉलेज में थी। ओ माय गॉड, ये रेडियो ना मैं कभी भी उसके साथ नहीं छोड़ूंगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी आपके इन विचारों के लिए। और चलिए सही कहा, हमारी भी जैसे जब इस कार्यक्रम को करने के बारे में हमने सोचा कि इस विषय को लेकर आएंगे, तो सबसे पहले मेरे जहन में यही आया कि हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े फ़ोन के ज़रिए, खासकर जिन्होंने रेडियो के ज़रिए जो है दोस्तों को बनाया है, मतलब कि जिसको आप जानते नहीं हैं, बस सुनकर एक दूसरे को जाना है और आज गहरे दोस्त है। एक और श्रोता है, चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो, नमस्कार।
3: नमस्ते
0: जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। कौन है जी?
3: लीलो खोबास है।
0: कैसी है लीलो जी?
3: मैं तो ठीक हूँ, अभी तो मैं खेत में हूँ।
0: अच्छा, और बताइए क्या कहना चाहेंगे?
3: अभी हम सुन के हम बोली सोने करीला।
0: हाँ
3: सोने करीला। हम कहो हमारे दोस्त लोग लौकेला तो हम लोग जला ज्वाइन करी, लाफो जाइला
0: जी,
3: तो हम जला लोग ज्वाइन करी, वो लोग देखियन सा नहीं देखियन सा, हम नाम जला ज्वाइन करी। आज जो जन जन दोस्त के भुला गल है वो लोग आवेदन से हमके ज्वाइन करी। हमारे सोसान दूजो हो गल बा, शादी तो हो गल बात बहुत दिन, तो हम हमारे जो सहेली लोग छोटा के खूब खेला थली
0: सी,
3: तो टीवी नहीं रहा, पोर्टाब नहीं रहा, खेलब सब कुक्का सेत लमारेल बालस, हमारे बहन आवेला तो बोली ला तब खेलब स। अब हम ये हम भुला गए कोनो दोस्ती के भुला गए कोनो कोनो के याद के ला, तो हम जाके उनके ज्वाइन करी ला।
0: अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लीलो जी आपके इन विचारों के लिए। और अन्य श्रोता जो है, जितने लोग हैं इस समय हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बेशक 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे सभी अभी जितने भी लोगों ने हमें कॉल किया, इनको इनसे बात करते हुए एक बात हमारे जहन में आ रही है, खासकर महिलाओं की बात करें, महिलाएँ जो है बचपन में तो दोस्त होते ही है, बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, दोस्तों से दूर हो जाते हैं, परिवार में उलझ जाते हैं, फिर एक समय आता है कि उनके जीवन में ऐसा मोड़, ऐसा पड़ाव आता है, उन्हें लगता है कि अब मुझे अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब हम ये 40 की उम्र तक आ जाते हैं, पार कर जाते हैं, तो एक स्ट्रेस लेवल होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बहुत सारे जो है बदलाव हमारे शारीरिक तौर पर होते हैं। तो ऐसे में कहते हैं दोस्त का होना हमें इन सब चीज़ों से, स्ट्रेस से दूर रखता है। इस पर आप क्या कहेंगी?
2: वेरी ट्रू। अभी अभी हमने कहा ना कि जो कोर्टिसोल का ये हार्मोन है जो हमको स्ट्रेस का ये लेवल्स बढ़ जाता है, लेकिन जब एक मित्र आपको सुन रहा है, मतलब सुनने के लिए बोलने उसके बाद, नॉट लिसन देन टू रिप्लाई, नो, बस सुने आपको
0: बिना
2: जज के साथ, हाँ बिना जजमेंट के, या तो कुछ बोले ही नहीं, आपके साथ हो, ये एक अच्छे मित्र
0: जी, मतलब कि ये एक अनुभूति होना कि कोई है जिससे हम सब कुछ कह सकते हैं, जो हमें बिना सवाल किया हमारी बातों को सुनेगा। हाँ। और उस पर सबसे बड़ी बात कि वो हमें जज नहीं करेगा,
2: नहीं करेगा।
0: और व्यक्तिगत जीवन में मैं कहूँ तो दोस्त हमारे जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फिर चाहे वो महिला मित्र हो या पुरुष मित्र क्यों ना हो, दोनों ही का अपना अपना जो है एक अलग अनुभव रहा है। और दोस्तों के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। हम भी जैसे एक सर्कल से आते हैं जहाँ पर हमारा आए दिन एक दूसरे से मिलना हमें वो जो हैप्पी हॉर्मोन्स को और बढ़ाता है, है ना?
2: यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
0: क्योंकि जब हम दोस्तों से मिलने जाते हैं तो अच्छे से तैयार होकर जाएंगे ना, अपने आप को सजा कर जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर

0: कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, हमारे अंदर कोई डर है, कोई रुकावट है, उस रुकावट को हम पार करते हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ में अपने आप को एक अलग लेवल पर हम ले जा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आज की दुनिया में ये आपने सही कहा कि हम मित्र से बहुत अच्छी तरह होकर जाकर मिले, क्योंकि ऐसी मित्रता है जहाँ हम गिव एंड टेक नहीं करते, सौदा एक डील नहीं है, बस जाए एक रिश्ता बन गया। पहली बात कि दोनों की तरफ से बराबर कोशिश होनी चाहिए कि हम एक दूसरे का ये साथ दें। जब ये रिश्ता एक तरफा हो जाता है, जहाँ एक इंसान सिर्फ अपना इमोशनल उसका भार दूसरे पर डालता है और दूसरा बस उसका सहता रहता है, तो ये मनुष्य अंदर से थक जाएगा, फिर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उस पर थोपता है, जस्ट इट्स लाइक थ्रस्टिंग अपॉन। फिर दूसरी बात, बहुत से लोग डिसएग्रीमेंट या लड़ाई करते हैं हमेशा, मतलब एक अच्छा वार्तालाप हो रहा है, फिर आगे जाते जाते ये एक बहस होने लगा और बहस करते करते चलो एक दूसरे अलग हो गए।
0: तो हाँ,
1: तो साइकोलॉजी में हम इस ट्रस्ट को गहरा करने के लिए ये एक अवसर है कि दोनों पक्षों को, अच्छा आपका दोनों के पक्ष हम माने, है ना।
0: चलिए एक और श्रोता है, उनसे मिलते हैं। हेलो नमस्कार।
2: हेलो जी नमस्कार,
0: आपका स्वागत है जी। कौन है
2: आप? सुनीता, आपको भी और हमारी जो
0: साईवानी जी
2: मेहमान है उसको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी।
2: मैं इस दोस्त के संबंध में मैं बहुत बार जैसे कि ऐसे बोलते हैं निबंध लिखा है।
0: अच्छा
2: हाँ, तो उसके बारे में मुझे याद आया बहुत
0: जी। दो लाइन आप सुना सकती हैं?
2: हाँ
0: जी।
2: तो बुजुर्गों ने कहा था पहले, पानी पिए जान के, पानी पियो जान के, दोस्ती करो पहचान के या जान के।
1: क्या बात।
2: और फिर दूसरी बात है ये प्रोवर्ब के रूप में कि ए फ्रेंड इन डीड इज ए फ्रेंड इन नीड।
0: A friend in need is a friend indeed.
2: हाँ, तो दोस्त तो बचपन से जब हम स्कूल जाते हैं, नौकरी पे है या कहीं भी, तो दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन दोस्त वही होता है जो आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे। और अंत में मैं ये कहूँगी कि केवल अलग से दोस्त बनाने काम पे स्कूल में वो सही दोस्त हो सकते हैं जो आपने जो आपका साथ दिया हर सुख दुख में, लेकिन जो कभी कभी ऐसे होते हैं दो दोस्त आपस में लड़का लड़की जब मिलते हैं, जब पक्का दोस्त बन जाता है, तो देखते हैं कि वही दोस्त जो कि लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि केवल हम दोस्त ही में अलग अलग रह सकते हैं। जब कोई दोस्त बन करके वो वर वधु के रूप में अपना पार्टनर बना लेते हैं, तो उन लोगों का जीवन एकदम सुखमय बन जाता है।
1: बिल्कुल।
2: हाँ, किसी के पास चाहे धन हो, अच्छी नौकरी हो, लेकिन जब जहाँ एक अच्छा दोस्त नहीं, दोस्ती नहीं, तो वो कुछ भी नहीं।
0: जी, यानी कि हर रिश्ते में दोस्ती आवश्यक होती है।
2: हाँ
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, आपने अपना नाम नहीं बताया।
2: मैं लाल माटी से मनीषा बोल रही हूँ।
0: चलिए मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन सुंदर विचारों के लिए, शुभ दिन कहेंगे आपको। बिल्कुल सही कहा कि हर एक रिश्ते में जो है दोस्ती का होना बहुत आवश्यक है। इन्होंने कलीग्स की बात की। आज का मेरा प्रोग्राम इतना ये है कि शायद बहुत सारे जो है पॉइंट्स को हम मिस कर जा रहे हैं। एक समय जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, नौकरी के जो है इसमें आ जाते हैं, करियर के लाइफ में आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत से हमारे ऐसे कलीग्स के रूप में हमें अच्छे दोस्त मिलते हैं जो आगे चलकर हमारे जिंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे साईवानी जी एक ऐसे पहलू पर कि जहाँ पर हम मानवीय रिश्तों में दोस्ती ढूंढते, वहीं पर दो देशों में दोस्ती होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे मॉरिशस और भारत की बात करें, मॉरिशस और अन्य देशों की बात करें ना, जिनसे एक दूसरे पे एक आपसी संबंध है, प्रेम और सम्मान और मित्रता की भावना है, वहीं पर दो देशों को एक साथ आगे बढ़ने में, तरक्की करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। तो दो देशों के बीच दोस्ती कितनी आवश्यक है, क्योंकि अभी के समय में हम देखते हैं कि जहाँ पर हम एक देश में रह रहे हैं, जहाँ पर हर कोई शांति से रह रहा है, वहीं पर देश के विश्व के अन्य कोनों में देख रहे हैं कि दो देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं।
1: यस, और इतना खून खराबा हो रहा है कि ऐसा नहीं जान पा रहा है कि मनुष्यता, इंसानियत
0: खोते जा रही
1: है भी क्या, खत्म हो गया है ना। तो दो देशों में ये हमारे पूर्व जमाने में, मतलब हमारे ग्रंथों पुराणों में ये बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया कि दो देशों में उनके कल्चर्स, उनके डाइवर्स कम्युनिटीज से एक ब्रिजिंग करें।

0: क्योंकि हर देश का एक अलग अपना कल्चर है, अपने ट्रेडिशंस है. जब हम शेयरिंग करते हैं, उनसे सहायता लेते हैं, उनको सहायता देते हैं, एक इट्स अ म्यूचुअल MOU जैसे, और उससे ज़्यादा जाता है कि वो देश का मुख्य व्यक्ति, इट कैन बी द प्राइम मिनिस्टर और
1: प्रधान जो होता,
0: प्रधान जो होता है, वो हमारे मेहमान बनके, हमारी अतिथि बनके और मित्र बन जाते हैं, और इट्स म्यूचुअल जब हम जाते हैं. और ऐसा घनिष्ठता, इट इन्वॉल्व्स सारी दुनिया एक प्रतीक मानता है, इट्स एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड कि हम भी सीमाएं पार करके, ना सिर्फ समुद्र
1: जी,
0: सात समुंदर पार करते, ना नॉट ओनली दैट बट गोइंग बियॉन्ड डिफरेंसेस. इट कैन बी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, अफ्रीकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, सारे जो कॉन्टिनेंट्स है, सभी से एक ऐसा मित्रता रखे, तब जाके विश्व में ये शांति हो पाएगा.
1: और अभी के समय में इस शांति की ज्यादा आवश्यकता है.
0: यस, और इट्स अ वे, मतलब ये एक जरिया है ताकि हम उन तक पहुंचे. और जो देश, कई कारण हो सकते हैं कि वो शिकार बन जाते हैं, दे आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, तो वो देख सकते हैं कि हाँ, हम भी मित्रता को बढ़ा सकते हैं. क्यों लड़ाई कर रहे हैं, चाहे कुछ भी वजह हो, लेकिन अपने डिफरेंस, ईगो को अलग रखते हुए, अहम को मिटाए, तब जाके प्यार से हम एक प्यार का दिया जलाए.
1: अभी आपने ग्रंथों की बात की, पुराणों की बात की, इस पर मुझे एक लाइन याद आ गई कि कहते हैं त्वमेव माता पिता तुम्ही हो, त्वमेव बंधु सखा तुम्ही हो. इस पर क्या बात है, आने वाले दिनों में हम गुरु पूर्णिमा कल ना
0: कल
1: मनाने वाले हैं. गुरु जो है हमारे जीवन में जो है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है ना, हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर करता है, अच्छे बुराई के बीच में हमें फर्क करना सिखाता है, और वही गुरु एक सखा के रूप में भी हमारा मार्गदर्शन करता है.
0: बिल्कुल,
1: चाहेंगे इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें.
0: अब आप देखिए, गुरु पूर्णिमा इस वर्ष 29 और फ्रेंडशिप डे 30, मतलब गुरु पहले देन मित्र, ये फाइन लाइन रखना चाहिए. मतलब माता है, मित्र भी है, लेकिन आदर सम्मान माता पहले है, पिता पहले, गुरु पहले है, ये आदर रखना चाहिए, फिर जाके हम अपने मित्र के भी आदर सम्मान कर पाएंगे. यदि आदर नहीं करेंगे स्वयं का, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो अपने मित्र से कैसे अच्छे संबंध रख पाएंगे, है ना. फिर जाके एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, जो सिर्फ मतलब इट गोज बियॉन्ड फिजिकल मटेरियलिस्टिक बातें, कन्वर्सेशन, हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि मित्र द्रौपदी और कृष्ण का भी होता है,
1: सखा के रूप में तो
0: उससे और बेहतर नहीं होगा, और मित्र अर्जुन और कृष्ण का भी है, फिर सुदामा कृष्ण का भी है, लेकिन फिर भी मित्र विभीषण और राम से भी है, वरना रावण ने शत्रुता की, है ना. तो ये यदि हम समझ पाएंगे, इट गोज इन अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जहाँ पर एक मित्र हमको, एक गुरु जो मित्र बनके हमें परमात्मा और सही राह पर और निकट ले जाए, ना कि ड्रग्स, अल्कोहल और ऐसे सोशल इल्स पर खींचता जाए.
1: बिल्कुल, और मित्र की परिभाषा कहीं ना कहीं इस एक घंटे के कार्यक्रम में समेटना बहुत ही मुश्किल है. मित्र की बात करें तो वो जीवन का एक ऐसा अंग है, या कहे कि हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, जिसे हम दूर नहीं कर सकते हैं. और हम चाहेंगे कि अभी के समय में जिस तरह से मित्रता जो है बढ़ते जा रही है, आपसी संबंध बढ़ते जा रहे हैं, और जिसका रंग और रूप भी बदलता जा रहा है, तो जितने लोग इस समय आप हम सुन रहे हैं, काफ़ी ना काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेडियो के माध्यम से एक दूसरे से दोस्ती की है, राह चलते हुए किसी से मिल गए, दोस्त हो गए. आज हम सोशल मीडिया को कहते हैं कि इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसी सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनसे हम मिले हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को एक अलग दिशा दी है, हमारे सोचने के तरीके को बदला है. तो ऐसे सभी जो है समय के साथ मित्रता की परिभाषा बदलते जा रही है.
0: बिल्कुल,
1: तो इस पर आपके क्या विचार हैं?
0: जब हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया ने सबको जुड़ा है, जो विदेश में भी है हमारे मित्र, जाकर वहाँ सेटल हो, तो ये एक अच्छी बात है. और

0: एक अलग पहलू भी आता है जब हम मित्रता, मतलब हम एक ऑलरेडी मिस्टर एंड मिसेज है, श्रीमान श्रीमती है, और हम मित्रों के साथ जुड़े हैं, तो मित्र का ये सीमा रखना आवश्यक है, क्योंकि देखता जाता है इस जमाने में मित्रता हम करते हैं लेकिन ज्यादा ही मित्र हो गए कि अपने पार्टनर को छोड़कर वहां जा पहुंचे,
1: मतलब ये कि हमें अपने बाउंड्री सेट करना बहुत आवश्यक है।
0: तो इसी कारण वी आर थैंकफुल, शुक्रगुजार है कि सोशल मीडिया से हम अपने मित्र से जुड़े, जो मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपना मर्यादा रखे। ईच व्यक्ति, ईच इंडिविजुअल का एक सेल्फ एस्टीम है, एक डिग्निटी है, ऐसे मैसेज भेजिए जो दूसरों को खुशियाँ दे, ना कि नुकसान पहुँचाए, या इनडिसेंट ये भी आता है, यू नो, एंड इट्स वेरी बैड, बहुत दुख होता है जब सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, कुछ हुआ, गलत हुआ मित्र के साथ, फेसबुक पर पोस्ट हो गया, फिर ये सारा विश्व देख रहा है, तो ये ध्यान पर रखना बहुत आवश्यक है।
1: और कभी कभार कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि मजाक में दूसरे दोस्त का जो है इंसल्ट करते हैं, उन्हें लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचती है। तो मजाक में एक बार आपने कुछ कह दिया एक अलग बात है, पर जब आप कंटिन्यूअसली उस बात को करते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो जो है मित्रता में दूरियां आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो है सीमाएं पता होनी चाहिए, हमें अपनी मर्यादाएं पता होनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा जो है समय भी समाप्त होने को जा रहा है, तो क्या संदेश है, क्या मैसेज है जो आप देना चाहेंगे सभी को जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप पर,
0: इस मित्रता दिवस पर? सभी को ये ध्यान रखना है कि चाहे कितने भी दोस्त सोशल मीडिया पर हो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी बहुत आवश्यक है। क्वालिटी दोस्त, आप एक मुश्किल में है, एक कठिन समय से गुजरे हैं, आप किसको सोचेंगे? और वो दोस्त जो आपको अच्छा महसूस करे, और ना कि उनसे मिले अरे लाते तीन फेमल मतलब सर दर्द हो गया, या नहीं उससे मिले अरे क्या बात है दिन ही अच्छा बन गया, चाहे वो दिन शाम ही क्यों ना हो लेकिन शाम और भी रंगीन हो गया।
1: कभी कभार ऐसा होता है ना कि किसी एक मित्र का मैसेज आ गया या कोई किसी ने आपसे खबर पूछ ली, तो वो एक खबर पूरे दिन को मैं आपको इतनी खुशी देता है कि शायद बड़ी से बड़ी चीजें उसके सामने कुछ नहीं है,
0: कुछ नहीं है। और आपसे इतनी अच्छी मित्रता हुई मतलब वर्षों से, आपका भी बहुत आभार। और जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके भी मित्र ऑन फ्रेंडशिप डे एक मैसेज भेजे आपको कि आप कितने शुक्रगुजार है कि वो व्यक्ति आपके मित्र है, ये सही रहेगा, द बेस्ट गिफ्ट है ना।
1: जी, ये आपने सही कहा, रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से ही हम जुड़े थे और शायद आज काफी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और एक अच्छी दोस्ती हमारे बीच भी हो गई है। तो चलिए, ईश्वर ऐसे ही हम सभी को ऐसे व्यक्तियों से मिलाते रहे जो जीवन में हमारे अच्छे दोस्त बने, जो हमें कुछ सिखाए। अगर हम जाने अनजाने में किसी गलत राह पर जा रहे हैं या कोई गलत निर्णय लेने जा रहे हैं या किसी दुविधा में हैं, तो वो हमारे साथ खड़े रहे, सही गलत के बीच में चयन करना हमें सिखाए,
0: हमको अलग रखे, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं है। हम भी जान सकते हैं अरे शायद हमने गलती की, पूछिए ना कि अरे हमने कभी नहीं किया, है ना। उस व्यक्ति के नजरिए को समझे और अपने आप को बेहतर बनाए।
1: तो चलिए, दोस्ती पर ये जो कार्यक्रम है इसी के साथ समाप्त होने को चला, लेकिन दोस्ती कभी समाप्त न हो इस बात का ध्यान आप जरूर दीजिएगा। तो साईवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: सुमी जी।
1: जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया उसके लिए भी धन्यवाद, और आपके विचारों के लिए भी धन्यवाद। और बस दोस्ती को अपने जीवन में बनाए रखिए, और आने वाले जो है विश्व दोस्ती दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पूरी टेक्निकल टीम, प्रोडक्शन टीम को, हमारे प्रोड्यूसर निज़ाम जी को, साथ में हमें अपर्णा और दीपशिका का भी सहयोग मिला, इसके लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। नमस्कार आप सभी को हमारी ओर से।

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मणि, सभी को हमारा नमस्कार। FCC में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। प्रवीण जगनाथ ने कहा कि वे शांत हैं। उन्होंने पूछताछ के विषय पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनके वकील राव गुलबुल ने पूछताछ की प्रक्रिया पर संतोष जताया और कहा कि जांच निष्पक्ष और संतोषजनक तरीके से हुई। MMG टेल ठेका मामले में पूर्व न्याय मंत्री मनीष गोविंद से 7 घंटे तक पूछताछ की गई। FCC में अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। STC के 30 बिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल किया गया। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने जांच में सहयोग का भरोसा जताया। मनीष गोविंद का दावा है कि उनके साथ उत्पीड़न जैसा व्यवहार हो रहा है। आज से राष्ट्रीय सभा में बजट 2026-2027 को लागू करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण शुरू हो रहा है। 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जाएगा। इनमें फाइनेंस बिल शामिल हैं। आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा की जाएगी। ये एक व्यापक विधेयक है जिसका उद्देश्य बजट 2026-2027 में घोषित कई कदमों को लागू करना है। साथ ही आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम 23 सवालों के जवाब देंगे। और विदेश में युगांडा में भूख से मौत की खबरें फिर दुनिया को चिंता में डाल रही हैं। देश के पूर्वी हिस्से में लंबे समय से जारी सूखे के कारण भूख से 19 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद सरकार ने आपातकालीन खाद्य राहत वितरण शुरू किया है। मौसम की अपेक्षित बारिश नहीं होने से फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे इस इलाके में रहने वाली करीब 15 लाख आबादी गंभीर खाद्य कमी और बढ़ते कुपोषण का सामना कर रही हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। रॉयल रोड रोजबेल में 92 साल की 92-year-old की मिसेस बीबी सफूरा बिलत पैदाश नाम कोडाबक्स और जो सफूरा से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके दामाद सकूर पामिसा के घर रॉयल रोड रोजबेल से उठाकर यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। रेलवे 2 स्ट्रीट वापियोले में 56 साल के 56-year-old के श्री रवि सिंह भुवन जो डारा से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सफर बाद के 3 बजे उनके घर रेलवे 2 स्ट्रीट वापियोले से उठाकर वामौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

मुक्तिधारा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम करजोड़ अभिवादन करते हैं। मैं हूँ रत्ना, पुनः उपस्थित हो चुकी हूँ आप सभी की सेवा में भक्तिमय कार्यक्रम को लेकर। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे वेदसुधा कार्यक्रम के साथ, जिसे प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुदेश बुद्धा जी। तो आइए आज के इस सुविचार के साथ आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, मनुष्य साधन से नहीं परंतु साधना से महान बनता है, भवन से नहीं परंतु भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं परंतु उच्च आचरण से महान बनता है। आइए इसी के साथ भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। भगवान श्री गणेश प्रथम पूजनीय देवता, किसी भी कार्य से, कार्य के प्रारंभ में अगर भगवान श्री गणेश का नाम ले लिया जाए तो आपके सभी कार्य संपूर्ण रूप से संपन्न होते हैं।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज का कार्यक्रम तीन भागों में विभाजित है। प्रथम वेद पाठ एवं भावार्थ, द्वितीय एक प्रेरणादायक भजन और अंत में एक वैदिक मंत्र की गहन व्याख्या। तो आइए वेद पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें।

वो ओ जनिता पृथिव्या जनिताग्नर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः। सद्बुद्धियों का प्रेरक द्युलोक पृथ्वीलोक अग्नि सूर्य विद्युत और इन सब में विद्यमान यज्ञ भाव का जनक शांत स्वभाव जगदीश्वर प्यारा और सब जग के न्यारा प्रभु उपासकों को सदा पवित्र करता रहता है। ओम सखाय आनिषीदत पुनानाय प्रगायत शिशुम न यज्ञैः परिभूषत श्रियै। उपासकों को चाहिए कि वे अपने समान गुण कर्म स्वभावों वाले महानुभावों के साथ मिलकर बैठें और अपनी पुरानी बातों को भुलाकर आत्मा को सब प्रकार से शुद्ध पवित्र करने वाले प्यारे प्रभु का गुणगान करें। ओम तम वह सखायो मदाय पुनानम अभिगायत शिशुम न हव्यैः स्वदयंत गूर्तिभिः। उपासकों को चाहिए कि वे समान गुण कर्म स्वभाव वालों से मेल करें, अपनी आत्मा को निहाल करने के लिए, परितृप्त करने के लिए, अनुपम आनंद की प्राप्ति के लिए वे सदा हृदय मंदिर को शुद्ध पवित्र करने वाले प्रभु का गुणगान करें। ओम इंद्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधिक्षमा विश्वरूपं यदस्य ततो ददाति दाशुषे वसूनि चद्रध्राग उपस्तुतं चिदर्वा। वह इंद्र ही इस संपूर्ण संसार का और इसमें विद्यमान प्राणी समूह और पदार्थ समूह का स्वामी है, राजा है। वह सर्वविद्ध धन वैभव दानशील को देता है। अतिस्तुत्य वैभव आंतरिक दिव्य वैभव भी इस आत्मसमर्पण करने वाले उपासक की ओर ही वह प्रवाहित करता है। ओम शांति शांति।

ॐ बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं दधाना यदीशां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् ब्रेणात्यदीशां निहित्यं गुहाविः। श्रोताओ, वैदिक संस्कृति में वाणी को केवल ध्वनि या बोलने का साधन नहीं माना गया है, बल्कि उसे ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता और मानवता की आधारशिला माना गया है। समस्त वेद ज्ञान रूप हैं और उनका संपूर्ण अस्तित्व वाणी पर आधारित है। यदि वाणी न होती तो वेदों का श्रवण, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, उपदेश, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान तथा समाज का कोई भी संगठित स्वरूप स्वभाव न होता। इसी कारण ऋषियों ने वाणी को दिव्य शक्ति माना और उसके शुद्ध प्रयोग को मानव जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य बताया है। श्रोताओ, ऋग्वेद के दशम मंडल का यह अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र वाणी की उत्पत्ति, उसके उद्देश्य तथा उसके आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व का अद्भुत दर्शन प्रस्तुत करता है। यह मंत्र केवल भाषा विज्ञान का सिद्धांत नहीं है, बल्कि संपूर्ण वैदिक शिक्षा दर्शन, ज्ञान दर्शन तथा संस्कार परंपरा का मूल आधार है। श्रावणी उपाकर्म के अवसर पर इसी मंत्र से आहुति देकर विद्यार्थी और आचार्य यह संकल्प करते हैं कि वे अपनी वाणी को सत्य, ज्ञान, सदाचार, वेदाध्ययन के लिए समर्पित करेंगे। श्रोताओ, इस मंत्र का ऋषि मानव समाज को यह स्मरण कराता है कि मनुष्य का वास्तविक उत्थान उसके धन, शक्ति या पद से नहीं, बल्कि उसकी वाणी की पवित्रता, ज्ञान की गंभीरता और विचारों की श्रेष्ठता से होता है। इसलिए यह मंत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। आइए सबसे पहले इस मंत्र के शब्दार्थ को समझना आवश्यक है। बृहस्पति शब्द का अर्थ है हे बृहस्पति, अर्थात महान ज्ञान के स्वामी, परमात्मा या महान ज्ञानदाता। वैदिक परंपरा में बृहस्पति का अर्थ उस परम चेतना से है जो ज्ञान का मूल स्रोत है। प्रथमम वाचम अग्रम का अर्थ है वाणी का आदि, वाणी का प्रथम स्वरूप।

0: यत् प्रेरत अर्थात जिसे प्रेरित किया गया, नाम ध्येयम् दधानाः अर्थात जिसने पदार्थों के नाम स्थापित किया, श्रेष्ठम अर्थात सर्वोत्तम तत्व, निहितम गुहावी का अर्थ है जो भीतर अंतःकरण की गहराई में सुरक्षित रखा गया है। इस प्रकार मंत्र का भावार्थ है, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन, आपने ही प्रारंभ में मनुष्यों को वाणी की प्रेरणा दी जिससे वे पदार्थों के उचित नाम रख सके। वाणी का जो सर्वोत्तम शुद्ध और दिव्य स्वरूप है वह मनुष्य के अंतःकरण की गहराइयों में स्थित रहता है और वही सच्चे ज्ञान का आधार बनता है। श्रोताओं, यह मंत्र हमें बताता है कि भाषा मनुष्य की बनाई हुई कोई साधारण व्यवस्था नहीं है। मनुष्य में बोलने की क्षमता, विचारों को व्यक्त करने की योग्यता तथा सत्य को ग्रहण करने की शक्ति परमात्मा की देन है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी वेद भाष्य में स्पष्ट किया है कि सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों के हृदय में वेद ज्ञान का प्रकाश किया। उसी दिव्य ज्ञान के आधार पर मनुष्य ने भाषा, शिक्षा और संस्कृति का विकास किया। यदि मनुष्य के पास नामकरण की शक्ति न होती तो वह किसी वस्तु का ज्ञान न दे सकता, न ग्रहण कर सकता। उदाहरण के लिए, यदि जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, औषधि, अन्न, माता, पिता, गुरु, धर्म, सत्य जैसे शब्द न होते तो संपूर्ण ज्ञान व्यवस्था समाप्त हो जाती। इसलिए मंत्र कहता है कि नामकरण केवल सुविधा नहीं बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी है। श्रोताओं, वैदिक दर्शन में वाणी का संबंध केवल मुख से नहीं बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा से है। जब मन शुद्ध होता है तब वाणी मधुर होती है, जब बुद्धि निर्मल होती है तब शब्द सत्य होते हैं, जब आत्मा धर्ममय होती है तब वाणी लोक कल्याण का साधन बनती है। इसलिए वेद केवल बोलना नहीं सिखाते बल्कि यह भी सिखाते हैं कि क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए। यजुर्वेद में कहा गया है, सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। यह शिक्षा इसी मंत्र की भावना को आगे बढ़ाती है। श्रोताओं, मंत्र का एक अत्यंत गंभीर पक्ष यह है कि श्रेष्ठ वाणी प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपी रहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक शब्द श्रेष्ठ होता है। मनुष्य के भीतर सत्य बोलने, ज्ञान प्राप्त करने और सदुपदेश देने की क्षमता जन्मजात रूप से विद्यमान रहती है, किंतु उसका विकास शिक्षा, साधना, स्वाध्याय और संस्कारों द्वारा होता है। इसी कारण वैदिक गुरुकुलों में विद्यार्थी को सर्वप्रथम वाणी का संयम सिखाया जाता था। गुरु कहते थे कि कठोर वचन किसी शस्त्र से भी अधिक घाव कर सकता है और मधुर सत्य किसी औषधि से भी अधिक उपचार कर सकता है। श्रोतागण, आज आधुनिक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है कि शब्द मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। निरंतर नकारात्मक शब्द सुनने वाला बालक आत्मविश्वास खो देता है, जबकि प्रेरणादायक वाणी उसे महान बना सकती है। यह तथ्य वैदिक ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जान लिया था। श्रावणी मास में इस मंत्र से आहुति देने का विशेष कारण भी यही है। श्रावणी उपाकर्म केवल यज्ञ का उत्सव नहीं है, यह वैदिक शिक्षा का नववर्ष है। इस दिन विद्यार्थी पुराने दोषों का परित्याग कर पुनः वेदाध्ययन का संकल्प लेते हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि ज्ञान का आरंभ शुद्ध वाणी से होता है। जब इस मंत्र के साथ आहुति दी जाती है तब उसका आंतरिक भाव यह होता है कि हे परमात्मन, मेरी वाणी को सत्यमयी बनाइए, मेरे शब्द ज्ञान देने वाले हों, मैं किसी का अपमान न करूं, मेरी भाषा में मधुरता, विवेक और धर्म का वास हो, मैं वेद ज्ञान का प्रचार करूं और अपनी वाणी का उपयोग समाज की सेवा में करूं। अतः यह आहुति केवल अग्नि में घृत डालना नहीं है, बल्कि अपनी वाणी के दोषों, असत्य, कटुता, अपशब्द, निंदा, चुगली, मिथ्या प्रचार और अज्ञान को त्यागने का संकल्प है। श्रोताओं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि वेदाध्ययन का उद्देश्य केवल मंत्र कंठस्थ करना नहीं, बल्कि उनके अनुसार जीवन बनाना है। यदि किसी व्यक्ति की वाणी असत्य, कठोर और स्वार्थपूर्ण है तो उसका वेद पाठ अधूरा है। इस मंत्र का संबंध शिक्षा दर्शन से भी अत्यंत गहरा है। शिक्षा का पहला उद्देश्य भाषा का विकास है। भाषा से विचार उत्पन्न होते हैं, विचार से विवेक आता है, विवेक से चरित्र बनता है, चरित्र से समाज बनता है। इसलिए इस मंत्र में भाषा को सभ्यता का मूल आधार माना गया है। श्रोताओं, आज के युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर विज्ञान, भाषा विज्ञान, अनुवाद, संचार तकनीक और डिजिटल शिक्षा का संपूर्ण ढांचा भाषा पर आधारित है। यदि भाषा ना हो तो कंप्यूटर भी कार्य नहीं कर सकते। यह सिद्ध करता है कि वैदिक मंत्र केवल प्राचीन धार्मिक मंत्र नहीं, बल्कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान का भी मूल सिद्धांत प्रस्तुत करता है। सामाजिक जीवन में भी इस मंत्र का अनुप्रयोग अत्यंत आवश्यक है। परिवार में मधुर वाणी प्रेम उत्पन्न करती है। विद्यालय में प्रेरणादायक भाषा विद्यार्थियों का भविष्य बनाती है। न्यायालय में सत्य वाणी न्याय स्थापित करती है। संसद में मर्यादित भाषा राष्ट्र का सम्मान बढ़ाती है। धार्मिक मंचों पर शुद्ध वाणी समाज में सद्भाव उत्पन्न करती है। यदि समाज की भाषा असत्य, कटु और हिंसक हो जाए तो समाज भी हिंसक बन जाता है। यदि समाज की भाषा ज्ञानपूर्ण, विनम्र और सत्यनिष्ठ हो तो राष्ट्र का नैतिक स्तर ऊंचा उठता है। यही इस मंत्र का सामाजिक संदेश है। अंततः कहा जा सकता है कि ऋग्वेद का यह मंत्र वाणी, ज्ञान और संस्कृति का अमर कोश है। यह हमें स्मरण कराता है कि परमात्मा द्वारा प्रदत्त वाणी का सर्वोच्च उपयोग सत्य, ज्ञान, वेदाध्ययन, शिक्षा, सेवा और लोक कल्याण में है। श्रावणी उपाकर्म में इस मंत्र से ही जाने वाली आहुति इस महान संकल्प की प्रतीक है कि हम अपनी वाणी को पवित्र, संयमित, मधुर और सत्यनिष्ठ बनाएंगे, वेद ज्ञान का अध्ययन एवं प्रचार करेंगे और अपनी भाषा का उपयोग केवल कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए करेंगे। जब मनुष्य इस मंत्र की भावना को अपने जीवन में उतार लेता है तब उसकी वाणी केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि ज्ञान का प्रकाश, धर्म का संदेश, संस्कृति का संरक्षण और मानवता के उत्थान का साधन बन जाती है। यही इस वैदिक मंत्र का शाश्वत तात्पर्य है और यही श्रावणी मास के इस मंत्र से आहुति देने का वास्तविक आध्यात्मिक, शैक्षिक और सामाजिक महत्व है। श्रोताओं, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। आशा है कि आज के वैदिक संदेश से आपको अवश्य ही लाभ एवं मार्गदर्शन मिला होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी में श्रीमती अंजू जी का विशेष योगदान रहा, उनके प्रति कृतज्ञता। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नवीन प्रस्तुति के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

भक्ति धारा कार्यक्रम और वेद सुधा कार्यक्रम के लिए हम आचार्य सुदेश बद्री जी को हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में भजनों के साथ हम आपका साथ दे रहे हैं दिन के 11 बजे तक। श्रोताओं, जिस प्रकार से पेड़ फल देता है, पर हर पेड़ फल दे ये आवश्यक तो नहीं। किसी किसी पेड़ की छाया भी हमें अति संतुष्टि देती है। उसी प्रकार से गुरु के चरणों में ज्ञान प्राप्त करने मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाता है। और कल गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाएगा, तो आइए विश्व के सभी गुरुओं को हम वंदन करते हैं और आशा करते हैं कि हर मनुष्य को गुरु की भक्ति, गुरु का ज्ञान प्राप्त हो।

श्रोताओं, कर्तव्य ही एक ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और हमारा धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर सदैव फल मीठे ही आते हैं। अपने कर्तव्य को करते जाएं और धैर्य को कभी कम ना होने दें। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर विराम देंगे। आने वाले गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से ढेरों मंगल कामनाएं। विश्व के सभी गुरुओं को हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम को इस अंतिम भजन के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी ने प्रेम और भक्ति भाव से हमारा साथ दिया, हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हुए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: मैथिली सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। आज से राष्ट्रसभा में बजट 2026-2027 को लागू करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण शुरू हो रहा है। दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जाएगा, इनमें फाइनेंस बिल शामिल हैं और आज ही इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल 2026 पर भी चर्चा की जाएगी। ये एक व्यापक विधेयक है जिसका उद्देश्य बजट 2026-2027 में घोषित कई उपायों को लागू करना है। साथ ही आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम 23 सवालों के जवाब देंगे। अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की 17वीं कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक कल पोर्ट लुइस नगर पालिका में लगी। बैठक में मुख्य रूप से अप्रवासी घाट के आसपास स्थित बफर जोन और वहां किए जा सकने वाले या नहीं किए जा सकने वाले विकास कार्यों पर चर्चा हुई। इन सभी विकास परियोजनाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की बफर जोन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। और विदेशी स्तर पर मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सॉक को फिर से शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने सदस्य देशों से इलाके के हित में बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की अपील की। सॉक में 8 सदस्य देश शामिल हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। रेलवे टू स्ट्रीट बॉपियोले में 56 साल के 56-year-old के श्री रवि सिंह भुवन, जो डारा से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर बाद के 3 बजे उनके घर रेलवे टू स्ट्रीट बॉपियोले से उठाकर वामावशाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। रुजिकेल मोसलमान बाप्टिस्ट ओकुले में 87 साल की 87-year-old की श्रीमती अमुडों कारुपुनन, पैदाश नाम सुकोमानी और जो मीना से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर रुशिकेल मोसलमो बाप्टिस ओकुले से उठाकर सैमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमरो एट 1 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
0: स्टूडियो की घड़ी मिला लीजिए, समय 11:03 होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियों पर नज़र डालते चले। सूरीनाम के आसपास के गांवों में जिनमें है रियांबेल सूरीनाम, मोसलमो तनाकुदी, मोसलमो लेमून और NHDC रियांबेल के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल बुधवार 29 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। और पोम्पोनेट रियांबेल गांव के आसपास के इलाके जिनमें है मोसलमो उमनिकेन सेंट फेलिक्स के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 30 जुलाई को सुबह 9 बजे से दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। ये विज्ञप्तियां जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम उर्दू भाषा में, पेशकश है सैयदा सुबाई की।
2: शम्मे फरोजा।

और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और कहा कि शैतान ने मुझको ईजा और तकलीफ दे रखी है। हमने कहा कि जमीन पर लात मारो, देखो ये चश्मा निकल आया, नहाने को ठंडा पानी और पीने को भी, और हमने उनको अहलो आयाल और उनके साथ उतने ही और बख्शे। ये हमारी तरफ से रहमत और अक्ल वालों के लिए नसीहत थी। और हमने कहा अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा लो, फिर उससे मार लो और कसम न तोड़ो, बेशक हमने उनको साबित कदम पाया, बहुत खूब बंदे थे, बेशक वो बहुत रुजू करने वाले थे।

और हमारे बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद करो जो कुव्वत वाले और साहिब नजर थे। हमने उनको एक सिफत खास आखिरत के घर की याद से मुमताज किया था और वो हमारे नजदीक मुंतखब और खूबी वालों में से थे। और इस्माइल और अलियसा और जुल्किफल को याद करो और ये सब भी खूबी वालों में से थे।

ये नसीहत है और परहेजगारों के लिए तो उम्दा ठिकाना है, हमेशा रहने के बाग जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे, उनमें तकिए लगाए बैठे होंगे और खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और मशरूबात मंगाते रहेंगे, और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र हूरे होंगी। ये वो चीजें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था, ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा।

0: रंज।
1: ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोजख जिसमें वो दाखिल होंगे और वो बुरी आरामगाह है। ये खौलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे।

ये एक फौज है जो तुम्हारे साथ घुसती चली आ रही है, इनको खुशामदीद न कहा जाए। ये दोजख में जाने वाले हैं, कहेंगे बल्कि तुम्ही को खुशामदीद न कहा जाए, तुम्ही तो ये बला हमारे सामने लाए हो, सो ये बुरा ठिकाना है।

वो कहेंगे ऐ परवरदिगार जो इसको हमारे सामने लाया है उसको दोजख में दुगना अजाब दे, और कहेंगे क्या सबब है कि यहां हम उन लोगों को नहीं देखते जिनको हम बुरों में शुमार करते थे, क्या हमने उनसे ठट्ठा किया है या हमारी आंखें उनकी तरफ से फिर गई हैं, बेशक ये अहले दोजख का झगड़ना बरहक है।

0: कह दो कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूं और अल्लाह अकेले और गालिब के सिवा कोई माबूद नहीं। जो आसमानों और जमीन और जो मखलूक उनमें है सबका मालिक है, गालिब है, बख्शने वाला। कह दो कि ये एक बड़ी हौलनाक चीज की खबर है जिसको तुम ध्यान में नहीं लाते।
1: मा कान लिया मिन इल्म बिल मलाइल अला।

मुझको ऊपर की मजलिस वालों का जब वो झगड़ते थे कुछ भी इल्म न था, मेरी तरफ तो यही वही की जाती है कि मैं खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं।

0: जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूं, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीस के वो अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया।
1: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي

अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इबलीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझको आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, बस यहां से निकल जा, तू मर्दूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक मेरी लानत पड़ती रहेगी। कहने लगा कि मेरे परवरदिगार, अच्छा तो मुझे उस रोज तक के लोग उठाए जाएं मोहलत दे।

फरमाया कि तुझको मोहलत दी जाती है उस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको बहकाता रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया ठीक है, और मैं ठीक ही कहता हूं कि मैं तुझसे और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा।

सुनना भी बाईस से फजीलत है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मुझे कुरान सुनाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुरान सुना। बहवाला सही बुखारी मुस्लिम शरीफ। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन।

0: मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:27 हो चुके हैं। मंगल का दिन है, जुलाई की 28 तारीख है और इस्लामी साल के दूसरे महीने माह सफ़र की आज 13 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप हमें अपने पैगामात व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं। ताकीना करते हुए अब आप समाअत फरमाएंगे मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद खान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समाअत फरमाइए।
1: अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफलाक वलअर्दीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन खातमन नबीईन وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه بارك وسلم عزان محترم अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा फ़ज़ल व करम है, एहसान अज़ीम है कि उसने अपने नबी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर बेशुमार नेमतें अज़मतें बख्शी। उन्हीं नेमतों में से

एक नेमत ये भी है कि अल्लाह ने रुश्द व हिदायत के लिए क़ुरान और अहले बैत दिया। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि हम सब के आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहरी वसाल के बाद बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन दो चीज़ें ऐसी छोड़ी जिसका ज़िक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद किया। अहले बैत इकराम की तारीफ़ व तौसीफ़ मदह सताइश में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। मुख्तसरन मुस्लिम शरीफ में एक हदीस उसे नक़ल कर रहा हूँ कि सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद इबन अरकम रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुअज़्ज़मा और मदीने तैयबा के दरमियान मकाम जुफा में, जिसका नाम गुदूर खुम भी है, पास खड़े होकर खुतबा फरमाया। आपने लोगों को दावत दी और इंतज़ार किया कि सभी आ जाएं, और नमाज ज़ुहर से फारिग होकर अल्लाह ताला की हम्द सना बयान की। फिर नबी अकरम सल्लम ने हम लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाई, उसके बाद इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैं इंसान हूँ, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ फ़रिश्ता यानी मलकुल मौत मेरे पास आए तो मैं खुदा के हुक्म को कबूल करूं। वाना तारकुन फीकुम सकलैन, और मैं तुम में दो नफीस गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूं। अव्वलोहमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन्नूर, उसमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद है, जिसमें हिदायत और नूर है। तो खुदा ताला की किताब पर अमल करो, उसे मजबूती से थाम लो। रावी हदीस यानी हज़रत ज़ैद इबन अरकम फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के बारे में लोगों को उभारा और रग़बत दिलाई। फिर उसके बाद आपने फरमाया, व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती, यानी दूसरी जो सबसे गिरा क़द्र, सबसे हैवी और भारी चीज़ है, मेरे अहले बैत हैं, तुम्हें अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ और उससे डराता हूँ। इस जुमले को हुजूर नबी करीम सल्लम ने दो बार फरमाया। मतलब ये कि मैं ताकीद के साथ तुम लोगों को वसीयत करता हूँ कि मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरो और उनके हक की अदायगी में हरगिज़ कोताही ना करो। और तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने हज्जतुल वदा में अरफा के दिन रसूल सल्लम को इस हाल में देखा कि आप ऊँटनी पर सवार थे और खुतबा दे रहे थे। मैंने सुना आप फरमा रहे थे, या युहन्नासु इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखतुम बेही लन तदिल्लु किताब अल्लाही व इत्रति अहले बैती, यानी ए लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान वो चीज़ छोड़ी, अगर तुम इनको पकड़ के रखोगे तो गुमराह ना होगे। और वो चीज़ एक तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, और दूसरे मेरे अहले बैत, मेरी औलाद, मेरी ज़ुर्रियत है। और तिब्रानी शरीफ में भी रसूल सल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अबदुन हत्ता अकून अहब्बा इलैही मिन

अकवाल और उनकी ज़िंदगी को आप पढ़ें। इमाम सुद्दी से रवायत है कि जब इमाम ज़ैनुल आबदीन अली इब्न हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को गिरफ़्तार करके लाया गया और उन्हें दमिश्क के रास्ते में खड़ा किया गया तो वहाँ का एक बाशिंदा और कहने लगा, खुदा का शुक्र है जिसने तुम्हें कत्ल किया, तुम्हारा इस्तेसाल व ख़ात्मा किया, फितने की सींग काट दी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रदियल्लाहु ताला ने उससे फरमाया, तूने कुरान पाक पढ़ा है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया, तूने आले हामीम पढ़ी? उसने कहा हाँ। मैंने कहा, कुरान पढ़ा है लेकिन आले हामीम नहीं पढ़ी। आपने फरमाया, क्या तुमने ये आयत कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्ददा फिल कुर्बा नहीं पढ़ी? उसने कहा, वो लोग आप ही हैं। आपने फरमाया हाँ। अज़ीज़ाने मोहतरम, हम कहते हैं ज़माने में भी ऐसे लोग बहुत हैं जो अहले बैत नबूवत ख़ानदान रिसालत से नफ़रत करते हैं, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब नहीं सुन सकते हैं। अगर कोई मोहब्बत वाला इन हज़रात की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करता है तो उनकी पेशानियों में बल पड़ जाते हैं, चेहरे का रंग बदल जाता है और फौरन यजीद खबीस की हमायत के लिए खड़े हो जाते हैं, उसे हक पर बताते हैं और अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला वगैरह के साथ उसे याद करते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन पर इक़्तदार की हविस का इल्ज़ाम लगाते हैं और उन्हें बागी करार देते हैं, अलयाज़ु बिल्लाह ताला। और वो लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के प्यारे महबूब दानाए खुफाए गुयूब जनाब अहमद मुश्तबा सैदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करते हैं, उनके इल्म को बच्चों पागलों जानवरों के इल्म के बराबर बताते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ऐसे लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला पर इक़्तदार की हविस का इल्ज़ाम लगाएं, उनको बागी करार दें, तो कोई ताज्जुब नहीं, अल्लाह के प्यारों की तौहीन और गुस्ताखी यही उनका मजहब है। हुजूर उनके अहले बैत की मोहब्बत मदार ईमान है, इससे उनके कुलूब खाली हैं, उनके दिलों में ईमान नहीं। ईमान वाले कभी ऐसी बकवास नहीं करते हैं। खुदा अज़्ज़ा वजल इनको ईमान अता फरमाए। यजीद पलीद नापाक फासिकों फाजिरों काफिर की मोहब्बत और इमाम हुसैन की बुग्ज़ दावत से उनके दिलों को पाक फरमा दे और इमाम अली मकाम की मोहब्बत उन्हें नसीब फरमाए ताकि उनकी समझ में आ जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत शेख अकबर सैयदी मुहियुद्दीन इब्न अरबी रदियल्लाह तआला अपनी तसनीफ मसामिरतुल अख्यार में अपनी सनद मुत्तसिल से हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से रवायत करते हैं कि बाज़ मुतकद्दमीन को हज की बड़ी आरज़ू थी। उन्होंने फरमाया, एक साल बताया गया हाजियों के एक काफिला बगदाद शरीफ में आया है, मैंने उनके साथ हज के जाने का इरादा किया। 500 दीनार लेकर मैं बाज़ार की तरफ निकला ताकि हज की ज़रूरियात ख़रीद लाऊं। मैं एक रास्ते से जा रहा था कि एक औरत मेरे सामने आई, उसने कहा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, मैं सैयदज़ादी हूँ यानी नबी पाक की औलाद पाक में से हूँ, मेरे बच्चियों के लिए कपड़ा नहीं है और आज चौथा दिन है कि मैंने कुछ खाया नहीं है। इसकी गुफ्तगु मेरे दिल में उतर गई, मैंने वो 500 दीनार जो उसके दामन में रख दिए और उनसे बादब कहा, आप अपने घर जाएं और इन दीनारों से अपनी ज़रूरियात पूरी कर लें। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझको एक आले रसूल औलाद नबी फ़ातिमतु ज़हरा की औलाद हसन हुसैन की औलाद पाक सैयदज़ादी की मदद करने की तौफीक अता फरमाई और वापस चला आया। मैं कई साल हज कर चुका था, अल्लाह ताला ने इस बार हज पर जाने का शौक़ मेरे दिल से निकाला।

0: दूसरे साथी लोग चले गए, हज किया और वापिस चले आए। मैंने सोचा कि दोस्तों से मुलाकात कराऊं और उन्हें मुबारकबाद पेश करूं। चुनांचे मैंने दोस्तों से मिलने के लिए निकला और उनसे मुलाकात की। उन्हें सलाम करता और कहता, अल्लाह तुम्हारा आज कबूल फरमाए और तुम्हारी कोशिशें बेहतरीन जजाए अता फरमाए। तो वो दोस्त मुझसे कहता, अल्लाह तुम्हारा भी आज कबूल फरमाए। कई दोस्तों ने इस तरह कहा और जब रात को सोया तो नबी करीम सल्लम की ज़्यारत नसीब हुई। मैंने फरमाया, हुजूर नबी करीम सल्लम ने फरमाया, लोग तुम्हें हज की जो मुबारकबादी पेश कर रहे हैं उस पर ताज्जुब ना करो। तुमने मेरी एक ज़रूरतमंद बेटी की मदद की तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, उसने हूबहू तुझ जैसा एक फ़रिश्ता पैदा किया जो हर साल तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप गौर करें अहले बैत तहार की शान, अहले बैत तहार की तकद्दसात। आज हमारे मुल्क मॉरिशस में खानवाद अशरफिया के तमाम बुजुर्गान दीन तशरीफ़ ला रहे हैं। यह अहले मुल्क की खुशनसीबी है कि आपके सामने औलाद हसनैन करीमैन, औलाद अली फ़ातिमा आ रहे हैं। इनसे मोहब्बत करो, नफ़रत ना करो। नफ़रत करोगे तो तुम दुनिया भी बर्बाद कर लोगे, तुम्हारी कब्र भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी, जैसा कि मैंने अहादीस आपके सामने पेश की। मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह ताला औलादाने मखदूम अशरफ़े सिमना की बरकत से अल्लाह आपकी तमाम दुनियावी मुश्किलें, बलाएं, मुसीबतें दूर फरमा देगा और इनकी मोहब्बत कब्र में भी इंशाअल्लाह काम आएगी और हश्र में भी काम आएगी। अल्लाह तबारक ताला से हम दुआ करते हैं, मौला ताला हमें अहले बैत तहार की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और दुश्मनान अहले बैत से हम सब की हिफाजत फरमाए। वो दुश्मन जो बाहर का उसे हम पहचान लेते हैं, लेकिन जो दुश्मन हमारी ही तरीक़े का दाढ़ी टोपी अमामा जुब्बा कुब्बा पहना है, अल्लाह ऐसे मुनाफिकों से ईमान वालों की हिफाजत फरमाए। ऐसे मुनाफिकीन जो अहले बैत तहार की शान में बेअदबी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, कभी नाम ज़ैनुल आबदीन पर एतराज़ करते हैं, कभी इमाम हुसैन की तहारत पर एतराज़ करते हैं, अल्लाह ऐसे नाअहलों से उम्मत मुस्लिमा और आलम इस्लाम के हर सुन्नी सही अकीदा मोमिन की हिफाजत फरमाए। अहले बैत तहार की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: मौजूद सामईन, अभी आप समात फरमा रहे थे मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफ़ी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी इन दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए चंद ऐलानात। सैंपल से रेहाना हुसैन बुकस अपने शोहर रियाज करीम बुकस के लिए दुआए शिफा की गुजारिश कर रही हैं और तमाम मरीज़ों के लिए भी दुआए शिफा की गुजारिश कर रही हैं जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसके अलावा सकीना इसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं, वालिद मरहूम अबू तालिब मोदाबक्स और चाचा मरहूम नाजिया मोदाबक्स, और इसके अलावा वो दुआगो हैं कि अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन।

मोहतरम सामीन, एक और पैगाम मौसूल हुआ है मिशबा खुदा बुकस के लिए। जियादी फैमिली ने एक कलाम की फरमाइश की है जिसे इंशाल्लाह ताला हम कल चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ए पाक परवरदिगार, दुनिया के सबसे सकी सब बादशाह मांगने वालों से तंग आ जाते हैं और दे देकर थक जाते हैं। ऐ अल्लाह, एक तू ही अकेला ऐसा है जो मांगने वालों से तंग नहीं आता और दे देकर कभी नहीं थकता। ऐ अल्लाह, तुझसे जितना मांगें तू उतना खुश होता है। दुनिया के सब सखी अफराद और बादशाहों के दरवाज़े एक ख़ास वक्त के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन तू वो शहंशाह है जिसके दरवाज़े मांगने वालों के लिए हर लम्हा और हर वक्त खुले रहते हैं। ऐ पाक परवरदिगार, दुनिया के सब लोग अपनी औकात के मुताबिक देते हैं, लेकिन तू वाहिद है जो कि अपनी शान के मुताबिक अता करता है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे अपने लिए और तमाम उम्मते मुस्लिमा के लिए खैर बरकत और भलाई का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां अता कर और हमें जहन्नुम के अजाब से बचा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामेईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

కుర్చీని మార్చండి.

मौजीला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: તમિતાને આપો અનુમતિ. નમસ્કાર, શુભ દિવસ.
1: एक छुड़ो खेले खलक में जिमा सागर में मछली.

毛里求斯广播电台听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯广播电台

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे। तो जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब आप सभी सुनने वालों को। और आपकी पसंद कार्यक्रम आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे हमेशा की तरह। तो चलिए श्रोताओं, 4028085 पे हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वो है 5251700। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक आपकी मनपसंद रेडियो चैनल पे।

तो चलिए श्रोताओ, 2:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत, फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। जी हाँ, दिल तेरा दीवाना से लिया गया गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं के मांग पे और हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेज पे। जी हाँ, हमारे साथ इस समय पेंटाया परिवार सेलू जी की फरमाइश पे, जो कि एक्वाया की रहने वाली है, वो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए उनकी

फरमाइश पे ये अगला गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे ये कार्यक्रम जो है चलने वाला है शाम के 4 बजे तक। हमारा फ़ोन नंबर है 4028085, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 2517005। और चलिए गीतों का एक होप सूरत सफ़र जो है इसे हम बरकरार रख रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी सुनने वालों के नाम जो है ये बहुत ही प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत दिल तेरा दीवाना फिल्म से लिया गया गीत आपके लिए।

0: चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे अगले गाने की ओर। अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ इस समय मौराबिया की नानी कविता जी हैं हमारे साथ, और ये अगला गीत जो है एक सालगिरह गीत है, और ये सालगिरह गीत जो है उनकी मामा है कश्मीरा, पापा है अजय, बहन है प्रीति, सभी हरहंगी परिवार है, गबारन परिवार है, सिबन परिवार है, बधाइयाँ भेज रही है। तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और फिल्म का नाम है दिल जला, और फिल्म दिल जला जो है आपको पता है बहुत ही पॉपुलर फिल्म है, और इस फिल्म के सभी गाने जो है बेहद ही हिट हैं। तो चलिए इस फिल्म से लिया गया गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जो है ये प्यारा सा गीत हम चलाने वाले हैं। तो आपकी पसंद कार्यक्रम जो है श्रोताओ रेडियो मॉरिशस पे हर रोज़ की भांति ये कार्यक्रम जो है हम चलाते हैं। तो एक से बढ़कर एक गीत जो है आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं। तो चलिए गाने की ओर हम बढ़ेंगे, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास करके ये गीत जो है हम चला रहे हैं, सिबेन जी का जन्मदिन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं जो है समस्त परिवारों की तरफ से। ये प्यारा सा गीत है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
3: नाम मेरा शबनम है पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
4: दिल जले, दिल जले, ओ लाले, यहां तो सभी दिल जले।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें,

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: तो चलिए श्रोताओ अगले गाने की ओर। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत आप सुन सकेंगे। ये गीत विश्वानी डुमन जी के लिए, वाकवा की रहने वाली है आप, ये गीत जो है आपके सभी परिवारों के लिए, आपकी बहनों के लिए। इंदिरा है शारदा आपकी सहेली और नीला प्रतिभा शोभा, साथ में है गीता गजाधर। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये खूबसूरत सा गीत हम सुनेंगे। कोई इशारा करे कि कुछ ही घड़ी में सपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। जोनाथन कुयामतू की हत्या की जांच जारी है। आज राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात की पुष्टि की। वे विपक्ष नेता जोले जोंगा के प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, जो बंदूक रखने की प्रक्रिया पर आधारित था।

जोनाथन कुयामतू की मौत 11 जून को हुई। उन्हें गोली लगी थी। उनका शव उनकी गाड़ी के बगल में जमीन पर पड़ा मिला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुलाई की शुरुआत में मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने गवाहों की मांग की थी, जिसके बाद चार लोग सामने आए। इनमें से तीन की गवाही ली जा चुकी है।

0: के कॉन्ट्रैक्टर के सिलसिले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत उनसे अंडर वार्निंग पूछताछ की गई। अपने वकील हाफ गुलबुल की मौजूदगी में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए और इसी मामले में पूर्व अटॉर्नी जनरल मनीष गोबिंद के साथ भी 7 घंटों तक अंडर वार्निंग पूछताछ चली। विदेशी समाचारों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इबोला वायरस के खिलाफ एक कारगर टीके की सफलता का ऐलान किया है। सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल एक ऐसे मरीज पर किया गया जो खुद ही इसके लिए राजी हुआ था। इससे तेजी से कोंगो और अफ्रीका के अन्य देशों में फैल रही इस घातक बीमारी के खिलाफ संघर्ष में एक नया और महत्वपूर्ण पड़ाव पार हुआ है। अभी तक इस महामारी ने कोंगो में ही करीब 1500 जानें ली हैं। और मैड्रिड तथा बोर्डो में दमकलकर्मी जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। गर्मी और सूखे की वजह से इस आगजनी पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। 240 मकान जलकर राख हो गए। ये थे अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: SSR Road, Saint-François-Cap-Malheureux में 44 साल के 44 years old के श्री रणधीर मौगा जो रणधीर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और दिवंगत नारायण दत्त मौगा के बेटे थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी माँ मंजू मौगा के मकान SSR Road Saint-François-Cap-Malheureux से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। कालीमाई रोड लालमाटी में 68 साल की 68 years old की मिसिस बीबी रिहाना जुमन पैदाशी नाम इमाम जी और जो रिहाना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई है। उनका जनाजा आज शाम 7:45 बजे सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए उनके शौहर हसन जुमन के घर से कालीमाई रोड लालमाटी से उठाकर अलबेत मस्जिद बिलविद्यालय जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए बोबा का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 6:45 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: तो चलिए श्रोताओं, दोपहर के 3:04 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। ले फ्लामो रोड पेरेबिया के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 29 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और अब बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए श्रोताओं, हम प्रसारित करने जा रहे हैं आपकी पसंद ये कार्यक्रम जो है हम जारी रख रहे हैं इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक
4: आपकी पसंद।
3: तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ गीता जी है, पोंफिया की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। ये गीत जाएगा उनकी बहन मीला के लिए, न्यूकोव की रहने वाली, और उनके पति हैं रोहित जी, आदित्य, अरव, जानवी, तनिष्ठ, इन सभी लोगों के नाम, उनके सभी बच्चों के लिए ये प्यारा सा गीत हम चलाएंगे।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में फिल्म का नाम है शराबी। ये गीत जाने वाला है गौगोप की सुनीता जी के लिए। उनके भाई है सुरेश, उनकी बहन है अमृता, साथ में है विमला, कुंगमा की रहने वाली वीना जी हैं, गुडलैंड की रहने वाली उनकी भाभी है, भतीजे हैं, सभी परिवारों के लिए ये प्यारा सा गीत। हमारे साथ अनिता जी है फिकॉफला की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो इन सभी लोगों के नाम जो है फिल्म शराबी से लिया गया। ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में हम सुन पाएंगे।

चलिए ट्रियोलो की तरफ हम जाएंगे। अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो चलिए उनका ये मनपसंद गीत हिमालय की गोद फिल्म से लिया गया। ये गीत जाएगा उनकी बेटी अंजू के लिए, साथ में उनके दामाद वेद, उनका बेटा है सचिन, उनकी बहू है पूजा, साथ में कियान, शेफिया, तो इन सभी लोगों के लिए ये प्यारा सा गीत हम सुन सकेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, 4028085 पे बहुत ही प्यार के साथ आप निभा रहे हैं, अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। और ये अगला गीत जो है हमारे साथ भाई हरीश जी है, बोबासा के रहने वाले। तो चलिए ये अगला गीत उनके सभी दोस्तों के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 3:30 बज रहे हैं। आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस समय आफेज जी है और वो लावण्या की रहने वाली है। ये अगला गीत जो है जाने वाला है उनके शोहर की याद में, और आपकी पसंद कार्यक्रम जो है हम चलाने वाले हैं शाम के 4 बजे तक। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, ये अगला गीत जो है हम आप सभी तमाम सुनने वालों के नाम करेंगे। राधा जी है पिछवे अजय सैप्रिया की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो उनके नाम भी ये प्यारा सा गीत हम चलाने वाले हैं। साथ में है माँ गायत्री जी है नुवेल फ्रांस की रहने वाली, तो उनके नाम भी ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। और इसी गीत पे नाम जुड़ेंगे हमारे साथ माला सुमारू जी है कतमोन की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। उनके पति है सूर्यदेव जी, तो उनके नाम भी ये प्यारा सा गीत हम चलाएंगे। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रही है, और ये कार्यक्रम जो है हम शाम के 4 बजे तक जारी रखने वाले हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहेंगे तो हमारा फ़ोन नंबर है 4028085, हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251700।

फिल्म का नाम है अनुपमा और ये अगला गीत जो है आशा भोंसले की आवाज़ में, ये गीत जो है जाने वाला है वक्वा किस्सू देवी जी के लिए, साथ में जाएगा समस्त कुशल परिवार है, त्रियोले के रहने वाले दीदी ललिता है, साथ में है दीदी सुनीता, शोभा

वीणा माला बिंदु संगीता मालेंगा के सभी रामरतन परिवार, रामगुलाम परिवार, कुआगो परिवार, रघुबा परिवार, जालू परिवार, तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम सुन सकेंगे।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम हम चला रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। दोपहर के 3:40 हो चुके हैं। अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ बसंती जी है, आप बवासा की रहने वाली है, तो चलिए आपके जी मनपसंद गीत उदित नारायण की आवाज़ में हम सुन पाएंगे।

चलिए आपकी पसंद का रेकॉर्ड त्रियोले की आरती जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उनका ये मनपसंद गीत रूप की रानी चोरों का राजा, इस फिल्म का ये शीर्षक गीत जाएगा उनके पति सुरेंद्र के लिए। उनकी तीन बेटियां हैं, रीमा है, आनंदी है, सिमला है, उनका है बेटा आश्ले। तो सभी परिवारों के लिए, उनके सभी परिवारों के लिए त्रियोले के रहने वाले।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फिल्म का नाम है गाइड और ये गीत जो है जाएगा समस्त बंधु परिवार के लिए त्रियोले के रहने वाले।

0: आपकी पसंद कार्यक्रम के अंत तक आप मुझे है श्रोताओं, ये अंतिम नजाना हमारे साथ आशा जानू जी है, कोटेज की रहने वाली। उनका ये मनपसंद गीत जाएगा उनकी मामा कुमारी के लिए। उनके नेफ्यूज़ है शुभम, ऋषभ, उनकी दीदी है आरती, जीजू राज है, जानू परिवार है, साथ में है चित्रा जी, भाई विजय है और नंदिनी, जेनिता, धीरज। तो इन सभी सुनने वालों के नाम जो है ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम चला रहे हैं, और इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो जाएगा। और शाम के 4 बजते ही छोटा हुआ आप तमिल भाषा में कार्यक्रम सुन सकेंगे कलाई वाणी साथ। तो चलिए 2:30 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके फ़ोन कॉल्स के लिए, आपके प्यार भरे मैसेजेस के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए गाने की ओर हम बढ़ेंगे, फिर मिलेंगे, हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब।
1: Ladies and gentlemen, I say ladies and gentlemen, it's the world famous DJ Zubair, debut single in black.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भूले बिसरे गीत रेडियो मॉरिशस पर भूले बिसरे। पाँच बजकर 11 मिनट हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। जी हाँ, आज मंगलवार 28 जुलाई 2026 और आप सुन रहे हैं एक खूबसूरत कार्यक्रम भोले बिसरे गीत प्रोग्राम, और उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। ऐसे खूबसूरत गाने हम चलाएंगे, 60s 40s के खूबसूरत लोकप्रिय गीत। बस अभी इस शाम को और रंगीन बनाने के लिए साथ दीजिएगा। चलिए अगला गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: 7:24 हुए हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़, आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत प्रोग्राम। क्या करें, आदत से मजबूर, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। सब प्रोग्राम्स तो बराबर है, एक से बढ़कर एक खूबसूरत है, आप लोगों के लिए हम पेश करते हैं। और यहाँ पर भी भूले बिसरे गीत, ऐसे गीत जो आप कभी भूल नहीं सकते, बचपन की यादों, जवानी की यादें इससे जुड़ी हुई है। CID फिल्म से लिया गया शमशाद बेगम और आशा जी की आवाज़ों में।
1: नहीं, और आते हैं रईसी झाड़ने।
2: बस यही तो बात खराब है ना, तुम आओ देखा ना, तार पैकेट में फूटी कौड़ी नहीं। ए, ये देखो।
1: अरे तूने जारिया चबटवा मारला ना?
2: क्या जल्दी से पान बना और कत्थे की जगह मेरे अरमानों का खून डाल दे और ये पैसा ले चल।
1: छन्नी खोटी है।
2: खोटी है? देखा वो जारी अपने को बना गया। अरे पाकिट तो एकदम नया और माल लिए, बोतल शबाब की और गोली खांसी की। अजीब अजीब, कौन मजाक करता है यार? क्या ओ हवलदार, तुम क्या
3: चलिए पुलिस थाने।
2: तुम?
3: मैं उधर बताऊंगा।
2: अठन्नी लो और यही बताओ ना।
3: मैं उधर बताऊंगा।
1: तुम पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाता, रोज रोज थाने जाना पड़ता।
2: मेरी जान, पुलिस में भर्ती हो गया तो पुलिस की भर्ती बंद हो जाएगी। वो इसलिए कि जब चोर नहीं होंगे तो चोरी नहीं होगी, और जब चोरी नहीं होगी तो पुलिस वाले बेकार हो जाएंगे। क्यों हल्ला खाम खा तुम्हारे पेट पे? नहीं नहीं,
3: जाएगा नहीं।
2: मगर पाकिट तो बिल्कुल खाली था हवलदार, क्यों चलूं?
3: तुम्हें किसी बटवे के लिए नहीं बुलाया।
2: तो फिर किस लिए? अरे तुम कहीं खून के लिए तो नहीं? मगर हवलदार, इंस्पेक्टर शेखर को मालूम है कि खून मैंने नहीं किया है।
3: इंस्पेक्टर शेखर भी वही है, उनसे बात करो और मेरे साथ।
2: अच्छा मेरी जान, एक बार इस गर्दन को हाथ लगा दो, मालूम होता है ये सुराहीदार गर्दन मर्तबान बनने वाली है। लगाओ मेरी जान, लगाओ।
3: मास्टर तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें खूनी की पहचान के लिए बुलाया।
2: खूनी पकड़ा गया है क्या ऐसा? चलो चलो ठहरो। वो खूनी को अच्छी तरह बांध रखा है ना? ऐसा नहीं कि मैं उससे डरता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं कैंची चलाने वाला आदमी, जरा चाकू वाले से चमकता हूँ।

पाँच बजकर 31 मिनट हुए हैं दोस्तों। दिल विल प्यार व्यार, जी हाँ, ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि हर उस एहसास का नाम है जो बिना दस्तक दिए दिल में उतर जाता है। और प्यार जब कहाँ और कब, कहाँ और किससे हो जाए, इसका कोई नियम नहीं होता। कभी एक मुस्कान से शुरू होता है, कभी एक मुलाकात से, और कभी सिर्फ किसी की यादों से। प्यार की असली खूबसूरती इसी बात में है कि ये ज़िंदगी के हर पल को एक नया रंग दे जाता है। शागिर्द फिल्म से लिया गया, लता जी की आवाज़ में।

चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये प्रोग्राम समाप्त हो चला। 5:54 हुए हैं, आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। भोले बिस्तरे गीत प्रोग्राम के अंत तक हम आ पहुँचे हैं। हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 6 बजे हैं। सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। विदेश में रह चुके मॉरिशस के नागरिकों को मिलने वाले पेंशन के नियमों में होगा बदलाव। अगले वर्ष 2 जनवरी से नई शर्तें लागू। राष्ट्रसभा में पीएनक्यू के दौरान प्रधानमंत्री ने हथियारों के लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव का ऐलान किया। साथ ही हथियारों और कारतूस की बिक्री पर निगरानी और कड़ी किए जाने का ऐलान। एबोला वायरस के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एबोला वैक्सीन के पहले वैश्विक क्लिनिकल टेस्ट के सफल होने की घोषणा। भारत में भक्ति और आस्था का उत्साह चरम पर। एक और अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं बाबा बर्फानी के दर्शन किए, तो दूसरी ओर नीलाद्री विजय के साथ भगवान जगन्नाथ की विश्व विख्यात रथ यात्रा का पारंपरिक समापन। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश हैं समाचार विस्तार से। बजट 2026-2027 में घोषित कदमों को लागू करने की दिशा में आज राष्ट्रसभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल को दूसरी पढ़त के लिए पेश किया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि इन दोनों विधेयकों का उद्देश्य देश में आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय को मजबूत करना तथा बजट में घोषित वित्तीय, आर्थिक और सार्वजनिक वित्त से जुड़े कदमों को लागू करना है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
2: These bills give legislative effect to the reforms that are guided by the four principles that define our approach to nation building. That is responsibility, solidarity, efficacité économique et justice sociale. They are more than a collection of legislative amendments. Together, they provide the legal framework to restore fiscal sustainability, strengthen our institutions, modernize our economy, reinforce our

0: in the present. These bills translate that conviction into action. They lay the foundation of a future-ready Mauritius. That is one that is fiscally responsible, economically stronger, socially fairer, and better equipped to seize the opportunities of tomorrow. The reforms, Madam Speaker, which are before this House, demand courage and perseverance. But they are reforms that are taken not for the next election, but for the next generations. With the confidence in our people and faith in our country's future, this government will continue to take the decisions that are necessary to secure lasting prosperity for all Mauritians. Madam Speaker, with these words, I now commend the bill to the House.
1: Thank you.
2: राष्ट्रसभा में आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान विदेश में रह चुके मॉरिशस के नागरिकों को मिलने वाले पेंशन का मुद्दा उठाया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि अगले वर्ष जनवरी महीने से अन्य शर्तों के साथ पेंशन पाने के लिए व्यक्ति को 40 वर्ष की आयु के बाद मॉरिशस में कम से कम 15 वर्ष की कुल अवधि तक रहना होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये नया नियम उन लोगों पर लागू नहीं जो वर्तमान प्रणाली के तहत पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई कि सरकार निलंबित सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन दिए जाने की मौजूदा नीति पर फिर से गौर किया जाएगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: पहली जनवरी 2027 से बेसिक रिटायरमेंट पेंशन की जगह पर स्टेट एज पेंशन लागू होने के साथ ही इसके लिए जरूरी निवास शर्तों में भी बदलाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सांसद चेतन बाबूलाल के सवाल के जवाब में ये बात कही। अभी विदेश में रहने या काम करने वाला 70 साल से कम उम्र का मॉरिशन नागरिक पेंशन का दावा कर सकता है अगर वह 18 साल की उम्र के बाद कुल मिलाकर कम से कम 12 साल तक मॉरिशस में रहा हो।
0: To the state age pension.
3: अब कोई व्यक्ति बुढ़ापे का पेंशन पाने का हकदार तभी होगा जब वो 40 साल की उम्र के बाद मॉरिशस में कुल मिलाकर कम से कम 15 साल रहा हो और पेंशन के लिए आवेदन करने से ठीक पहले के 3 सालों में कुल मिलाकर 12 महीने मॉरिशस में रहा हो। इस बदलाव से ये पक्का होगा कि पेंशन उन लोगों को मिले जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान हमारे देश, हमारे समाज और हमारे टैक्स सिस्टम के विकास में योगदान दिया है, न कि उन लोगों को जिन्होंने अपना पूरा करियर विदेश में काम करते हुए बिताया और अब रिटायरमेंट के लिए मॉरिशस लौटने का फैसला किया है। मैं उन रिटायर्ड हो चुके लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ जो अभी मौजूदा रेजिडेंस नियमों के तहत पेंशन पा रहे हैं। ये बदलाव उन पर लागू नहीं होगा। रेजिडेंस से जुड़ी नई शर्त सिर्फ उन लोगों पर लागू होगी जो पहली जनवरी 2027 या उसके बाद सरकारी वृद्ध पेंशन के लिए आवेदन करेंगे। सांसद बाबूलाल के एक और सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस स्टैगफ्लेशन की स्थिति का सामना नहीं कर रहा जिसे रुकी हुई या घटती आर्थिक वृद्धि ज्यादा और लगातार बनी रहने वाली महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के तौर पर परिभाषित किया जाता है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ऐसे आंकड़े पेश किए जिनसे पता चलता है कि महंगाई उम्मीद से कम रही है, विकास दर 3% है और बेरोजगारी दर 2020 के 9.2% से घटकर 2025 में 5.7% हो गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टकरावों के कारण आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई और नौकरियों के सृजन पर नकारात्मक असर पड़ने का वास्तविक जोखिम है। फिर भी पर्यटन और निर्माण क्षेत्रों से सकारात्मक योगदान की उम्मीद है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की चुनौतियों के बावजूद इस साल रेस्टोरेशन सेक्टर में अच्छी वृद्धि की उम्मीद है और पर्यटकों की संख्या लगभग 1.47 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार हवाई संपर्क बढ़ाने और सीटों की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रही है। खासकर टर्किश एयरलाइंस की 3 अतिरिक्त साप्ताहिक उड़ानों और इथियोपियन एयरलाइंस की 3 साप्ताहिक उड़ानों के जरिए जो एमिरेट्स की पहले से चल रही 2 रोजाना उड़ानों के साथ जुड़ेंगी। मैं सभा को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं खुद उस कमेटी की अध्यक्षता करूँगा जिसे हमारी हवाई पहुँच नीति की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। जहाँ तक निर्माण सेक्टर की बात है, इसमें धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। ये सुधार कई बड़ी मूल ढांचा परियोजनाओं जैसे M4 मोटरवे, रिंग रोड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण, आइलैंड कनेक्टर टर्मिनल कोदो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और रिविया डिजोंगी डैम के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरे

0: उभरते क्षेत्रों में निजी सेक्टर के बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण होगा। व्यवसाय को आसान बनाने और प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रसभा में एक नया बिल पेश किया जाएगा। इसे स्थानीय और विदेशी ठेकेदारों के लिए प्रोडक्टिव निवेश के और मौके बनेंगे, खासकर रिन्यूएबल ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि पिछले बजट में मूलभूत उत्पादों पर सब्सिडी देने के लिए प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 बिलियन रुपए लगाए गए थे और ये सब्सिडी अन्य उत्पादों तक भी बढ़ाई गई थी। सांसद जमन के सवाल के जवाब में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि पहली जनवरी 2014 से 27 जुलाई 2026 के बीच ड्रग तस्करी के 18 मामलों में 23 पुलिस अफसरों को गिरफ्तार किया गया और ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया। कुछ अफसर 15 साल तक कैद की सजा काट रहे हैं, जबकि अन्य मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं। सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने की नीति की समीक्षा करने जा रही है जिन्हें नौकरी से सस्पेंड किया गया है। सोशल मीडिया पर बोबासा कैदखाने के अंदर गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर वायरल हुई एक वीडियो और कुछ तस्वीरों को लेकर सांसद रामदास के सवाल रहे। ये तस्वीरें जेल में जब्त किए गए एक मोबाइल फोन से मिली थी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और 3 कैदियों को अन्य कैदखानों में ट्रांसफर किया गया है। वीडियो और तस्वीरों में दिख रहे 10 लोगों की पहचान बोबासा कैदखाने के कैदियों के तौर पर की गई है। 20 जुलाई 2026 को पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई और सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जांच शुरू की गई। मॉरिशस प्रिजन सर्विस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल फोन को पुलिस ने जांच के मकसद से अपने कब्जे में रखा है। पुलिस की आईटी यूनिट अभी इस डिवाइस की फोरेंसिक जांच कर रही है। रोड्रिग्स में तैनात पुलिस अफसरों को इंटरपोल की तरफ से प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री सांसद फ्रांसवा के सवाल का जवाब दे रहे थे। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि अब तक रोड्रिग्स इंटरपोल के ग्लोबल सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ा नहीं था और उसे पोर्ट लुइस में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के जरिए बातचीत करनी पड़ती थी। अगस्त 2025 से रोड्रिग्स को इंटरपोल के डेटाबेस का सीधा और 24 घंटे एक्सेस मिल रहा है और वो जरूरी जानकारी तेजी से शेयर कर सकता है। सांसद एटवारिया के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि मॉरिशस ने मित्र देशों और क्षेत्रीय संगठनों के साथ समुद्री सुरक्षा और डिफेंस से जुड़े 12 समझौते तय किए हैं। इनमें समुद्री सुरक्षा तथा देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा शामिल है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि इनमें से कोई भी समझौता उस जोन में तेल, गैस या किसी अन्य प्राकृतिक संसाधन की खोज से संबंधित नहीं है।
1: राष्ट्रसभा में आज प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के दौरान हथियारों के लाइसेंस जारी करने के नियमों और हथियारों तथा कारतूस की बिक्री पर नियंत्रण का मुद्दा चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि हथियारों का लाइसेंस देने के नियमों में बदलाव लाया जाएगा, साथ ही हथियारों और कारतूस की बिक्री पर निगरानी भी और कड़ी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने पिछले जून महीने में मिडलैंड्स में गोली मारकर की गई जोनाथन कुयान्नाटू की हत्या के मामले की जांच की मौजूदा स्थिति का भी की भी जानकारी दी। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में सुनिए।
0: विपक्ष नेता ने प्रधानमंत्री से जोनाथन कुयान्नाटू की हत्या की जांच की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारियां मांगी। ये हत्या पिछले जून महीने में मिडलैंड्स के एक हंटिंग एस्टेट में हुई थी। प्रधानमंत्री के अनुसार 12 जून को हुए पोस्टमार्टम से पता चला कि पीड़ित की मौत सीने में गोली लगने से हुई थी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी बताया कि जांच क्यूपिप सीआईडी, ईस्टर्न डिवीजन सीआईडी और एमसीआईटी द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक 21 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने जांच को आगे बढ़ाने में मदद के लिए पुलिस द्वारा इनाम की घोषणा का भी जिक्र किया।
2: A reward of 500,000 rupees has been proposed to any reliable informer. Subsequently, 4 persons have approached the police and statements have been recorded from 3 of them. The inquiry is ongoing. I wish to inform the House that a team of foreign investigators is also assisting the police in this inquiry.
0: PNQ के जरिए प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि जनवरी 2025 से जुलाई 2026 के बीच अवैध हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी 4 घटनाएं पेश आईं, ये भी पता चला कि 27 जुलाई 2026 तक कुल 4000

0: 287 फायर आर्म लाइसेंस जारी किए गए थे और 3 हथियार डीलर एम्यूनिशंस आयात करने के लिए अधिकृत हैं। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई अर्जियों पर भी चर्चा की।
1: I've requested the Commissioner of Police to review and strengthen the procedures for monitoring the sale of arms and ammunition and ensure a more stringent control. I've also requested the Commissioner of Police to review the criteria for granting of firearm licenses. At the same time, the Commissioner of Police will review the list of firearm licenses and revoke licenses whenever the reasons for such licenses were delivered and which are no longer valid. Madam Speaker, in assuming office in November 2024, we inherited a law and order situation that threatened not only the reputation of the police, an institution officially recognized as a disciplined force, guided by the values of integrity, accountability, and public service, but also the very foundation of public trust in our institutions. The forthcoming setting up of the National Crime Agency represents an important institutional reform. The reform represents a pivotal step towards building an integrated, intelligence-led, and multi-agency response to serious unorganized crime.
0: विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग से पुलिस बल में सुधार के जरिए सरकार का लक्ष्य इस सेवा को अधिक गतिशील और आधुनिक समाज की जरूरतों के अनुरूप बनाना है।
2: पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से हुई 11 घंटों से अधिक समय तक चली पूछताछ पर एक बार फिर नज़र। लगभग 30 बिलियन रुपए के पेट्रोलियम सामानों की आपूर्ति के कॉन्ट्रैक्ट को मर्केंट आइलैंड मैरिटाइम ग्रुप को दिए जाने के मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के तहत उन्हें अंडर वार्निंग पूछताछ के लिए बुलाया गया। अपने वकील के साथ पहुंचे प्रवीण जगनाथ ने जांच अधिकारियों के 90 से अधिक सवालों के जवाब दिए। जरा विस्तार से रिपोर्ट में।
3: रात के 2 बजे हैं जब प्रवीण जगनाथ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन यानी FCC के दफ्तर से बाहर निकले। पूर्व प्रधानमंत्री ने यहां 11 घंटे से ज्यादा समय बिताया। इस दौरान जांचकर्ताओं ने उनसे लगभग 30 बिलियन रुपए के एक ठेके को मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप यानी MMG को दिए जाने में उनकी कथित भूमिका को लेकर पूछताछ की, जबकि ये कंपनी शुरुआती बोली लगाने वालों में शामिल नहीं थी। जाने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि वह पूरी तरह शांत हैं और जांच पूरी होने तक हर तरह से जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार
4: हैं।
3: प्रवीण कुमार जगनाथ ने कहा कि पूछताछ अभी बाकी है और एक अन्य दिन पर इसे जारी रखी जाएगी जो FCC के साथ मिलकर तय की जाएगी। फिलहाल वे ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ किए जाने पर तथा प्रवीण कुमार जगनाथ पर कौन सा आरोप लगाया गया है प्रेस के सवाल पर प्रवीण कुमार जगनाथ ने कहा, जब वे सभी तहकीकात के दौरान सभी प्रश्नों का जवाब दे देंगे तभी वे अपना बयान देंगे। अभी के लिए तिथि तय नहीं हुई है। FCC के दफ्तर के बाहर प्रवीण जगनाथ के समर्थन में जुटे समर्थकों ने अपना विरोध जताया। हालात उस वक्त और तनावपूर्ण हो गए जब तीखी नोकझोंक के बीच भीड़ के कुछ लोगों ने एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया। पिछले साल शुरू हुई इस जांच में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की स्थानीय प्रतिनिधि करीन अनेजिस और पूर्व मंत्री रंगनाथन पदयाची और सुदेश कालीचरण शामिल हैं। दोनों पूर्व मंत्रियों पर फिलहाल पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन यानी पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ पहुंचाने का अस्थायी आरोप लगाया गया है।
2: इसी मामले में पूर्व अटर्नी जनरल मनीष गोविंद से भी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर केवल कानूनी राय दी थी और इस संबंध में उन्होंने किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। विदेश की खबरों में जो आज सुर्खियों में है, इबोला वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक अहम सफलता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इबोला वायरस के खिलाफ विकसित किए गए एक वैक्सीन के पहले विश्व क्लिनिकल ट्रायल के सफल होने की घोषणा की। ये परीक्षण एक स्वयंसेवक पर किया गया। इसे उस वायरस के खिलाफ बड़ी प्रगति माना जा रहा है जिसने कोंगो गणराज्य में अब तक लगभग 1,500 लोगों की जान ली है। जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के

0: के बाद राहत और बचाव अभियान जारी। इस भूकंप में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि 1.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। कई सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। और भारत में हिमालय से लेकर पूरी धाम तक का देश इन दिनों भक्ति और आस्था के रंग में रंगा है। श्री अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। वहीं नीलाद्री विजय के साथ भगवान जगन्नाथ की विश्वविख्यात रथ यात्रा अपने पारंपरिक समापन तक पहुंची है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: हर हर महादेव के पावन जय घोष से हिमालय की वादियां भक्ति रस में सराबोर हैं। श्री अमरनाथ महायात्रा ने इस वर्ष आस्था का एक नया इतिहास रच दिया। केवल 18 दिनों में ही 4 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पावन हिमलिंग के दर्शन कर चुकी हैं। अब तक का 4,14,000 से अधिक भक्त इस दिव्य यात्रा को पूर्ण कर चुके हैं। कठिन पर्वतीय मार्ग, प्रतिकूल मौसम और ऊंची हिम श्रृंखला भी श्रद्धालुओं की अटूट श्रद्धा और शिव भक्ति के आगे फीकी पड़ गई। अमरनाथ की ये पावन यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, तप, समर्पण और ईश्वर से साक्षात्कार का आध्यात्मिक पथ मानी जाती है। इस वर्ष यात्रा के पिछले सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ने की संभावना जताई जा रही है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर इस महायात्रा का समापन होगा। शंखनाद के बीच पूरी की गई विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज आध्यात्मिक उल्लास के साथ समापन हो गया। नीलाद्री बीजे की पवित्र परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा पुनः श्री मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हुए। 9 दिनों तक भक्तों को दर्शन देने के बाद प्रभु के अपने धाम लौटने का ये दिव्य क्षण श्रद्धा, भक्ति और सनातन परम्परा का अनुपम प्रतीक माना जाता है। इससे पहले बहुधा यात्रा और सुना बेशा जैसे भव्य अनुष्ठानों में लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रभु के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
0: अब चलिए जानते हैं कि आने वाले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। इसके अलावा पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल आज रात और कल सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिर रहेंगे और रह कर बारिश होगी। दोपहर बाद भी पश्चिमी इलाकों में बादल छा जाएंगे और सेंट्रल प्लेटू पर भी बादलों के घिराने का अनुमान लगाया गया है और साथ में बारिश का भी अनुमान है। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा खासकर आज रात और कल सुबह दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:41 पर, शाम को सूर्यास्त 5:51 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज़ विभाग और तकनीकी पर फैजन का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। अनफील्ड रोड श्वाजी में 72 साल के 72 years old के श्री आत्माराम लक्ष्मण जो रोहिणी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके बेटे श्रीराम लक्ष्मण के मकान अनफील्ड रोड श्वाजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौतें बैलोंभा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM। कालीमाई रोड लालमाटी में 68 years old की मिसिज बीबी रेहाना जमन पैदाशी नाम इमाम जी और जो रेहाना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज रात 7:45 उनके शौहर हसीन जुमन के मकान कालीमाई रोड लालमाटी से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए बेलवेडिया की अहले बैत मस्जिद और दफनाने के लिए बोबुआ का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 7:15 PM। कालीचरण लेन काहुलालियान वाकवामी 82 साल की 82 years old की श्रीमती चिंतामणि ओबिलक की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी बेटी शारदा शिवनाथ के मकान कालीचरण लेन काहुलालियान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेहिनो वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। एस एस आर रोड सैन फ्रांसवा कप मालेरोय में 44 साल के 44 years old के श्री रणधीर मगर जो दिवंगत नारायण दत्त मगर के सुपुत्र थे और जो रणधीर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी माँ मंजू मगर के मकान SSR Road सैन फ्रांसवा कप मालेरोय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाऊची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। रुजिकल मोसलमान बाटिस्टो कुलेमे 87 साल की 87 years old की श्रीमती आमोदों काहुपुनन पैदाशी नाम सुकुरमनी और जो मीना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान रुजिकल मोसलमान बाटिस्टो कुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौतें की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। फॉरेस्ट पार्क हेनोल्ट रोड इंग्लैंड में 63 साल की 63 years old की श्रीमती रूपा मंगरू जो गोबिन मंगरू की बेटी थी और जो पहले बालांस सूरी नाम रहा करती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शनिवार पहली अगस्त को मोरशन समय अनुसार शाम 3:30 बजे इंग्लैंड में उठाई जाएगी। क्रिमेशन इन इंग्लैंड ऑन सैटरडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार 29 जुलाई 2026 को विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये यज्ञ पोर्ट लुइस आर्य जिला परिषद में शाम 3 बजे, फ्लाक आर्य जिला परिषद में सुबह 9 बजे और सावन आर्य जिला परिषद के सुयाक श्रद्धानंद गुरुकुल में सुबह 9 बजे होगा।
3: NBC Radio, 24 hours a day.

बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल बुधवार 29 जुलाई 2024 सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक लुफ्लामा रोड, पेगबे और आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कल सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक सुरीनाम और आसपास के इलाकों में रियांबेल सुरीनाम, मोसलमा तानाकुडी, मोसलमा लाइमुन और NHDC रियांबेल में भी। और गुरुवार 30 जुलाई सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक पोंपोनेत, रियांबेल और मौसलमा ओमनिकेन सैन फेलिक्स में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और अपना से भी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

pretty angel. Oh, my heart's broken. Find her for me.

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum. Game to Mauritius.
3: Namaskar.
4: Shodharandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
5: Ungal anaivarukkum vanakkam.
6: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
7: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर

सादर प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्रोताओ, मैं हूँ दिविना, आपका साथ देने के लिए। आप सुन रहे हैं भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम, और इस पावन संध्या पर आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

कुछ पल अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का समय आ गया है। वैसे जब मन ईश्वर के नाम में डूब जाता है, तब चिंता, भय तथा अशांति स्वतः दूर होने लगते हैं। भक्ति केवल पूजा नहीं श्रोताओ, बल्कि जीवन जीने की सबसे सुंदर कला है। चलिए पहले भजन की ओर।

प्रिय श्रोताओं, जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है वह हर कठिनाई का सामना मुस्कुरा कर करता है। प्रभु कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते।

वापस स्वागत करते हैं आपका रेडियो मॉरिशस पर भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम में। वैसे कहा गया है, मन मंदिर में दीप जलाओ, प्रेम का फूल चढ़ाओ, नाम जपो उस प्रभु का जिसने यह सुंदर जीवन बनाया है। भक्ति हमें विनम्र बनाती है, क्षमा करना सिखाती है तथा हर जीव में ईश्वर का स्वरूप देखने की प्रेरणा देती है।

श्रोताओं, जब भी मन निराश हो आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण कीजिए। हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, परंतु हर सच्ची प्रार्थना सुनी अवश्य जाती है। ईश्वर सही समय पर वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है।

इसी मंगल कामना के साथ कि प्रभु श्री राम, श्री हनुमान तथा शिव जी की कृपा आप तथा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हम लेते हैं आपसे अनुमति, मुस्कुराते रहिए, प्रभु का नाम जपते रहिए तथा जीवन को प्रेम, सेवा तथा करुणा से भर दीजिए। सादर प्रणाम। जय श्री राम। जय हनुमान। हर हर महादेव। बोलो।

रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राहिरो आते गए और कारवां बनता गया। सामईन ज़ीहतिशाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं और आप उर्दू प्रोग्राम महफिल शब समात कर रहे हैं। ये खाकसार नागुद निसार आप तमाम लोगों का समीमे कल्ब से इस्तकबाल करता है। इस मुख्तसर सी नशरियात में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम चंद मुंतखब कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये तवक्को करते हैं कि आप इस महफिल का खूब लुत्फ उठाएंगे। आइए आगाज़ हम इस कलाम से कर रहे हैं, मुलायजा फरमाइए।

सामयिक निकराम, कभी आपने सोचा है कि हम दिन में कितनी मर्तबा सांस लेते हैं और हर सांस रब्बे कदीर की एक ऐसी नेमत है जिसका हम शुक्र भी अदा नहीं कर पाते। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को मामूली समझकर भूल जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि उन्हीं छोटी नेमतों में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतें छुपी होती हैं। बिलयकीन हम सब उस रब के मोहताज हैं जिसने हमें सब कुछ दिया, ख्वा वो सेहत हो, ईमान हो, मोहब्बत करने वाले लोग हों, या वो सुकून जो दिल के किसी गोशे में चुपचाप बसा हुआ है, सब उसी की इनायत हैं।

0: संगतेलो घड़ी मिला लाई बखत रात के ठीक 9 बजे बाद तू सुनता हुआ रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West

0: 8.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius.
4: Bhojpuri, tadka. भोजपुरी तड़का।
5: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
6: रात की 9:06 हुआ था 94.95.6 और 98.2 FM पर यह रेडियो मनोरंजन और रात 19 किलोहर्ट्ज पर रेडियो मॉरिशस यानी कि MBC के दो रेडियो चैनल बा एक वो रेडियो मॉरिशस एक वो रेडियो मनोरंजन तो दोनों चैनल पर चला था तो लोग के पसंदीदा प्रोग्राम हो चुकी तरह का। रात की 9:06 हुआ था आज हम मंगल की रात मंगल 28 जुलाई 2026। आशा करते आज के दिन अच्छी तरह से बीतल हो और आज की रात की शुरुआत अच्छी तरह से हो रात भी अच्छी तरह से बीती। दो घंटा ले तो लोग के साथ देव जा MBC रेडियो की लहरों पे मन कहता को भी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा घुमैया काज जगदेव विद जहोविद सैंक। आज टिकटॉक पर प्रसारण नहीं चली ठीक बात काज जगदेव विद जहोविद सैंक पर टेलीफोन ही करिया। और बेशक जब हमने ऐसा तड़का लगाए तो धमाली धमाल रहा मस्ती प्रोग्राम में केवल गीत नहीं सुनबा ढेर माना अच्छी तरह से माउंटअप सर ढेर कुछ बॉलीवुड न्यूज़ खाना खजाना आजकल दुनिया में कौन ची हुआ था कहानी कविता ढेर कुछ आने लगा बहुत कुछ आने लगा तो लोग खातिर तो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी होला शिक्षा म्यूजिक मनोरंजन नवजय प्रताप सिंह के साथ अभी से लेकर रात के 11 बजे ले काज जगदेव विद सांग पढ़ते फोन करिए अपन पसंद जा भोजपुरी गीत मांगिए जा गीतवा जब बीच में चला था बीच में सुने नहीं करिया गीतवा के बजे दिया जब गीतवा रही तैमिन के वो सांग जी सेगुन तब सुने करिए कह के ढेर कोई गीत सुने लन सा तो आप खुशिया करें लन सा तो गीतवा नहीं सकब सा बीच में काट के फोन ले ठीक बा तो सकब जा जैसे गीतवा तब टेमिनल की रही गो 5-10 सेकंड में तथे रिपनी करिया का जगह दे विद जगह विद सांग ये बहल का नाम सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के श्रोताओं के नाम मोरिसवा चलाइक साथ सुने

सच्चे के मोरिसवा हमनी के ऐसा नहीं को प्यारा सन देश है जहाँ पर 365 दिन हर प्रकार के सब्जी हमनी के मार्केट में मिलेगा। जब भी तू बाजार जेबा कोनो भी सब्जी खोजबा तो तोरा मिलेगा भरपूर और वेजिटेरियन तो बड़ी खुशी रहेगा कहे कि सब प्रकार की सब्जी बा। जब सब्जी की बात कही से तो एगो है सरसों यानी कि मुटौद। सरसों जो है वो बहुत ही उपयोगी और पौष्टिक सफल है। एक साग सरसों के साग उकर बिया कर सब चीज सरसों के इस्तेमाल होला। और सरसों जो है को भोजन कृषि आयुर्वेद और सब में प्रयोग होला। सरसों के बीज के उपयोग दाल सब्जी अचार और चटनी में भी डराला। तड़का लगाए के सरसों के तेल भी इस्तेमाल कही रह सर देवी मुताद बही रह ना। तो सरसों के तेल अच्छा है। फिर सरसों के कर पत्ता के अचार बने रहा और सरसों के पाउडर्स फिर सरसों के ड्रेसिंग मसाला में भी उपयोग होला। और सरसों के तेल शरीर में जब सरसों के तेल से मालिश करवा अपन शरीर के तब तो शरीर स्वस्थ रहेगा। सर्दी में खासकर तेल मालिश करवा सरसों से तो जितना तो लहर दहर बा तो शरीर में सब दूर हो जाए। और आयुर्वेद में सरसों के उपयोग होला डाइजेशन खातिर अच्छा है। डिजेशन खातिर मतलब फिर कोई जब खा रहा तो खाए की मन से नहीं पच रहा तो सरसों के तेल का प्रयोग करवा तो अच्छा है। और कृषि के प्रयोग में भी सरसों को प्रमुख तिलहन फसल है जिसमें खाद्य तेल प्राप्त होला। और कर तेल जब निकाल देवा तो सब इस्तेमाल करी। तो सरसों जो है ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है।

और बेशक सकबा जाकर इस्तेमाल करें और दुनिया भर में सरसों के प्रयोग होला। और तो सबने बोली सके गो अत्यंत महत्वपूर्ण सफल सरसों एकर उपयोग भोजन स्वास्थ्य कृषि उद्योग पशुपालन सांस्कृतिक परंपरा में भी होला। तो बेशक जब जाइबा बुटीक तो सरसों ज़रूर खरीदिया, सरसों के तेल के उपयोग करिया तो स्वास्थ्य एकदम अच्छा रही। अभी जैसे ठंडा ठंडा करता है सरसों के तेल के अगर मालिश करबा गोर हाथ मिसबा तो अच्छा है, ये तो हर गोर हाथ के सॉलिड बनाई। रात के 9:16 अगला गीत राधा के सो भेरा है गीत तो हमने चाहते इस खास हम खास वेद जी के नाम वेद हवन लाफलोवा से उकर पत्नी उकर पहुँच को बेटा और सब उकर परिवार के नाम ऋतु परिवार को तो से अवन हेलो जी नमस्ते। फिर प्रभा प्रभावती लोल चाची चाची प्रभावती लोल नोबेल फोन सेवन चाचा आत्मा राम और अग्गी चली चाची लोल प्रभावती लोल के ओकर बेटा पतु बेटी दामाद सब चीज़ों फोन सब लोल परिवार के नाम जो रहे नोबेल फोन्स है गी चली रीता के ओर से ओकर दुगो बहन अमृता और रेणुका खातिर साथ में है गी चली साइलेंट के ओर से ओकर पत्नी रानी और बेटी परी के नाम। चलक सा सुने गीतवा राधा के सोभेरा।

रात के 9:21 होता और तू सुना तो MBC रेडियो से प्रोग्राम बहुत हुई तरका और चलते चलते सुनाई विज्ञप्ति श्रीमद भागवत कथा सत्संग के आयोजन हुआ था श्री जागृति कालीमाई मंदिर मोहताबा एसोसिएशन द्वारा और इन कोलाब्रेशन विद द महाशिवरात्रि कंवर ग्रुप ऑफ मोहताबा। एक आयोजन होलबा बुधवार 5 अगस्त से दिमास 9 अगस्त ये मोहताबा में चली और एक कथावाचक हवन आचार्य शास्त्री महेश जोशी जी। रोजाना कार्यक्रम ही प्रकाश रही शाम के 6 बजे से 6:00 ही कीर्तन, 6:30 से 7 बजे पूजा और रात के 7 बजे से रात के 8:00 आधा कथा आरती और महाप्रसाद। और दिमास 9 अगस्त के दिन के 9 बजे से 9:30 कीर्तन, 9:30 से 12 बजे महापूजा कथा महायज्ञ पूर्ण होती महाआरती पंचामृत और महाप्रसाद। जनता आमंत्रित बा, सब कोई आमंत्रित बा, परिवार संगतिया लैका सब कोई अय्या जाई पूजा में भाग ले। तो याद रखिया बुधवार 5 अगस्त से रविवार 9 अगस्त, बुधवार 5 अगस्त से दिमास 9 अगस्त ले मोहताबा के श्री जागृति काली माई मंदिर में पूजा हुई और भागवत श्रीमद् भागवत कथा सत्संग ये पूजा के प्रस्तुत करियन व्यास वाचक शास्त्री महेश जोशी जी। और यहाँ पर ही भोजपुरी तरकार प्रोग्राम में एक से एक जोड़ी भोजपुरी गीत छरावती स और भी शकाशा करते हैं कि तो लोग के गीत पसंद आए जो तो लोग के पसंदीदा गीत थे छरावती स। और अगला गीत चली बहुत ही प्यारा सन गाना है चमेली चमेली स्वीतानंद को गीत गई वन है गीत छरावती स अमृता गणेश के नाम आप होन पीतों से सब गणेश परिवार खातिर गीतवा चली खास हम खास सोनिया परी मीनाक्षी विशन बेटा विशन बहु मीनाक्षी सोनिया परी और सब गणेश परिवार के नाम। और हे गीत हमें चरावती सब सब संगत आलोका थे जिन कोशिश कर रहा था लाइन नाम ही रहता था गीत तोहरों नाम का है कि एक नंबर बा बारी बारी से तो लोग के फ़ोन कॉल्स लेवा थे जा ठीक बा। तो चलिए सुनब जा चमेली चमेली सुनता नंबर गावल है गीत।

जी हाँ, थोड़ा जहाँ भी मन करी घूमे के ज़रूर घूमे जाइए, काहे के ऐसी जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं बा, चूल्हा के ठिकान नहीं बा है। और आजकल एकालो कौंजे में बा, प्रोफेशनल कौंजे में बा, तो बेशक सकबजा सिनेमा जाए, आजकल अच्छा अच्छा फिल्म आवाता, कॉमेडी से भरपूर मूवी आवाता। आज के स्ट्रेसफुल दुनिया में कॉमेडी और हंसी मजाक से फिल्म आवाता। और आजकल धमाल चार, धमाल फो मूवी चलता हमने की बड़ा पर्दा पर, फिर वेलकम टू द जंगल और अल्फा फिल्म भी खेला था। और धमाल चार जो है साल 2026 के एगो हिंदी कॉमेडी एडवेंचर मूवी है। एक डायरेक्टर है इंद्र कुमार, और ये जो है लोकप्रिय धमाल श्रृंखला की चौथी कड़ी है। और ये फिल्म के कलाकार, फिल्म कलाकार हवन अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा और ईशा गुप्ता। और फिल्म की विशेषता यह है कि भरपूर कॉमेडी मूवी है। शुरुआत से लेकर अंत ले तू पेट पकड़ के खाली हंसब। पारिवारिक मनोरंजन बा, शानदार लोकेशन और एक्शन, पुराने और नए कलाकार के मनोरंजन, तेज अवतार कहानी और हास्य संवाद। तो कहानी हम थोड़ा नहीं बताओ, पुराने जब देखे सस्पेंस कथा जाके देखिए फिल्म। और बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म है ये 18 दिन में 210 करोड़ रुपया के प्रॉफिट कर लगभग

और माना जाता है कि साल 2026 के ये सबसे बड़ा मूवी रही जो इतना प्रॉफिट करा था। तो हम और देता ही नहीं देवअप मौका मिली तो जइए देखे धमाल चार। और जो धमाल चार है कर में अच्छा अच्छा गीत भी बा और अच्छी तरह से ये फिल्म के बनावल गल बा। और जैसे हम बोली कि आज की दुनिया में कॉमेडी के फिल्म जो है ढेर कोई पसंद करे क्या है कि खुशी रहने से स्ट्रेस दूर भगाए के हों कि नहीं। तो ज़रूर देखे जाइए मौका मिली तो परिवार के साथ सकल जरा फिल्म देखे बहुत ही अच्छा फिल्म है धमाल चार। और कर में एगो गीत बा थोड़ा सुन भोजपुरी और हिंदी के मिश्रण बा कर में कैसे बनी कैसे बनी फुल्ला और बिना चटनी कैसे बनी। चलिए फिल्म की वो गीत सुन अब सर चटनी चटनियाँ कैसे बनी। और है गीत खासम खास शरवत ऐसा रतन निहाल के नाम गौबे सेवन कर पत्नी करुणा पापा विजय और सब निहाल परिवार के लिए है गीत। चली संजय बिहारी की अवसर कर पत्नी सुरेखा बेटा कुशल बहू बेटी दामाद और सब बिहारी परिवार के नाम। और गुरुदेव माना राज मन्ना और सब मन्ना परिवार लोंग चिबुक राजा प्रवीण भैरव नानो संजीव श्याम मंगल सत्यम सनु और सब परिवार जो हमने सुना था बहुत बहुत प्यार के साथ है गीतलों के नाम भी। और है गीत चरावती सतोबा SSS कॉलेज के सब अध्यापक वहाँ के स्टूडेंट्स रेक्टर और नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम भी है गीत धमाल चार के ई हंसी मजाक से भरा गीत।

हाई कौन कहते मुर्गा है कि मुर्गी बिना मकई नहीं खाला। हम तो देखी रहा मुर्गा लोग के खाए के लिए बता लोग तो हाली से खा ले बोले सर। और आगे के ज़माना में सब कोई मुर्गा मुर्गी पोसत है, सब कोई लगे पुलाई रहल। अभी से 25-30 साल पहले की बात बजे में छोटा छोटा रही सर, तो हर घर के आंगन में

पुराई रहे कमे मुर्गी पोसातल और मुर्गी रोज के अंडा देवे जिसे ओजिने हाँ जो पूरे से पूल थैने बुझ रहा सर कि जोली में जो मुर्गी जो है ओजिने मुर्गी तो ओकर अंडा बनने से जस्सी स्वादिष्ट रहेगा। और आगे मुर्गी जब अंडा देवा था तो अंडा में बैठे ब मुर्गिया के तो मुर्गी का वो देख ब 10 को 15 को बच्चा लेके आवा था। रात की 9:40 हुआ था हमने के साथ देवा था बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत हमारे तो फिलोसॉफी यह है कि जो तुम्हारा गंती नहीं बोला तू भी होकर गंती लिया दोनों हाथ बजेरा। अब कोनो कोनो व्यक्ति तोरा से तोरा चाहेला तोरा अपन माने शायद खून के रिश्ता नहीं है पर तोरा अपन मानेला तोहर टेलीफोनी करेला तोहर नुवेल पूछेला तोरा साथ देवेला तो वो परिवार से बड़ा है। आजकल परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ नहीं जितना एक एतौजे होते हुए भी अगर कर दिल में तोहर खातिर सोचिमा बा तोहरा सोचेला तो बहुत बड़ी बात है हाँ कि नहीं। तो ऐसे लोगन के कबू नहीं भूल जो इन परिवार ना होते हुए भी तो हर परिवार के सदस्य बन गए हवन सा। रात की 9:40 तब अंजू के साथ सुनब जा गोजरी गीत जिंदगी बा। आशा जानू कोते से हवन है गीत तोहर नाम और सब परिवार के नाम। संगीता मिरन लाहौजा से हवन जा। इंदिरा लौटन है गीत तोहरों खातिर इंदिरा मेबर्ग से। शोभा काटरबोन से शोभा वाकवा से। रेहाना और नथुदाम वो भी उनके साथ देवत हवन। और हे गीत सब भोजपुरी प्रेमी के नाम सब भोजपुरी लवर्स के नाम जिंदगी बा।

0: continuous music. RM3.
1: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius.
2: रही संगत लोग टेलीफोनिक कर गए, किसी से पूछा था कि वन डे आज के क्लोजिंग डेट फिनी हो गल कि नहीं। हाँ जी, कल क्लोजिंग डेट रहा दिमाग के 26 जुलाई के क्लोजिंग डेट रहा और क्लोजिंग डेट फिनी हो गल। तो अब वीडियो नहीं विदा करिए, कहे कि वीडियो विदा करे के जो तारीख रहा वो फिनी हो गल बा। बहुत बहुत धन्यवाद जितना संगत लोग वीडियो करके विदा कर रहे हैं सा। और बहुत जल्द अगर से लिखते हुए बात बनबा वन डे आज MBC रेडियो पर रात के 9:50 होता है। और संगत्या लोग बीच में तो भोजपुरी दल का प्रोग्राम रात के 11 बजे मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के नंबर वन घुमैया का जगह दे विद जाओ विद सैंक पर। और अब हमने तो के सुनाब जाएगा कहानी। जी हाँ, जो कहानी है ये मॉरिशस पर है और ये कहानी के लेखक है बेन ऑरेली सैपिया है। वो लिखले हमने गो ओमो जिसका नाम है पॉली वर्जिनी। तो पॉली वर्जिनी फ्रांसीसी लेखक जाक ऑनरी बेनारे दे सैन पियर द्वारा 1788 में लिखा गया रहल ये प्रेम कथा। और एक पृष्ठभूमि मॉरिशस में रहल, वो बखत मॉरिशस के इल दे फ्रांस बोल जाता है। तो कहानी इस प्रकार से है, मॉरिशस द्वीप पर दो महिला अपन अपन लड़का के साथ रहता से एगो लड़का के छोकरा के नाम रल पोल और दूसरा छोकरिया के नाम रल वर्जिनी। दोनों परिवार गरीब रहन से लेकिन प्रेम सादगी और ईमानदारी से जीवन ले जाता से। पोल और वर्जिनी साथ साथ बड़ा होलन से जंगल पहाड़ और समुद्र तट पर खेलत रहन से। दोनों एक दूसरे की सहायता करते सर, प्रकृति से गहरा प्रेम रखते रहन से। धीरे धीरे ओकर में दोस्ती होल और जब बड़ा होलन से दोस्ती प्यार में बदल गल। एक दिन वर्जिनी के धनी रिश्तेदार ओके अपन संपत्ति के उत्तराधिकारी बनैलक और फ्रांस बुलैलन जा। वर्जिनी नहीं जाए खुजत हल, पर पोल और ओकर माँ जो है कहे के पोल और ओकर माँ से बहुत प्रेम करत हल, वही खातिर नहीं खोजल लाफ्रांस जाए के। फिर भी परिस्थिति के कारण ओके परल फ्रांस जाए के। जब वर्जिनी गल लाफ्रांस, वर्जिनी के जाने के बाद पोल बहुत दुखी होल। दोनों एक दूसरे के याद करते हल। कुछ वर्ष बाद वर्जिनी मॉरिशस लौटल, लौटे के निर्णय लेलक। और कहानी की दुखद अंत, जब वर्जिनी जहाज मॉरिशस जब वर्जिनी का जहाज मॉरिशस के तट के पास आवतल तभी भीषण तूफान आल। जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गल। लोग वर्जिनी से समुद्र में कूद के बचने के आग्रह करन से लेकिन वो अपन भारी वस्त्र उतारे से इनकार करलक। अंततः समुद्र में वर्जिनी डूब गल। पोल अपन प्रिय वर्जिनी की मृत्यु के गहरा मृत्यु से ओके गहरा चोट पहुँचल। कुछ समय बाद शोक और दुख के कारण पोल भी मर गईलन। कहानी के संदेश, सच्चा प्रेम धन से अधिक मूल्यवान रहेला। प्रकृति के साथ सरल जीवन सुखद हो रहेला। लालच और सामाजिक प्रतिष्ठा कभी कभी जीवन में दुख के कारण है। भाग्य और प्रकृति की शक्ति के सामने मनुष्य कुछ भी नहीं सकेला करे। और पॉली वर्जिनी विश्व साहित्य की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथाओं में से एक है। ये प्रेम त्याग प्रकृति और मानवीय संवेदना के मार्मिक कहानी है। मॉरिशस में ये उपन्यास आज भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जला और ढेर लेकर लोग आई कहानी के अध्ययन भी करेलन सब। पॉल ए वर्जिनी

पॉली वेजनी अगर थोड़ा मौका मिलता है उपन्यास पढ़िए कि लिखले वन बेन ऑर्डर सैम्प ये ऑनलाइन भी बा इंटरनेट पर गूगल पर तापी कर पॉली वेजनी पा बेन ऑर्डर सैम्प ये तो थोड़ा मिली उगर अनुवाद भी बा हिंदी में सक बच्चा पढ़े ठीक बा अभी कहती सुनब जा एगो प्यारा सन गाना आव आव डी बाबा और है गीतवा चलावत इस भाई बिहारी के नाम सब बिहारी परिवार के लिए जन रहेलन जा थ्रियोले चाची ललिता कुशल बिहवन ककतिया परिवार थ्रियोले से जिराकन परिवार और महाराणा प्रताप लेन थ्रियोले थ्रोब्रिज के सब हरकू परिवार के नाम है गीत जाता इंदिरा चिंतराम जी हवन माता जी है गीत हो रोका तीर्थोहर सब परिवार के नाम आव आव डी बाबा

संगत लोग, हमने के जीवन में पूजा पाठ के बहुत ही महत्व बा। हमने के हिंदू धर्म संस्कृति में बोलल गल बा कि पूजा पाठ सबसे पहले फजर के जब नींद से जागब सा तो स्नान करके नहा धोवा के हमनी सबसे पहले भगवान के पूजा पाठ करेला सा। तो दू प्रकार के पूजा, एगो निर्गुण और एगो सगुण। निर्गुण मतलब भगवान बिना रूप के छके ओम बोला सा, और भगवान जौन रूप के है तो के देवता देवी में हमनी पूजा करेला सा, जैसे शिव बा, गणेश बा, हनुमान बा। तो में से एगो देवता हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी। हाँ,

और पवन पुत्र हनुमान बहुत शक्तिशाली भगवान हवन और हनुमान जी जो है हिंदू धर्म के सबसे पूजने देवता हवन ओके बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान मारुति अंजनेय महावीर और अनेक नाम से बुलावल जाला भगवान श्री राम के परम भक्त हवन और अद्वितीय बल बा वो बुद्धि के दाता हवन साथ में रामायण महाभारत में भी उकर भूमिका रलन हनुमान जी की माता के नाम है अंजना और पिता के नाम है केसरी और पवन देव जुन है उकर पिता भी रलन इसीलिए उनके पवन पुत्र हनुमान भी बोलल जाला और बचपन में हनुमान जी सूर्य भगवान के निकल ले रहल सोचते रहे गो फल है वो खा लेलक तो दुनिया अंधार में भर गल बाद में देवता देवी लोग पूजा करक हनुमान से बोलक कि सूर्य भगवान के छोड़ दे के तब मुँह खोलक तो सूर्य भगवान आल बाहर और भगवान श्री राम के परम भक्त रहल हनुमान जी और सीता माँ की खोज में खूब मदद करलन और बल और शक्ति के स्वामी हवन हनुमान जी असीम बल व पराक्रम हवन गहरी भक्ति और निष्ठा बुद्धिमता और विवेक के चिन्ह हवन हनुमान जी और हनुमान की पूजा मंगल के और सामदी की भी होला त जब हनुमान की बात करते इस आजकल हनुमान कथा हुआ था जी हाँ रिवियरिजोंग SSS कॉलेज के बगल में एगो बहुत बड़ा पंडाल बनल बा वहाँ पर ही हनुमान कथा के आयोजन कर गल बा सामदी 25 जुलाई से शुरू हो बा और ये बिफे 30 जुलाई ले चली और ये हनुमान कथा के व्यास वाचक वन श्री सूरज बिहारी जी जनता आमंत्रित बा तब मौका मिली तो जरूर जाइए जा रोज रात की पूजा होला वहाँ पर ही रात के 7:30 बजे से रात के 11 बजे रही और जब हनुमान जी की बात करते हैं तो हनुमान जी इनके शक्ति देवेला बल देवेला तो जितना संगतिया लोग दुख में हवन से इस समय अस्पताल में क्लिनिक में या कोनो संकट बात और जीवन में कोनो प्रॉब्लम में हुआ तो हनुमान जी से प्रार्थना करब सर कि तोहर संकट सब दूर हो और तोहरा तोहर जीवन में उजाला ही उजाला हो जय श्री राम जय हनुमान।

संदेह दिखारी सुन ली जय प्रभु हरज हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर दौरी महा सुख दी जय जय से कूदी सिंधु मही पारा सुर सबदन बैठी विस्तार आगे जाय

जय सुत सागर सुर समो समरस हरनागर ओम हनु हनु हनुमंत अठीरे कैरी मारु पर्ष की कीरे गदा बच्छ लै मैं मारु मारु

माई तुम्हारे बल हम तरफत नाही माई करो कर जोरी बनाओ ये अवसर अब कहीं तो पुराओ जय कुमार बलवंता शंकर सुबल वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल थालक काम सहाय सदा प्रतिपालक

पाठ करे बजरंग बाण की, अनुमति रक्ष करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो चापे, राधे भूत प्रेत सब कापे। रूप दे हर जगे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, ताके तन नहीं रहे।

0: का। भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: कमर धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: ये वक्त हम के लाइव प्रसारण चलता है एमबीसी के स्टूडियो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन से। रात के 10:11 और 16 सेकेंड्स हुआ था। संगत या लोग जहाँ से भी हमने की सुना तो बहुत बहुत धन्यवाद। या तो लोग के पसंद या प्रोग्राम बहुत हुई तड़का रात के 11 बजे नहीं प्रोग्राम रोज के चलेला लेंदी से लेके दिमाग से हमने यानी सब मंगल के और बुध के और आज है मंगल की रात। वेंचुइट जुएट ये महीना भी समाप्त हुआ था। वेंचुइट बैठने थॉट बिफे के फिर समझी ली फोमिये उत में जलाप सा है और संगतिया लोग हमने तो बस ये मानी जा सकी सब कोई के चेहरा आराम से बन जीवन ले जाए के कोई के इधर उधर की बात नहीं बतियाए के है जो पलाभ है जो चुगली है इधर उधर की बात ये सबसे बड़ा पाप है। हम आज नहीं समझ लें काहे लोगन इधर उधर की बात बतियालन सर। खासकर हम देख लें बड़ा लोग में वृद्ध जन में हम नहीं बोलते सब कोई पर देख लें सकी ढेर चाची नानी लोग इतना पूजा पाठ में जा रहा सब पंडित इतना बतियाला फिर भी काजनी काहे इधर की बात उधर उधर की बात इधर और ये सब छोटा छोटा बात जो है बहुत महाभारत बन जाला घर में कब वो ये सब छोटा छोटा बात से महाभारत हो जाला परिवार टूट जाला बिखर जाला तो कबो कबो बड़ा आदमी लोग भी अंतो रहेला। हम नहीं बोलते सबको ऐसी बात पर हम देख ले आए बहुत परिवार में ऐसे बड़ा जन लोग अब का जन के लिए सब ये उसे होगल बा कि कौन चाहिए पर नहीं अच्छा है जब बात तू नहीं गुजाफे नहीं देख ला अपन नौक से बन कान से नहीं सुन ला तब बतवा के उठा उड़ा पड़ा चढ़ा के नहीं बतियाई के कब कब एगो सास सकी दुगो पत्तों के बीच में झगड़ा डाल दी। हाँ ऐसे भी होला कब दुगो ननद में या बेटा बहू में झगड़ा हो जाला सास के कारण तो ये सब नहीं चाहेला। भगवान की पूजा पाठ करेला योग साधना करेला तो भगवान की जब पूजा पाठ कर शिवरा जाएला सर सत्संग में तो महाराज कौन ची महाराज का बोलेला महाराज बोलेला कि जब पूजा पाठ करते सर अच्छा जीवन जाते सर तो कोई के इधर उधर के बात नहीं चाहला सुने के न चाहला बोले के हाई अपन मुँह में कंट्रोल रखब सर तो हमने के मोक्ष में नहीं पर मुँह में कंट्रोल नहीं रखब सर तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। चल अगला गीत सुनम जय डोले डोले डोले रे मना डोले डोले डोले रे मना नन्नोल जी हमन बाकवा सा गीत तोहर खातिर है गीत चलावत इस रंभा जी हवन स्विट्जरलैंड से कर कर तीन गो लैका कर घरोला और मॉरिशस में सब जानकी परिवार के नाम जो गुडलैंड्स और अजय और पूनम चंद्राम ऑस्ट्रेलिया में हवन बाल गोपाल भाई चंदन भौजी प्रिया दीदी सलोनी और सब चिंताराम परिवार के नाम है कि चली दीपा तिवारी दुखित जो रहेलन कनाडा में उकर पति केविन बेटा और सब दुखित परिवार के नाम और यहाँ साइजिंग रोड निग्रोव में उकर परिवार रहेलन सब तिवारी परिवार फिर है गीत तीना की ओर से उकर घरोला रोशन ये बुधना परिवार रहेलन द वेल है गीत तो लोग के नाम भी डोले डोले डोले रे मना रविराज बिचुक भी उनके साथ देवतवन है गीत तोहर पत्नी तोहर बेटा तोहर माता जी और सब बिचुक परिवार के नाम लाल माटी से अमृता डुंगूर है गीत तोहर खातिर तोहर बेटा अभिषेक खातिर भी बहुत बहुत प्यार के साथ और लाविनिया से पियासे आप ही सुन के साथ देवतवन है गीत थोड़ो नाम भाई अबू सलाम वालेकुम कई सेवा समाचार भाई अबू अन बाकवा से है गीत तोहर घरोली तोहर लड़का और सब अबू के परिवार के नाम और इब्राहिम ओन पोर्टवी से मैं जबीन प्लान व्याज से रोजिदा हाईलैंड से और जितना कोई बिन किस्नता रेडियो पर है गीत खासम खास तो लोग खातिर या खुजे तो प्रोग्राम सुने के ऑनलाइन तो बेशक क्लिक करिए गूगल और तापे करिए www.mbcradio.tv फिर दलिया लिसन रेडियो मॉरिशस या रेडियो मनोरंजन डिजिटल स्टीरियो साउंड पर सब हमने की सुने और जितना कोई अभी हमने की सुना था बहुत प्यार से बदन से प्रताप जी आज के प्रोग्राम एकदम चकाचक बात देर कुछ मिला था सीखे के

सुने के भी तो चलाई गई तो लोग खातिर। और जैसे कोई नाइट शिफ्ट में काम करता बहुत को आज बढ़ते ही सभी फजीले काम कर बजा जैसे बेकरी बा अस्पताल बा क्लिनिक बा सिक्योरिटी सर्विसेज बा मेट्रो स्टेशन वाकवा वहाँ पर ही काम होता है वहाँ तो वैनकाट टू वैनकाट काम होला सेट और पुलिस विभाग बा SMF SSU सब विभाग जो काम करता है जितना कर्मचारी लोग हमने सुना था सब काम करवा लो के नाम है गीत डोले डोले डोले रे मना डोले डोले डोले रे मना।

डोले डोले डोले रे मना, डोले डोले डोले रे मना। आजकल ढेर मना बीमारी खातिर बोला कहे कि ढेर कोई की अच्छा नींद नहीं लगेला वो खातिर तो नींद ढेर कारण से नहीं आवेला। अगर स्ट्रेस हो तो वह स्ट्रेस में हो, कोनो बात के लेके तू परेशान हो तो बेशक तोरा नींद नहीं लगी। तो नींद जो है बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, चाहे लड़का हो या बड़ा आदमी हो, नींद बहुत ज़रूरी है। और शरीर के जैसे

भोजन, पानी और व्यायाम चेहरा, वैसे ही पर्याप्त नींद भी चेहरा शरीर की। नींद के दौरान शरीर और मस्तिष्क दोनों मरम्मत होला, शरीर और मन के, और जिससे हमनी के जुनह तरोताज़ा और ऊर्जा मिलेला। और नींद के समय शरीर की थकान दूर होला, हमनी की मांसपेशी और जुनह हमनी के ऑर्गान्स के जुन मरम्मत होला, वो नींद के समय होला और ऊर्जा के संचार होला। अच्छी नींद से याददाश्त, एकाग्रता और सोचने समझने की जो क्षमता रहे बढ़ेला। और विद्यार्थी यदि अच्छी नींद ले तो कर पढ़ाई लिखाई में अच्छा रही। और पर्याप्त नींद शरीर के प्रतिरक्षा हमने की इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग बनावेला, तो चेहरा गुस्सी जैतों से तैतों रोज के सुते के। और अच्छा नींद तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन से हमने की दूर रखेला, हमने की मन शांत रहेला। और अच्छा नींद खातिर योग साधना करिए, मेडिटेशन करिए, एगो आधा घंटा या एक घंटा कोनो भी नाम लेके, जो तोरा अच्छा लगे कोनो भी भगवान के नाम लेके तू मेडिटा ओंक बन करके सकबा ओम बोले जाए, तई थोड़ा नींद लगाए। और हृदय के लिए हम की जो लेके है हमने की हॉर्ट बीट खातिर नींद बहुत अच्छा है। और बच्चा, बच्चे लोग और किशोर में वो लोग के शारीरिक जो है विकास होला, एडोलेसेंट लोग जो एडल्टहुड में अभी भी हैं तो जयंस है, वो लोग के ऑर्गान सब निमन से डेवलपे होला, तो नींद जो है बहुत ज़रूरी है। और जे कि अच्छा नींद रहेला वो जीवन में हमेशा हंसमुख रहेला, काम अच्छा से करेला और जीवन में आगे बढ़ेला। पर जे कोई के नींद नहीं लगेला तू देखब हमेशा आलस्य में रहेला, ओके पागस पागस लगी। और अच्छा नींद खातिर समय, एगो समय छा रखे के सुते के, एगो समय चाहला उठे के। सोने से पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब बंद कर दिया, जो ना सामने है तो के बेडरूम में सुता था तो वहाँ चेहरा सब कुछ तय, न पोताब, न टेलीविजन, न लैपटॉप, सब तय करके। और रात में जो है सुते से पहले हल्का भोजन करिए ताकि रात के सुबह नीमन से सोते। नियमित व्यायाम करिए और जब व्यायाम करबा रोज के तो थोड़ा अच्छा नींद लगी। और है जो नींद है बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि बोली कि 7 से 9 घंटा तक रोज के चेहरा हमने के सुते के, है जो नींद है हमने के शरीर के जो है वो आराम पहुँचावेला। अगर तुहरा रोज के 7 या 9 घंटा अगर तू नहीं सुता था तो हर प्रकार के कॉम्प्लिकेशन, फजर के उठबाते बोल बा कपाल दुखाता, गोड़ दुखाता, हाथ दुखाता है, तो थोड़ा नहीं मन करी काम करे जाए कि तो सब होला है पागस लगी। तो यही खातिर बोला सर कि रोज के चेहरा 7 या 8 घंटा, 7 से 9 घंटा ले सुते के अच्छा नींद लगी तो स्वास्थ्य अच्छा रही। अगला गीत है लाली लाली कान पलाते मीराई में मकई। शास्त्री बनवाली जी उनके साथ देवतन बहुत बहुत धन्यवाद, जमन के साथ दही खाती रही। तो गीत चली तोहर बेटा विवेक, तोहर बेटी दामाद, तोहर पत्नी, तोहर सब बनवाली परिवार के नाम है। गीत चली प्रतिमा तीना दीना केत ओसाई रुसाल अपाया सजू धर्म गंगू केत और वीरा पंच के नाम। और है ये जो गीत है हमने चावत ईसा वो सब संगत आलो के नाम जो भोजपुरी में गीत गावेलन सा, भोजपुरी में गीत लिखेलन सा और भोजपुरी के जो है प्रचार प्रसार में लगल रहेलन सा। और हमने के जो भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन बा को डायरेक्टर और जितना कोई भोजपुरी की भाषा के प्रचार प्रसार जैसे गायक लोग बा, गीतकार लोग बा, एक खिबैन लोग बा भोजपुरी में लिखी रासा गाय रासा, तो सब जितना कोई भोजपुरी से जुड़ल हवन जा और भोजपुरी के प्रचार प्रसार में लगल हवन सा है गीत है तुलों के नाम लाली लाली कान पलाते मिराई में मकई। अब लाली लाली में कान कहे पहुँता था, मिराई में कौन सी पहुँता था, चल एक साथ सुनब जा। और गीत चलावती सा विदेश से जितना लोग मॉरिशस में आलवन से कॉन्ट्रैक्ट में या काम करे, जैसे नेपाली हवन जा, बांग्लादेशी और मलागासी लोग, तो सबको कहते रहे गीत, चल एक साथ सुने फिर मैंने लागो के आवाज़ में गीत। एल्बम के नाम है सुगा मैना, गीत की बह लाली लाली कान बलौते। टेलीफोनिक नंबर जाने जाना काट जगह दे विद जगह विद साइन, काट जगह दे विद जगह विद साइन पर।

तोरा हम देख के दीवाना हो गई थी रात के 10:45 तक। और तू सुना तो रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन, रेडियो मनोरंजन 94.6 98.2 FM पर और रेडियो मॉरिशस 719 के लिहाज पर। हमने की देश को बहु जातीय देश, सब जाति के चुनह, बहु सब संस्कृति और धर्म के हमने फॉलो करी रहा सा। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, क्रिश्चियन हो, सबको एक साथ मिल के हमने जी रहा सा और हाथों में हाथ डाल के ये देश वाके आगे बढ़ाई रहा सा। तो इसी यही आशा करा, यही दुआ करते कि जैसे हमने सब परिवार लिखा जी रहा सा, एगो चिल्ली लहा मॉरिशस छोटा सा टापू हिंद महासागर में, तो इनके देश में जो अमन है, जो शांति है, वो कायम रही और हमने सबको हाथों में हाथ डाल के आगे बढ़ते रह सा, ये देश वाके सुंदर बनाओ अब जा। और अगला गीत हाथों में हाथ गीत वा गई हवन बिस्वानी दीप पुआत है। गीत संजय हरिचंद तो हर पत्नी संध्या तो और बेटी विष्का और सब परिवार के नाम, कुणाल ही लाल गीत और सब परिवार के नाम, पूर्णिमा फकीरा है गीत तो और खातिर है गीत हमें चलावत ई सब परिवार के नाम जो हमने के साथ जुड़ल हो अन्न रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। ये होन हरिलाल दीनू है गीत तो और खातिर तोहर पत्नी तोहर लड़का तोहर सब परिवार के नाम, सब दिनों परिवार के नाम, रवि दिनों ये गीत और खातिर चलावती सब बहुत बहुत प्यार के साथ। और है ये गीत चली इंद्रानी और सुरेश माता बदल के नाम, ओकर बेटी हवन रिश्मा और प्रीति और सब माता बदल परिवार रोजबेल से बहुत बहुत प्यार के साथ। और है गीत हमने चलावती सा विक्रम की ओर से कर पत्नी कर तीन गो बेटा और सब परिवार के लिए। और जितना स्टूडेंट्स और अध्यापक लोग हमने की सुना था ये वक़्त रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर है गीत तो लोग के नाम। और जितना कोई के नींद नहीं लगता, कोई इधर करवट बदलता, कोई उधर करवट बदलता, तो गीत थोड़ो नाम हाथों में हाथ।

मन तो नहीं करता जाए कि पर काकर अब समय की तकाजा समय बोला था कि प्रोग्राम अंत करे के समय चला बा और तीन मिनट में रात की 11 बज जाए। 11 बजे भोजपुरी का प्रोग्राम समाप्त हो जाए। अगला कार्यक्रम शुरू हो सुनहरे पल और बेशक ये प्रोग्राम चलिए रात के 11 से 12 बजे के बीच और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे सुन बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तलों की मुलाकात यहीं तक रहा। रात के 9 बजे से अभी हमने के साथ दिला जा तो लोग एस एम एस और फोन कॉल खाते शुक्रिया। हमने की तलों की मुलाकात हुई कल बुधवार की रात के ही समय रात के 9 बजे से 11 बजे ले और एम फ्री रेडियो मनोरंजन और ए एम टू रेडियो मॉरिशस पर। प्रोग्राम रही भोजपुरी तड़का तो कल रात तक हमने की इजाजत दा और जय प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुरुआती लव यू ऑल बाय बाय स्वीट ड्रीम्स।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

रात्रि के 11 बज रहे हैं श्रोताओं, स्वीकार करें नीतुषा का करजोड़ प्रणाम। इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं और रात्रि के 12 बजे तक एक ऐसे कलाकार के बारे में हम बात करेंगे सुनहरे पल कार्यक्रम में, और वे थे विनोद मेहरा। एक ऐसा नाम जिसे बॉलीवुड के दिल से कभी मिटाया नहीं जा सकता है। तो आइए पहला गाना आप सबके नाम, फिर उनके करियर, उनके लाइफ के बारे में बताते चलेंगे।

विनोद मेहरा का चेहरा, उनकी आंखों की नरम सी उदासी और उनकी मुस्कान सब कुछ एक अजीब सा जज्बा जगाता था दिल में। 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में पैदा हुए विनोद मेहरा ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा फिल्मों के लिए जी कर लिख लिया।

विनोद मेहरा का फिल्मी करियर 1950s के दौर में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन 1970s और 80s के बीच उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उनका स्क्रीन प्रेजेंस कुछ अलग ही था, न ज्यादा शोर शराबा, न ज्यादा नखरे, बस एक शरीफ, प्यार से भरा, दिल से एक्टिंग करने वाला इंसान।

उनका डेब्यू फिल्म एक थी रीता 1971 से शुरू हुआ और उसके बाद अनुराग, घर, बेमिसाल, अमर प्रेम, द बर्निंग ट्रेन, किनारा, स्वर्ग नरक और दादा जैसे फिल्मों में उन्होंने अपनी कमाल की परफॉर्मेंस दी। उनकी एक्टिंग में एक सच्चाई थी, एक सिंप्लिसिटी।

0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे।
1: विनोद मेहरा कभी ओवर एक्टिंग के लिए नहीं जाने गए, वे हर रोल को जीते थे, निभाते नहीं थे। जब वे एक आइडल पति बनकर स्क्रीन पर आते थे तो लगता था जैसे हर महिला का सपना हो। जब वो एक दर्द भरे दोस्त का किरदार करते थे तो उनकी आंखों का दर्द सीधा दिल में उतर जाता था। घर फिल्म में उनका और रेखा की जोड़ी तो आज भी आइकॉनिक मानी जाती है। दोनों की केमिस्ट्री और उनके इमोशनल डेप्थ सब

विनोद मेहरा की पर्सनल लाइफ भी उनकी फिल्मों की तरह ड्रामा और दर्द से भरी रही। उन्होंने कुछ शादियां की, लेकिन उन्हें कभी वो सुकून नहीं मिल पाया जो उनके दिल ने चाहा। लेकिन उन्होंने कभी जिंदगी से हार नहीं मानी। वो आखिर तक काम करते रहे, अपने फैंस के लिए मुस्कुराते रहे। उनका स्टाइल सबटल था, वे क्लासी जेंटलमैन थे। उनकी ड्रेसिंग सिंपल थी, लेकिन उनके पर्सना में एक एलिगेंस होता था। स्क्रीन पर वे कभी लाउड नहीं होते थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस हर सीन को पूरा बना देती थी।

विनोद मेहरा उन एक्टर्स में से थे जिनके पास स्टारडम से ज्यादा सोल था। उन्होंने हमेशा इंसानी जज्बात को अपनी एक्टिंग के जरिए जीवंत बनाया। 30 अक्टूबर 1990 को जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तो बॉलीवुड ने एक बहुत ही खूबसूरत इंसान और बेहतरीन कलाकार को खो दिया। आज भी जब उनके गाने, उनके डायलॉग्स या उनके सीन्स टीवी पर दिखते हैं तो लगता है जैसे उनका दिल से निकला हुआ जज्बात हवाओं में घूम रहा हो। विनोद मेहरा एक नाम, एक याद, एक एहसास जो हमेशा बॉलीवुड के दिल में जिंदा रहेंगे। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: Oh yeah.
1: रेडियो मॉरिशस
2: 820 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: एक कुत्ते, इडियट, हाँ तेरी तो एक चाटा मार के ना तेरा मुंह सुझा दूंगी मैं।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: Do you have time for a pleasant experience? Chalo Roy
2: America. Oh, Tau Ram Ram. Hey, band kar. Hey, bola na, band kar. Hey, good evening, folks. Myself, Bhai Saab Tyagi from Meerut. Now I will rock with my desi lat. रमारा बैंड का इंट्रोडक्शन भी सुन ले। जय है आनंद प्रकाश, जब बजाया करे ढोल, और जय है किशन लाल बिच्छू, जब बड़ी चीज बजाया करे भाई, और बाकी है गा चोरस, जय रबड़ी इमरती, नाम ना बता, ये पप्पू की अम्मा है। चलो रे शुरू हो जाओ, इब मैं सुनाता हूँ अमेरिका का हिप हॉप। जय माता दी,
3: लेट्स रॉक।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: हेलो हेलो हेलो साहिबान कदरदान,
2: मियां माइक में घुसे जाओगे क्या?
3: अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।

0: ಬೇಟೆಯ ಮರೆತು ಕಾಡಿನ ಸೊಗಸು ನೋಡುತ್ತ ಸವಿಯುತ್ತ ನಿಂದ.
1: ಯಾಕೆ ಸರ್?

0: नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me please.
0: My name is Anthony Gonsalves.
2: How cute.
0: Right.

0: चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस।